मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 54 सेकेंड्स हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पंछियों का कलरव गूंजने के साथ ही ठंडी बयार मन को स्फूर्ति से भर रही है। सुबह का वातावरण जादुई होता है और आसमान में नारंगी और सुनहरे रंगों का मिश्रण अनुपम छटा बिखेर रहा है। सुबह की शांति और ओस से भीगी हुई घास ध्यान जैसी अनुभूति प्रदान कर रही है और संदेश दे रही है सकारात्मक ऊर्जा का। श्रोताओं, हम भी आ चुके हैं नव चेतना नव ऊर्जा के साथ आपके लिए लेकर मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी श्रोता अपनी दिनचर्या के साथ ही रेडियो सेट को ऑन कर चुके हैं और आपको इंतजार होगा समाचारों का। तो चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, प्रातः के 6 बजने वाले हैं, सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय

0: वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकाइना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमेरिका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलोहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। श्रोताओं, समय है कृषि चर्चा का। आज की कृषि चर्चा में आइए सुनते हैं डॉक्टर रुद्र प्रताप नारायण सिंह से की गई भेंटवार्ता मूंगफली उत्पादन की उन्नत तकनीक विषय पर। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खरीफ के मौसम में जहां मूंगफली उत्पादन की योजना है तो इसकी उन्नत तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र रायबरेली से अध्यक्ष डॉक्टर RPN सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि खरीफ में जहां तिलहन उत्पादन में मूंगफली पैदा करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है?
3: नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि मूंगफली में आप जानते हैं कि खरीफ में तिलहनी फसलों में इसका बहुत ही प्रमुख स्थान आता है और इसलिए भी आता है कि ये असिंचित और सिंचित अवस्था दोनों अवस्था में इसकी खेती कर लेते हैं और सबसे फायदेमंद ये है कि इसमें तत्व के रूप में देखा जाए तो 10 से 12% कार्बोहाइड्रेट, इसमें 40 से 50% तक फैट

0: पाया जाता है, बसा का जो प्रतिशत है। इसमें अगर कुछ हमारे किसान भाई प्रजातियों का चयन करने में अगर शुरू में सावधानी लें, इसकी खेती की जा सकती है और पैदावार अच्छी ले जा सकती है।
1: तो शुरुआत करें कि खेत का चुनाव और खेत की तैयारी में क्या कुछ खास है?
0: मूंगफली की जो खेती है वो ज्यादातर बलुई दोमट और दोमट भूमि में बहुत ही अच्छी होती है। जहाँ सिंचाई के साधन हो, पर्याप्त हो, जल भराव न हो, वहाँ पर खेती इसकी बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे तरीके से की,
1: यानी जल निकास का प्रबंध अच्छा हो
0: जी
1: और बलुई दोमट हो तो सबसे अच्छा,
0: बहुत बढ़िया है।
1: और खेत की तैयारी में?
0: खेत की तैयारी में पहले तो आप मिट्टी पलट हट से इसकी जुताई कर लेते हैं खेत की, और उसके बाद कल्टीवेटर चला के और पाटा चला के इसको पूरा समतल कर लें, क्योंकि समतल करना बहुत ही जरूरी होता है बाद के लिए, कि सिंचाई जब करते हैं तो उसमें पानी की बराबर की मात्रा फैलती है।
1: उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं जो अच्छी पैदावार देंगी खरीफ में? डॉक्टर साहब,
0: खरीफ में पैदावार देने के लिए जैसे पुरानी अगर प्रजातियों को हम लोग लेके चले तो पुरानी प्रजातियों में चित्रा है, कौशल है, प्रकाश है, ये चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय की हम लोग के यहाँ की प्रजाति है, जो मैनपुरी में इसका रिसर्च सेंटर था उससे
1: निकली हुई है।
0: पैदावार है बहुत अच्छी है। जैसे अब कुछ गुण है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। चित्रा प्रजाति जो हमारे यहाँ है, इस प्रजाति में थोड़ा सफेद कलर होते हैं जो दाने में छिलके के वो कलर होते हैं। और दूसरा कौशल प्रजाति बहुत अच्छी चली। कौशल में दोनों गुण है, सिंचित और असिंचित, दोनों समय में खेती इसकी कर सकते हैं, दोनों तरीके से। थोड़ा बहुत उत्पादन में अंतर आता है, और ये भी 8 से 10 कुंटल उपज प्रति एकड़ आपको मिल जाता है, बहुत अच्छा और बड़े दाने में है, जिसकी बहुत मांग होती है। प्रकाश उसी के साथ अगर देखा जाए तो प्रकाश प्रजाति थोड़ी बड़े दाने की प्रजाति होती है, वो भी बहुत अच्छी है। इसी तरह से अंबर है, और बाहर की अगर प्रजाति कहें तो TG 37A है,
1: जो उत्कर्ष गर्मी में भी होती है और बरसात में
0: जी
1: भी
0: जी जी, ये भी अच्छी है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी की है, जो रस्ट रेजिस्टेंट है। और दिव्या है, बाहर की अगर प्रजाति कहें तो GJG 31 है, GJG 9 है, और एक प्रजाति जो 2008 की है, अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है, गिरनार 2, ये भी प्रजाति बहुत अच्छी है।
1: अब डॉक्टर साहब, बुआई का उपयुक्त समय क्या है और बुआई में कौन कौन सी खास बातें हैं जो ध्यान में रखनी है मूंगफली उत्पादन?
0: देखिए, मूंगफली उत्पादन अब 15 जून से अगर देखा जाए तो इसका बुआई का समय शुरू हो चुका रहेगा, 15 जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक इसको ले सकते हैं
1: जी।
0: और जो मैंने पहले भी बताया कि जहां सिंचाई की सुविधा हो वहां पर खेती इसकी अवश्य करें, जल भराव क्षेत्र एकदम ना होना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका जो तापक्रम है, जो मौसम का तापक्रम भी ध्यान देने की जरूरत है, कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा न हो तब इसकी बुआई का उचित समय माना जाता है। थोड़ा ज्यादा है तो उस समय कुछ देर टाला जा सकता है।
1: हाँ, बीज दर प्रति एकड़ कितना लगेगी डॉक्टर साहब?
0: बीज दर इसके दाने पर है, अगर बड़े दाने की जो प्रजाति है उसकी जो दाने की बीज की मात्रा है उसकी है 36 से 38 किलो। जैसे प्रकाश है, मैंने पहले बताया कि प्रकाश की प्रजाति थोड़ी बड़े दाने की है, कौशल थोड़ी कम है, तो कौशल और प्रकाश को अगर लिया जाए तो 36 से 38 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको बीज दर के रूप में प्रयोग करते हैं। और जो प्रजातियां हमारी मध्यम और छोटे दाने की जो प्रजातियां हैं उसमें अगर देखा जाए तो 26 से 30 किलो प्रति एकड़ के दर से इसका प्रयोग कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे मूंगफली उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर 94-157-44-645, 9415744645, 94-157-44-645।
1: डॉक्टर RPN सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए मूंगफली उत्पादन

0: 44 645 9415744645 94-157-44-645।
1: डॉक्टर RPN सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए। मूंगफली उत्पादन की उन्नत तकनीक क्या है, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मूंगफली उत्पादन की उन्नत तकनीक, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रुद्र प्रताप नारायण सिंह से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। और अब आइए सुनते हैं आज का सुविचार। विषय है कर्मण्यता। वाचन स्वर सुषमा गुप्ता का है।
3: मनस्विनी विदुला ने युद्ध में पराजित होकर रणभूमि से भागे हुए अपने भयभीत पुत्र से कहा, हे वत्स, जीवन रण में पराजित होकर दीन दुखी और हताश मन से छुपकर बैठ जाने वाले व्यक्ति को कापुरुष कहते हैं। ऐसे लोग न केवल अपना मान सम्मान खोते हैं, अपने बंधु बांधवों को कभी समाप्त न होने वाला दुख देते हैं, बल्कि शत्रुओं के परमानंद का कारण बनते हैं। अकर्मण्य और कायर लोग थोड़ा कुछ पाकर भी उसी प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं जैसे उथली नदियां थोड़ी वर्षा से ही लबालब भर जाती हैं, या फिर मूषिकांजलि अर्थात चूहिया की मुट्ठी कुछ कणों से ही सुपूरित हो उठती है। हे वत्स, इमली के कोयले की भांति प्रकाश और उष्णता सहित मुहूर्त मात्र के लिए जलकर भस्म होना श्रेयस्कर है, न कि तुष अर्थात धान की भूसी की भांति जलकर दीर्घ काल तक धुआं देकर सुलगते हुए रहना। इस संसार में अजा यानी बकरी की तरह दूसरों का भोजन बनकर या निरीह गर्दभ के समान भारवाहक बनकर जीना अच्छा नहीं है। जिस मनुष्य के महान और अद्भुत कार्यों की यशोगाथा संसार में नहीं गाई जाती, वह न स्त्री कहने योग्य है और न ही पुरुष, वह तो केवल बढ़ी हुई गिनती मात्र है। अपने ज्ञान, तपस्या, पराक्रम अथवा अर्जित की हुई धन संपत्ति से या फिर अन्य किसी विशिष्ट कार्य से जो लोग अन्य मनुष्यों का उपकार करते हैं, वे ही मनुष्य कहलाने योग्य हैं। केवल जन्म, यौवन, जरा और मरण के वशीभूत होकर जीना मनुष्यत्व की पहचान नहीं है। इसलिए उठो, जो उत्साह से शून्य हैं, जिनमें पराक्रम नहीं है, जो दूसरों की उन्नति देखकर अमर्ष से भर नहीं उठते, जो तुलना करके यह नहीं सोचते कि मेरी उपलब्धियां इससे अधिक होनी चाहिए, जिसके शत्रु सदा आनंदित रहते हों, ऐसे मनुष्य को जन्म देने वाली माता का स्त्रीत्व सार्थक नहीं हो सकता, वह सीमंतिनी कहलाने योग्य नहीं है। इसलिए उठ खड़े हो, आलस्य और निद्रा छोड़कर चैतन्य हो जाओ, सांसारिक कर्तव्यों में जुट जाओ, अपने मन को सुदृढ़ कर लो। यह कार्य प्रत्येक दशा में करना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके अनवरत प्रयत्न में जुट जाओ, यही कर्मण्यता है। हार मानकर बैठ रहना ही अकर्मण्यता है।
2: अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार। विषय था कर्मण्यता और वाचन स्वर सुषमा गुप्ता का। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। और अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

हर मंगल कार्य अपने दैनिक जीवन के कार्यों की शुरुआत यदि गणपति वंदन से करें तो जीवन में सफलता प्राप्त होती है। आइए प्रारंभ करते हैं आज की आराधना का।

प्रभु राम की कथा इतिहास नहीं जीवन की दिशा है, जो हर पीड़ा का समाधान है। आइए राम नाम का स्मरण करें।

माँ की शक्ति की महिमा अनंत है। माँ का आशीर्वाद ही जीवन का सबसे बड़ा संबल है। आइए माँ के चरणों को नमन करें और शक्ति, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें।

जिनकी भक्ति में शक्ति है और नाम में अनंत साहस है। कहते हैं जहाँ श्री राम का नाम है वहाँ जीवन में ऊर्जा, उत्साह और निर्भयता का संचार है। आइए प्रभु श्री राम की भक्ति का आह्वान करें।

ईश्वर सबका मंगल करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए आराधना संपन्न करने की अनुमति। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आकाशवाणी लखनऊ से 747 किलोहर्ट्ज़ पर।

मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से। और अब आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 222 में राजा जनक के अपने कुटुंबियों और सभासदों के साथ चित्रकूट पधारने का प्रसंग।

राजा जनक के दूत चित्रकूट आ पहुंचे हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे राजा जनक का कुशल क्षेम पूछा तो दूत आदर तथा संकोच से नतमस्तक होकर बोले, आपका आदर के साथ पूछना ही कुशल हो गया मुनिवर, नहीं तो कुशल क्षेम तो अयोध्यापति के साथ ही लुप्त हो गए थे। उनके जाने के साथ ही सारा जगत, विशेष रूप से कोशल और मिथिला अनाथ हो गए थे। भरत को राज्य और श्री राम को वनवास, ये सुनकर मिथिलापति का दुख और भी अधिक हो गया। जनक जी ने भरत जी की वास्तविकता जानने के लिए अपने गुप्तचर अयोध्या भेजे। लौटकर

गुप्तचरों ने अपनी बुद्धि के अनुरूप स्थिति का वर्णन किया, जिसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच तथा स्नेहवश व्याकुल हो गए हैं। और अब जनक जी अपने सभासद तथा कुटुंबियों समेत चित्रकूट पधार रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे ए हरिहरन। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून इन किया है 747 किलोहर्ट्ज़ और सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: श्रोताओं 6:55

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकण्डक्टर संयन्त्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रान्तेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाषनिर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकंडक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000-2,000 यावत् भारते 5 सेमीकंडक्टर संयंत्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21वीं शताब्द्याः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः सानन्दक्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयंत्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य 10 दिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्षनेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीयसम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीन सत्रमस्य मासस्य 20 दिनांकात् अगस्त मासस्य 23-दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजु सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलाई मासस्य 20 दिनांकात् संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् अद्य अन्त्यद्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलम् सम्मुखी करिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।

0: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। समय हुआ है सुबह के 7 बजे का और ये समय होता है स्वास्थ्य चर्चा सेगमेंट का। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं के लिए नीना सोनकर लेकर आती हैं सेहत और स्वाद से भरपूर और आपकी स्वास्थ्य संबंधी जो भी लाभदायक जानकारियां हैं उससे संबंधित जानकारियां। तो आज की स्वास्थ्य चर्चा में क्या महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हैं नीना सोनकर, आइए सुन लेते हैं आज का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सब्जी की जो हमारी रसोई में तो अक्सर दिखती है लेकिन जिसके बारे में हम ज्यादा जानने की कोशिश शायद ही करते हैं। एक ऐसी सब्जी जो बच्चों को पसंद भी आती है और बुजुर्गों के लिए भी लाभकारी मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं भिंडी की। भिंडी केवल स्वाद में ही नहीं बल्कि सेहत के लिहाज से भी एक मूल्य सब्जी है। ये सब्जी साल भर बाजार में उपलब्ध रहती है, जल्दी पक जाती है और इसमें मौजूद पोषक तत्व इसे बेहद खास बनाते हैं। भिंडी को आयुर्वेद में शीतल, पौष्टिक और सुपाच्य माना गया है, यानी ये शरीर को ठंडक देती है, जल्दी पचती है और आंतों के लिए बेहद फायदेमंद होती है। भिंडी में रेशा यानी फाइबर बहुत मात्रा में पाया जाता है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। जो लोग अक्सर कब्ज, गैस या अपच जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं उनके लिए भिंडी का नियमित सेवन लाभकारी

0: करती है और रोजमर्रा के कामों के लिए स्फूर्ति बनाए रखती है। श्रोताओ, भिंडी स्वाद में भी बहुत लचीली होती है। आप इसे सूखी सब्जी की तरह बना सकते हैं, भरवा भिंडी बना सकते हैं या टमाटर प्याज के साथ हल्की तरी में पकाकर बच्चों की पसंदीदा सब्जी भी बना सकते हैं। अगर आप इसे ज्यादा कुरकुरा पसंद करते हैं तो हल्का सा भून कर भी खा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि इसे ज्यादा तेल या मसाले में ना पकाएं, वरना इसके पोषक तत्व कम हो सकते हैं। कुछ घरों में भिंडी का उपयोग बालों के लिए भी किया जाता है। इसे उबालकर इसका गाढ़ा रस बालों में लगाने से बाल मुलायम और चमकदार बनते हैं। ये एक प्राकृतिक कंडीशनर की तरह काम करता है। ये बालों की रूसी कम करने और सिर की खुजली में भी राहत दे सकता है। गले में खराश हो या फिर सूखी खांसी तो भिंडी का हल्का गर्म पानी भी राहत पहुँचा सकता है, ऐसा आयुर्वेद में माना जाता है। भिंडी की एक और खूबी ये है कि ये आमदनी और पोषण दोनों में ग्रामीण भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये किसान भाइयों के लिए एक अच्छी नकदी फसल है और इसकी खेती भी अपेक्षाकृत सरल मानी जाती है। ये बात बताती है कि भिंडी न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारे ग्रामीण और खेतों को भी संबल देती है। तो श्रोताओं, अगली बार जब आप सब्जी मंडी जाएं तो भिंडी को नजरअंदाज ना करें। ये छोटी सी दिखने वाली सब्जी न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि आपके स्वास्थ्य के कई पहलुओं को छूती है। पाचन, त्वचा, हड्डियां, आंखें और ऊर्जा, हर जगह इसकी भूमिका है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमारे अपने देश की, हमारी अपनी जमीन की, हमारी अपनी मिट्टी की उपज है। सस्ती, सुलभ और बेहद पोषक। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चिर परिचित लेकिन गुणकारी चीज के साथ जो हमारी रसोई से भी जुड़ी हुई हो और हमारे स्वास्थ्य से भी। तब तक भिंडी को थाली में शामिल कीजिए, उसके स्वाद को अपनाएं और उसके पोषण को समझें, क्योंकि जो दिखने में सीधी होती है वही अक्सर भीतर से सबसे सशक्त होती है। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज की स्वास्थ्य चर्चा में भिंडी स्वाद भी सेहत भी विषय पर। जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। और अब आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज शाम 7:31 पर आप सुनेंगे आईसीसी विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मैच की समाप्ति तक। सुबह 9:15 पर सामयिक चर्चा में सुनिएगा विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के लागू होने के बाद ग्रामीण विकास, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलाव पर अर्थशास्त्री एपी तिवारी से शैलेंद्र शर्मा की बातचीत। उर्दू कार्यक्रम के तहत सुबह 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा डॉक्टर शरीफुद्दीन से मकाला अमीर मीनाई की गजल या शायरी। इसके अलावा कलामी शायर में आज के शायर होंगे सलाम फैजी। इसके साथ ही सुनिएगा मोहम्मद फर्रुख जमाल की तहरीर ड्रामा नवीसी का एक अहम शाहकार सैयद असगर वजाहत। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की होगी। दिन में 3:30 पर सुनना ना भूलें फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज इस कार्यक्रम में विषय होगा आंखों की सुरक्षा और देखभाल। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजय कुमार बिश्नोई, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ। संचालन सुभाष खन्ना का होगा। दिन में 3:15 पर आप सुनेंगे डॉक्टर अनुज चौबे की संस्कृत वार्ता भारतीय ज्ञान परंपरायाम स्वप्न विज्ञानम। प्रस्तुतकर्ता होंगी डॉक्टर शिवा राकेश। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे मीता पंडित का राग ललित में गायन। दोपहर 12:00 बालमंच कार्यक्रम में हमारे नन्हे साथी सुनेंगे ममता उपाध्याय की लिखी संगीत नाटिका हरे हरियाली चहुं दिश खुशहाली। संगीत संयोजन अमिताभ श्रीवास्तव का है। आज इतवार है, मैं दिन में 1:15 पर सुनना ना भूलें साक्षिमा पांडे की लिखी लघु नाटिका एक सवाल तुम भी हो। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग रवि तिवारी। निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता होंगे अतिश कुमार श्रीवास्तव। दिन में 1:00

45 मिनट पर अक्षवट कार्यक्रम में सुनिएगा वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर अतुल दुबे से की गई भेंटवार्ता, घर की हरियाली जीवन की खुशहाली। भेंट करता होंगी डॉक्टर अलका चौधरी। खरीफ में समन्वित नाशजीवी प्रबंधन, ये विषय है डॉक्टर लल्लन सिंह यादव से की गई भेंटवार्ता का विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 5:45 पर नई उड़ान कार्यक्रम में ओबी आधारित जानकारी का विषय होगा नई सुबह के लोग, बदलाव के बाजीगर युवा जिन्होंने तस्वीर बदल दी। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में लोक भाषा कवि गोष्ठी का प्रसारण किया जाएगा। प्रतिभागी कवि होंगे मनोज कुमार अवस्थी शुकदेव, प्रदीप सारंग, संचालन डॉक्टर संत शरण तिवारी संत का होगा। शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में सफलता की कहानी क्रम में सुनिएगा सब्जी उत्पादन विषय पर राम प्रवेश मौर्य से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम जिन्हें आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में कार्यक्रम विविधा के साथ।

जरा सोचिए, सुबह का समय है, सूरज की पहली किरण धरती को छू रही है, नदियां बह रही हैं और पंछी चहचहा रहे हैं, सब कुछ सुंदर, शांत, जीवन से भरा हुआ है। तभी धीरे धीरे एक आवाज सुनाई देती है, भीड़ की आवाज, हॉर्न की आवाज, कारखानों की आवाज, पेड़ों के कटने की आवाज और धरती की एक धीमी थकी हुई पुकार। मैं सबको पाल सकती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे बचा पाओगे? हमारी धरती जो आज हम इंसानों के बोझ तले कराहा रही है, तो आज की विविधा में बात ऐसे अभिशाप की जो चुपचाप बिना शोर मचाए हमारी दुनिया को खोखला कर रहा है, बढ़ती जनसंख्या। बात धरती का अभिशाप बढ़ती जनसंख्या की। जनसंख्या यानी लोगों की संख्या। जब ये संख्या सीमा से आगे बढ़ने लगे तो ये सिर्फ आंकड़ा नहीं रह जाती, ये रोटी, पानी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जंगल, जमीन और भविष्य से जुड़ा सवाल बन जाती है। एक समय था दोस्तों, जब धरती पर इंसान कम थे, जंगल अधिक थे, नदियां साफ स्वच्छ थीं, हवा हल्की थी, खेतों में हरियाली थी, इंसान प्रकृति के साथ रहता था। लेकिन समय बदला, विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार हुए, चिकित्सा बेहतर हुई, जीवन लंबा हुआ, मृत्यु दर कम हुई और देखते ही देखते दुनिया की आबादी अरबों में पहुंच गई। आज दुनिया की जनसंख्या लगभग 8 अरब से आगे निकल चुकी है और भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। ये हमारी शक्ति है, लेकिन अगर सही दिशा ना मिले तो यही शक्ति बोझ बन सकती है। सोचिए, एक घर में 5 लोग हों तो खाना, जगह और खर्च संभल जाता है, लेकिन उसी घर में अचानक 50 लोग रहने लगें तो क्या होगा? रसोई छोटी पड़ जाएगी, पानी कम पड़ जाएगा, कमरे कम पड़ जाएंगे, शोर बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा और प्रेम होते हुए भी जीवन कठिन हो जाएगा। ठीक यही हाल धरती का भी है। बढ़ती जनसंख्या का असर पड़ता है रोटी पर। खेती के लिए जमीन तो सीमित है, नदियां सीमित हैं, लेकिन खाने वाले लगातार बढ़ रहे हैं। नतीजा, दुनिया में आज भी करोड़ों लोग भूखे पेट सोते हैं। बढ़ती आबादी के साथ पानी की मांग बढ़ती है। हम कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन नदी हर घर के हिसाब से तो नहीं बढ़ती। भूजल नीचे जाता है, तालाब सूखते हैं और शहरों में लोग पानी के टैंकरों के पीछे भागते दिखाई देते हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारणों में से एक है प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। ज्यादा घर, ज्यादा सड़कें, ज्यादा वाहन, ज्यादा कचरा, ज्यादा प्रदूषण। कहने का मतलब दोस्तों, चंद स्वार्थों के लिए आज हम जंगल काटे जा रहे हैं, जानवरों और पंछियों के बसेरे उजड़ रहे हैं, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है और तो और धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। जनसंख्या अधिक होने के कारण बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ी है। नौकरियां सीमित हैं और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं। यही है धरती का अभिशाप जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी को जकड़ता जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो स्कूलों में भीड़, अस्पतालों में लंबी लाइनें, डॉक्टर कम, मरीज ज्यादा, एक एक सीट के लिए संघर्ष, एक एक सुविधा के लिए इंतजार, गरीब आदमी के लिए ये इंतजार कभी कभी जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी बन जाता है। जानते हैं, धरती हर साल जितने संसाधन बना पाती है ना, हम इंसान उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं। वैज्ञानिक इसे कहते हैं अर्थ ओवरशूट डे, यानी वो दिन जब हम पूरे साल के लिए धरती के प्राकृतिक बजट को खर्च कर चुके होते हैं और बाकी महीने हम धरती से उधार लेकर जीते हैं।

सवाल ये कि समाधान क्या है? समाधान है शिक्षा, खासकर बेटियों की शिक्षा। जहाँ बेटियाँ पढ़ती हैं तो परिवार जागता है। वे स्वास्थ्य, अधिकार, सही उम्र में विवाह और छोटे खुशहाल परिवार का महत्व समझती हैं। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाएं और परिवार नियोजन की सही जानकारी। बढ़ती जनसंख्या को केवल डर से नहीं, समझदारी से देखना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। बहुत जरूरी है रोजगार और कौशल विकास। भारत की युवा आबादी हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उन्हें सही प्रशिक्षण और अवसर मिले। साथ ही महत्वपूर्ण है दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। पानी बचाना, पेड़ लगाना, प्लास्टिक कम उपयोग करना और ऊर्जा बचाना जरूरी है। जिम्मेदार नागरिक बने, सरकार के साथ समाज को भी आगे आना होगा। याद रहे दोस्तों, धरती हमारी माँ है, मशीन नहीं। उसकी भी सीमा है, बढ़ती जनसंख्या अभिशाप बन सकती है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और जिम्मेदारी से यही जनसंख्या वरदान भी बन सकती है। आइए ऐसा भविष्य बनाएं जहां हर बच्चा भूख नहीं अवसर पाए और हर परिवार छोटा हो लेकिन सपने बड़े हो। तो आज की विविधा में बस इतना ही। दीजिए अनुमति हमें। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने वाले हैं। एक छोटे से अंतराल के बाद आप सुनेंगे हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
1: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर कल पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की बैठक। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई।

0: प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2026 कल हुई संपन्न। 3 दिवसीय परीक्षा में शामिल हुए 88% अभ्यर्थी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में लखनऊ के जन भवन में आयोजित हुई मैंगो बायर सेलर मीट। आम निर्यातकों और उत्पादकों के बीच हुए अनुबंध। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर कल पहली बार लखनऊ पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ भी बैठक की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित रहे। इसके बाद श्री नवीन ने एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वागत के लिए प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया।
1: उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। लखनऊ की धरती पे लोगों ने मुझे अभिमान दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी और पूरे लखनऊ के लोगों का अभिनंदन कर धन्यवाद करता।
0: श्री नवीन कल अपने लखनऊ प्रवास के दौरान हनुमान सेतु मंदिर गए। वहां उन्होंने हनुमान जी के दरबार में शीश नवाकर देश और प्रदेशवासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने 2 दिवसीय लखनऊ दौरे में आज विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी वादों की सुनवाई 3 सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। वहीं एक अन्य पहल के तहत राजस्व परिषद के न्यायालयों द्वारा किसी वाद में अभिलेख तलब किए जाने पर सामान्यतः मूल अभिलेखों के स्थान पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमाणित पूर्ण स्कैन प्रति के आधार पर ही न्यायिक कार्यवाही की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भाजपा भारत अपने दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों से 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से सफलतापूर्वक उबरने में कायम रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हर स्तर पर समय रहते निर्णय के लिए उभरते संकट का सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति तैयार की और देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कूटनीति और रणनीतिक उपायों से देश ने इस संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
3: पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी TET 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। लिखित परीक्षा

0: दो व तीन जुलाई को दो दो पाली और कल एक पाली में आयोजित हुई। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 88.77% अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। ये परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान 44 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए। परीक्षा के सफल संचालन के लिए आयोग ने जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस और SDF के प्रति आभार व्यक्त किया है। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के दूसरे दिन कल लखनऊ के जनभवन में मैंगो बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के बीच अनुबंध भी हुए। महोत्सव में उद्यान मंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ में प्रदेश सरकार के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है।
1: उद्यान विभाग के माध्यम से हम राज्य के किसानों की समृद्धि का जो सपना देखे हैं वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम साकार कर रहे हैं। दुनिया के बाजारों में हमारी औद्योगिक फसलें आज पहुंच गई हैं और जब से हमारे यहाँ जेवर एयरपोर्ट बन के तैयार हो गए हमारे राज्य के आम के किसानों का मनोबल बढ़ेगा, उनकी समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा प्रयास हमारी सरकार का होगा।
0: महोत्सव के दूसरे दिन आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विज्ञान विभाग के अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रदेश भर से आए प्रगतिशील आम उत्पादक किसानों के बीच एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक आयोजित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कल अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 28 जून 2026 को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार ये बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष की स्वीकृति से कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी द्वारा बुलाई गई है। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ. अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। बैठक में भविष्य में राम मंदिर के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित है। इस बीच लखनऊ सहित राज्य के कुछ जिलों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। कल कानपुर और टुंडला में हुई भारी बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर कल पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की बैठक। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTAT 2026 कल हुई संपन्न। 3 दिवसीय परीक्षा में शामिल हुए 88% अभ्यर्थी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में लखनऊ के जनभवन में आयोजित हुई मैंगो बायर सेलर मीट, आम निर्यातकों और उत्पादकों के बीच हुए अनुबंध। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: स्वागत है एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन रहे हैं अपने रेडियो सेट पर और ट्यून इन किया है 747 किलोहर्ट्ज़। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। और अब समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मीता पंडित का राग ललित में ख्याल गायन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मीता पंडित का राग ललित में ख्याल गायन। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, जिसे संपन्न करने का वक्त हो चला है। तो दीजिए अनुमति वैशाली को कार्यक्रम नमस्ते लखनऊ से। नमस्कार आप सभी को श्रोताओं, बने रहिए 747 किलोहर्ट्ज पर और सुनते रहिए आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। ये आकाशवाणी लखनऊ है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख

0: आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहां पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहां पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,100

0: 25 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
1: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
2: मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है।

महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटी की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने कहा है कि लगातार दो भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16

0: के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार दो भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने हॉर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों और दूरदराज के इलाकों को हवाई सफर से जोड़ने के मकसद से कल राजस्थान के जोधपुर में इलाकाई फिजाई कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उड़ान स्कीम के नए मरहले के तहत छोटे शहरों और दूरदराज के खितों को फिजाई कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ा जाएगा।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का भी इफ्तिताह किया, जिससे भारत के शहरी हवाबाजी के बुनियादी ढांचे और इलाकाई कनेक्टिविटी को बड़े पैमाने पर फरोग हासिल होगा। जनाब मोदी ने इस बात को नुमाया किया कि नई टर्मिनल इमारत का आर्किटेक्चर और इंटीरियर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।
1: जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
0: इस मौके पर शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान स्कीम का आगाज इलाकाई कनेक्टिविटी के भारत के सफर में नए बाब की शुरुआत होगी। जनाब नायडू ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के जरिए 28,840 करोड़ रुपए की तखमीना लागत वाली स्कीम के आगाज से 100 से ज्यादा नए और 200 हेलीपैड्स की तरक्की में आसानी होगी, जिससे किफायती हवाई सफर का लाखों लोगों का ख्वाब पूरा होगा और उभरते भारत की उमंगों की तकमील होगी।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सनात में सीजी सेमी के बाहर से मंगाए गए सेमीकंडक्टर की तरतीब और तजुर्बे के जदीद तरीन प्लांट OSAT का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और टेक्नोलॉजी शोबे के कई आलमी कायदीन भी मौजूद थे। 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी से कायम इस जदीद फैक्ट्री की सालाना पैदावारी सलाहियत 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स तक होगी। एक बड़े इज्तिमे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि सनान में कायम सीजी सेमी OSAT मरकज न सिर्फ मुल्क में चिप तैयार करने के इको निज़ाम को मजबूत करेगा बल्कि टेक्नोलॉजी के शोबे में खुद किफालत को फरोग देगा और आलमी सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन में भारत के मकाम को मजीद मुस्तहकम करेगा।
1: भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमी कंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: उन्होंने मजीद कहा कि सनानंद का ये प्लांट इब्तदाई मरहले में सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने सीजी सेमी को मुस्तकबिल में पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर करने पर मुबारकबाद भी दी।
1: यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी। आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: इससे कबल सनानंद पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म ने आला टेक्नोलॉजी के हामिल प्लांट का दौरा किया, पैदावारी अमल का मुआयना किया और वहां काम करने वाले इंजीनियरों और ऑपरेटरों से मुलाकात करके उनसे तबादले ख्याल किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी की कीमत में 13% इजाफा कर दिया है। प्याज की खरीदारी कीमत 1800

0: 75 रुपए फी क्विंटल से बढ़ाकर 2125 रुपए फी क्विंटल कर दी गई है। सारिफिन की उमूर खुराक और सरकारी निजाम तकसीम की वजारत के मुताबिक नजरसानी शुदा खरीदारी कीमत से प्याज के काश्तकारों को बेहतर मुनाफा मिलेगा, जबकि कीमतों के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के खरीदारी अमल को भी तकवीत मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत सरकार की जानिब से प्याज का वाफिर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी नैफेड और कौमी कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF के जरिए जारी है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के महकमे 2025-26 के दूसरे पेशगी तखमीने के मुताबिक मुल्क में प्याज की पैदावार 307 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा होने का इम्कान है। वजारत ने बताया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्याज की मौजूदा ज़खीरा काफ़ी है और इस वक्त ज़खीरा शुदा प्याज की किल्लत के कोई आसार नहीं है। इस वक्त मुल्कगीर सतह पर प्याज की औसत खुर्दा कीमत 31 रुपये फी किलोग्राम है। जून 2026 के दौरान तकरीबन 1.5 लाख मैट्रिक टन प्याज बरामद की गई और प्याज की बरामदात मामूल के मुताबिक जारी है। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने मुतला किया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हुकूमत की जानिब से 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास तरब करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब किरण रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल उमूर पर बामाने बहस, तफसीली तबादले ख्याल और अहम फैसलों पर तवज्जो दी जाएगी। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नया तसव्वुर नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल एक सदी से भी ज्यादा अरसे से हो रहा है। राजस्थान में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हयातियाती ईंधन की आमेजिश के प्रोग्राम पर होने वाली मुस्बत तनकीद का खैर मकदम करती है और जहां जरूरत होगी मौसूल होने वाली तजावीज को अपने काम में शामिल करते हुए इस्लाहात भी करेगी। जनाब हरदीप सिंह पुरी ने मजीद कहा कि भारत में एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का तसव्वुर सबसे पहले साबिका कांग्रेस हुकूमत के दौर में शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि जब वो 2006 से 2008 के दरमियान ब्राजील में भारत के सफीर थे, उस वक्त मुल्क की 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाने का हदफ मुकरर किया गया था, लेकिन उस वक्त सिर्फ 1.4% एथेनॉल मिलाने का हदफ हासिल किया गया था।
2: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: आकाशवाणी खबरों का शोभा अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के तहत आज शजरकारी और माहौलियाती तहफ्फुज के लिए काम कर रहे देवेंद्र सूरा से की गई बातचीत नशर की जाएगी।
3: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये बातचीत आज सुबह 10:30 100.1 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुनी जा सकती है। इस बातचीत को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के मुजव्वजा दौरे से कबल भारत को ऑस्ट्रेलिया का एक अहम इक्तिसादी शराकत दार करार दिया है। एक बयान में ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म के दफ्तर ने कहा है कि दुनिया की चौथी बड़ी और तेजी से तरक्की पजीर मईशत होने के नाते भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए नहायत अहम इक्तिसादी शराकत दार है। जनाब एंथनी अल्बानीज ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर मबनी है जो मजबूत इक्तिसादी और सकाफती रवाबित की बुनियादों पर कायम है। उन्होंने मजीद कहा कि तिजारत, दिफा, सलामती और टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तआवुन दोनों ममालिक के लिए मुस्बत और बाहमी फायदे का बाइस बन रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एजे

0: जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरेन, कुवैत और उमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। तीन मुल्कों के अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर इन मुल्कों के अपने हम मनसबों और आला क्यादत से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा के मुताबिक इस दौरे का मकसद भारत और मजकूरा मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना और इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करना है। ओमान के दौरे के बाद डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां वो अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC की 2028-29 की मुद्दत कार के लिए भारत की बाजाबता मुहिम का आगाज करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कहा है कि अगले कुछ दिन के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की शदीद बारिश जारी रहेगी। IMD ने कहा है कि खलीज बंगाल के शुमाल मगरिब में हवा के कम दबाव का हल्का बना है, जिससे अगले 4 से 5 रोज के दौरान मुल्क के वसती इलाकों में मानसून के सरगर्म रहने का इम्कान है। पूरे मशरकी अमरीका में जारी शदीद गर्म लू की वजह से बिजली की ग्रिड्स पर दबाव पड़ रहा है, जिससे फीफा आलमी कप मैचों की तैयारियों में रखना पड़ रहा है। एक तरफ जहां दर्ज हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से पार कर जाने का खदशा है, वहीं अमेरिका के सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाला शहर न्यूयॉर्क को गैर मुतवक्क दर्ज हरारत का सामना है। फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस ने फिलाडेल्फिया में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में पेरागुए को सख्त मुकाबले में 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम के कप्तान कल्याण एम्बापे ने मैच का वाहिद गोल 17वें मिनट में पेनाल्टी किक के साथ किया। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि मगरबी एशिया में जारी आलमी तवानाई बहरान के बावजूद भारत ने न सिर्फ ईंधन की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया बल्कि मौसर सिफारतकारी बरवक्त फैसलों और गुज़िश्ता एक दहाई की दुरंदेश पॉलिसियों की बदौलत इस मुश्किल सूरत हाल पर कामयाबी से काबू पाया गया है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आगाज 20 जुलाई से होगा, जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। कौमी अहमियत के हामिल कई मौजूदात पर इस दौरान बामानी बहस, कानून साजी और कई अहम फैसले किए जाएंगे। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के इस बयान को इनकलाब ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजामा इनकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को नुमाया किया है कि ऑपरेशन सिंदूर से मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में तैयार किए गए दिफाई सारो सामान पर न सिर्फ मुल्क में बल्कि आलमी सतह पर भी एतमाद में इजाफा हुआ है।
0: और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में फिजाई सफर को फ़रोग देने के लिए इलाकाई फिजाई राबता स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी कीमत में 13% का इजाफा करते हुए इसे 2,125 रुपए फी क्विंटल कर दिया है, ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने अगले कुछ दिनों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कबल भारत को अहम इक्तिसादी शराकत दार करार दिया है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है सुबह के 8:45 का। अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों को तो हमें ईमेल लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। और आज आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम में मैं हूँ वैशाली, आप सभी के साथ आपको प्यार भरा नमस्कार। आज सबसे पहले मेल जो हमने लिया है भेजने वाले हमारे श्रोता हैं ग्राम व पोस्ट मैतेपुर जिला सीतापुर से बसंत कुमार और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य और मित्र बंधु, इन्होंने मेल भेजा है और नमस्कार लिखा है। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को ये सुनते हैं और बेहद इन्हें कार्यक्रम पसंद आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

बाद बसंत जी आपको और आपका फरमाइशी गीत हम जरूर सुनवाएंगे। नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से मेल है बालकृष्ण, प्रवीण, मुनीश, राहुल और इनके बहुत सारे साथियों का। इन्होंने अपनी फरमाइश हमें लिख भेजी है। ये हैं MLB रोड ग्वालियर से सुरेश, पप्पी, किरण, लव्या, आरव और SK और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। इन्होंने नमस्कार के साथ साथ अपना फरमाइशी गीत भी सुनना चाहा है। और ये हैं हमारे श्रोता आकली दीवान मध्य प्रदेश से श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी, रामलाल और इनके घर परिवार के लोग। और अगला मेल है नाईवाला ज़िला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा, और इन्होंने धन्यवाद के साथ साथ अपना पसंदीदा गीत भी हमें लिख भेजा है। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मेल है अशोक, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश, शेख मूसा भाई और राजकुमार। और सुदामा नगर खंडवा से मेल भेजा है हमें लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप ने। और आप सभी सुनना चाहते हैं कर्तव्य फिल्म का गीत जिसे गाया है कुमार सानू, अलका याग्निक ने।

मोताला महाराष्ट्र से हमें मेल भेजा है विजय सुरलकर, रतनमाला और इनके बहुत सारे साथियों ने। और एक मेल आया है, ये भेजने वाले हमारे श्रोता हैं रामगंज खंडवा से विजय, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, ईशु, रानू, अनय, अनाया और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। इन्होंने नमस्कार के साथ साथ तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से मेल भेजने वाले श्रोता हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप। और कालका से मेल भेजा है शिवचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज ने, और इन्होंने अपनी फरमाइश भी हमें लिख भेजी है। और ये हैं हमारे श्रोता, लिखे हैं नमस्कार, और इन्होंने लिखा है इन्हें कार्यक्रम बेहद पसंद आते हैं आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित, और ये नियमित हमारे श्रोता हैं, सुनते हैं कार्यक्रमों को। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये हैं गुलाब साबिर, मोहम्मद अंसारी, मेहराज जहाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अगला मेल है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डी कैस्ट्रो, रोजी, पर्ल, विलिस और इनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इन्होंने मेल भेजा है। ये हैं शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना, आलिया। और आप सभी सुनना चाहते हैं जमीर फिल्म का गीत जिसे गाया है किशोर कुमार ने।

0: कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से।
0: RBI के

0: पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
1: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत में। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से मेल है प्रकाश, सुषमा, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज, अंशुमन, सुभाष, नीरज और इनके बहुत सारे परिवार के सदस्यों का। और ये हैं गांव कलमंडी खुर्द, जिला झालावाड़, राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह, सागर पवार, भानु प्रताप और समस्त राजपूताना परिवार। और अगला मेल है दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्र नोखेलाल वर्मा जी का। आपने नमस्कार के साथ साथ आकाशवाणी कार्यक्रमों को सुनते हैं, आपको पसंद आते हैं और अपना फरमाइशी गीत भी आप सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये हैं हमारे श्रोता ग्रामवा पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से विजयपाल यादव, शुभम, ऋचा, शिखा, गुड़िया, बबलू और विजय पांडे। और आप सभी सुनना चाहते हैं लैला मजनू फिल्म का गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ग्रामवा पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से मेल भेजने वाले श्रोता हैं शाहनूर, नूर, फरियाद, शकील, मोइन, तस्लीम और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य, और इन्होंने अपनी फरमाइश भी हमें लिख भेजी है। ये हमारे श्रोता हैं सतीश अनेजा चंडीगढ़ से, शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। मनाली हिमाचल से मेल है हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई का, और आपने नमस्कार के साथ साथ अपने पसंदीदा गीत को भी सुनना चाहा है। ये है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक, श्याम कुमार, प्रमिला, चीनू, आसमा, दीपक, अनुश्री और इनके परिवार के और भी सदस्य। और हमारा अगला मेल जो हमें लिख भेजा है, ये भेजने वाले हमारे श्रोता हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक, जियाउल, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और उनके परिवार के सभी सदस्य। और आप सभी सुनना चाहते हैं मासूम फिल्म का गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

747 किलो हर्ट्ज पर आप अपने रेडियो सेट पर सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और प्रोग्राम चल रहा है आपके मेल आपके गीत। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश पूनम, विशाल दिशानी और निमित ने हमें राम राम जी लिखा है, ईमेल लिख भेजा है और अपने गीत की फरमाइश इन्होंने की है। और ये जो मेल है इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, नवीन और इनके बहुत सारे परिवार के सदस्य। और एक मेल है ये ज़िला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान, आयशा, सबीहा, अनस, रेहान का, और इन्होंने अपने फरमाइशी फिल्मी गीत को सुनना चाहा है। ये हैं फूलई नगर बींड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद, गीतांजलि, आकाश, आकांक्षा और इनके परिवार के और भी सदस्य हैं जिन्होंने हमें मेल भेजा है, नमस्कार लिख भेजा है और अपना ये पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं। और गणेश वाड़ी कोल्हापुर से मेल है संभाजी, चेतन और सारिका सुतार का, इन्होंने भी नमस्कार के साथ अपना फरमाइशी फिल्मी नगमा सुनना चाहा है आकाशवाणी लखनऊ से। और महाराष्ट्र से ही ये हैं संगीता घटे, साक्षी, नंद किशोर, जयश्री और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं। और एक मेल है झज्जर हरियाणा से बिट्टू, रीटा, रजत, मयंक भाटिया का, और आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं जुर्म फिल्म का गीत जिसे गाया है कुमार सानू और साधना सरगम ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही वक्त हो चला है कि हम आपसे इजाजत लें आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम से। तो दीजिए अनुमति वैशाली को कार्यक्रम संपन्न करने की। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के लागू होने के बाद ग्रामीण विकास, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलाव पर अर्थशास्त्री AP तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार है शैलेंद्र शर्मा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 12 सालों में ग्रामीण विकास, कृषि और कृषि उत्पादन के साथ ही रोजगार के मोर्चे पर कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में अब मनरेगा की जगह विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू किया गया है, जिसमें 125 दिन की रोजगार की गारंटी के साथ ही 300 रुपए की न्यूनतम मजदूरी भी तय की गई है। सरकार का प्रयास है कि गांव में सिर्फ मजदूरी आधारित रोजगार नहीं बल्कि स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, कृषि उत्पादकता और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी जाए। सरकार के इस विजन को बीवी रामजी अधिनियम कैसे पूरा करेगा, क्या खास बातें हैं इस अधिनियम में, मनरेगा की खामियों को इसमें कैसे दूर किया गया है, आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अर्थशास्त्री AP तिवारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी
2: सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि विकसित भारत जीरामजी अधिनियम को ग्रामीण विकास और आर्थिक दृष्टि से आप कैसे देखते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मॉडल में ये किस तरह का परिवर्तन ला सकता है, खास तौर पे तब जब इसमें जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका और मौसमी घटनाओं से जुड़े कामों पर फोकस किया गया है।
3: विगत 12 वर्षों में लगातार मोदी सरकार ने

0: खेती और खेती से जुड़ी हुई क्रियाओं को आगे बढ़ाया, जैसे वानिकी है, पशुपालन, मछली पालन और गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसके विकास पर जोर दिया गया। मेरा मानना है कि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो एक जो कोशिश की गई है हाल ही में, भारत देश का विकास तभी होगा जब गांव का तेजी के साथ विकास होगा, लेकिन इसकी एक अहम कड़ी है कि गांव में ही लोगों को काम मिले, खासतौर पर वह जो अकुशल लोग हैं, अकुशल श्रमिक हैं, उन्हें गांव स्तर पर ही काम मिले। इसलिए ये है जो विकसित भारत जी राम जी स्कीम एक नए अवतार में कह सकते हैं लाई गई है, ये एक गारंटी है रोजगार की। जो पात्र श्रमिक होंगे उनको वर्ष में 125 दिनों का काम मिलेगा, इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है, भौतिक संपत्तियों का सृजन है, इसको बल मिलेगा। जो कौशल विकास, बाजार और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है, खेती का काम है, जल सुरक्षा है, इन सबको जोड़कर गांव का समग्र विकास हो, इसकी कोशिश इस स्कीम के माध्यम से किए जाने का संकल्प लिया गया है।
1: बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने ग्रामीण विकास की बात की, मनरेगा की बात करें सर, तो मनरेगा को रोजगार की गारंटी के तौर पर लाया गया था, लेकिन जो ये नया अधिनियम है रोजगार के साथ साथ विकास की भी बात करता है, जैसा आपने चर्चा में कहा भी, तो ये नया अधिनियम सर इन दोनों के बीच, यानी कि रोजगार और विकास, इन दोनों के बीच कैसे संतुलन बना रहा है?
0: देखिए, जब हम गांव के विकास की बात करते हैं तो एक उसका महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि गांव में ही गांव वालों को रोजगार मिले, क्योंकि इसका परिणाम ये होगा कि गांव के जो लोग हैं उनकी आर्थिक तरक्की होगी, उनकी आजीविका सुगम होगी, या उनके आजीविका के स्रोतों में गांव स्तर पर ही बढ़ोतरी होगी। तो जब ऐसा होगा तो उनका पलायन भी गांव से जो नगरों की तरफ होता है वो थमेगा। इससे जो कई तरह की आर्थिक और सामाजिक दुश्वारियां मजदूरों को झेलनी पड़ती हैं उससे भी निजात मिलेगी। मेरा मानना है कि जब गांव विकास की बात की जा रही है तो गांव विकास का मूल मंत्र ये है कि खेती तो बढ़े आगे, लेकिन खेती के साथ जो गांव की गैर खेती की क्रियाएं हैं, वानिकी है, पशुपालन है, मछली पालन है, इन सब को अगर जोड़ कर देखा जाए तो विकास की गति और तेज होगी।
1: बिल्कुल सर, आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की और हमने देखा कि कोरोना काल में जब कठिनाई का वक्त था तब ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने बड़ी मदद की सरकार की अर्थव्यवस्था को संभालने में। सरकार की सोच है कि इस नए अधिनियम के जरिए कृषि, सिंचाई, जल संरक्षण और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती दी जाए, तो आपको सर क्या लगता है जो प्रावधान किए गए हैं उससे ये सोच कैसे पूरी हो सकती है?
0: देखिए, जब गांव के विकास की बात की जाती है तो जो गांव में खेती है उसके साथ ही साथ गैर खेती की क्रियाएं हैं, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, जो मझोले उद्योग क्षेत्र की क्रियाएं हैं, जो ODOP सेक्टर की क्रियाएं हैं, कह सकते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, जो लघु और सीमांत कृषक हैं उनके द्वारा जो क्रियाएं संपादित की जा रही हैं खेती की, उनको अगर बागवानी से जोड़ा जाए या खेती का विविधीकरण अगर किया जाता है, तो खेती के विविधीकरण के लिए ये आवश्यक होगा कि नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। नई तकनीक में जब हम बात करते हैं तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाए, और जब नई टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल गांव के विकास के लिए किया जाएगा तो तार्किक तौर पर गांव में एक ओर जहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, गांव वालों को गांव में ही रोजगार मिलेगा, भौतिक संपत्तियों का या भौतिक परिसंपत्तियों का सृजन होगा, तो गांव की तरक्की एक टिकाऊ आधार पर होगी, क्योंकि ये बेहद जरूरी हो गया था कि गांव का विकास तो तभी टिकाऊ आधार पर होगा जब गांव स्तर पर रोजगार और आजीविका के टिकाऊ और गुणवत्ता परक संसाधनों में वृद्धि की जाती है। कि विकसित भारत जी राम जी स्कीम इस मंतव्य के साथ शुरू की गई है कि गांव का एक तरह से बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो, वहां पर जिंदगी सुगम हो लोगों की, गरीबों की, जो मजदूर हैं उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो। जब उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो मेरा मानना है कि गांव की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बढ़ी हुई गांव की क्रय शक्ति औद्योगिक विकास को भी तेज करेगी, क्योंकि ये जरूरी है कि गांव में जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तभी जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन कह सकते हैं उद्योग क्षेत्र के

0: प्रगत हो रही है उनकी भी मांग बढ़ेगी। तो इस तरह गांव का जब विकास होगा तो लोगों की जिंदगी में सुधार होगा, लोगों का जीवन सुगम होगा, उनको स्थानीय तौर पर रोजगार मिलेंगे। तो इस प्रकार वो अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक जो संस्थाएं उनके गांव स्तर की हैं उनसे जुड़कर विकास को और आगे बढ़ाने में वो भरपूर सहयोग कर सकने की स्थिति में होंगे।
1: बिल्कुल सर, बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद इस अधिनियम के जरिए की जा रही है, लेकिन सर मनरेगा की वो कौन सी बड़ी खामियां थीं जिन्हें दूर करते हुए इसे लागू किया गया है? ग्रामीण युवाओं के लिए ये किस तरह का अवसर पैदा करेगा? और सर क्या आपको लगता है इससे गांव से जो शहरों की ओर पलायन हो रहा था वो कम होने की संभावना है? बड़ी खामियों की बात करें तो जिस तरह से मनरेगा में हम देख रहे थे, चाहे दिनों की संख्या की बात कर लें या फिर वेतन भुगतान की बात कर लें या फिर कृषि फसलों के अवकाश की बात कर लें, ये सारी चीजें दूर की गई हैं इस नए अधिनियम में?
0: देखिए, जहां तक मनरेगा की बात है, जो पहले स्कीम चली तो उसमें कुछ खामियां पाई गई, जैसे बड़े पैमाने पर उसमें पारदर्शिता का अभाव था, यही नहीं जवाबदेही का अभाव भी पाया गया, कई प्रकार की अनियमितताएं हुई, कई तरह से कह सकते हैं उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ, मशीनों का प्रयोग किया गया, काम जो मजदूरों से होना था उनको मशीनों के जरिए कराया गया, और जो लेखा जोखा होता था उसमें भी जवाबदेही की कई तरह की कमियां पाई गई। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो मनरेगा स्कीम थी वो तो डिमांड ड्रिवन थी, कह सकते हैं लोग मांग करेंगे तब उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन जो ये विकसित भारत जी राम जी स्कीम नई शुरू की गई है, इसमें सप्लाई की जाएगी या सप्लाई ड्रिवन रोजगार सृजित किए जाएंगे, अर्थात सरकार के स्तर पर ये जो स्कीम लागू की गई है, अब पंचायतों को स्थानीय स्तर पर इस बात का अवसर प्राप्त होगा कि वो गांव की तरक्की के लिए योजनाएं बनाएं और उन योजनाओं के लिए वित्तीय जो प्रबंधन है, वित्तीय जो संसाधन है वो केंद्र सरकार 60% देगी, 40% राज्य सरकारें लगाएंगी। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर केवल केंद्र शासित प्रदेशों को 10% लगाना होगा, बाकी केंद्र सरकार देगी। तो कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि यही स्कीम इस तरह तैयार की गई है जिसमें प्लानिंग, प्रोग्रामिंग और बजटिंग तीनों को एक साथ लेकर जब आगे बढ़ा जाएगा तो गांव की आर्थिक विकास की गति तेज होगी और जो पहले से कह सकते हैं मनरेगा में व्याप्त एक जवाबदेही का अभाव था, पारदर्शिता का अभाव था, एक नई प्रणाली ऐसी उभरेगी जिसमें जवाबदेही होगी, बेहतर कार्यान्वयन होगा और यही नहीं जो स्कीमें लागू की जाएंगी उनका अनुश्रवण भी होगा, क्योंकि मॉनिटरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। डैशबोर्ड के जरिए दृष्टांकित किया जाएगा कि कौन सा काम कहाँ कब होना है, किस प्रकार की स्कीमों को तैयार किया जाना है। तो ये कह सकते हैं कि जो आवश्यक स्कीमें हैं गांव के समग्र विकास के लिए उन स्कीमों को तरजीह दी जाएगी। एक बड़ी बात है कि इसमें जो प्राकृतिक विपत्तियां आती हैं, यानी जो जलवायु से चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं उनको भी संबोधित करने के लिए इस विकसित भारत जी राम जी स्कीम में एक क्षेत्र दिया गया है, कार्य का क्षेत्र दिया गया है। तो मेरा मानना है कि जल सुरक्षा हो, चाहे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर हो, खेती हो, मछली पालन हो, भंडारण हो, बाजार हो, कौशल विकास हो, इन सभी को एकीकृत करते हुए गांव की समग्र उन्नति की चेष्टा के लिए ये स्कीम लागू की गई है और इससे गांव स्तर पर तो तरक्की होगी ही, साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि गांव अब राष्ट्रीय विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे।
1: बिल्कुल सर, आपने कहा कि गांव भी अब राष्ट्रीय विकास में योगदान दे सकेंगे, तो सर आपसे जानना चाहेंगे इस नए अधिनियम में रोजगार, परिसंपत्ति निर्माण, कृषि और ग्रामीण विकास को एक साथ जोड़ने की बात की गई है, ऐसे में कौन कौन से वो विशेष प्रावधान है जो आपको इस नए अधिनियम में विशेष तौर पर प्रभावी लगते हैं?
0: देखिए, जाहिर सी बात है कि इस नई स्कीम में सड़क है, सार्वजनिक भवन है, जैसे स्कूल के निर्माण की बात अगर है, स्वच्छता की विभिन्न सिस्टम्स जो काम कर रहे हैं, सोलर प्रणाली और कह सकते हैं जो नवीकरण ऊर्जा है उसको आगे बढ़ाने का काम, और जो आवासीय योजनाएं पहले से संचालित हो रही हैं और नई स्कीम में आवास की शुरू की जाएंगी, उनमें कह सकते हैं मजदूरों को रोजगार देकर एक ओर जहां उन्हें आजीविका के गुणवत्ता पर अवसर प्राप्त होंगे, इसके साथ ही साथ जो ये बात केंद्र में महत्वपूर्ण होगी

0: या ये कह सकते हैं कि सबसे अहम बात यह है कि स्थानीय स्तर पर टिकाऊ संपत्तियों के सृजन द्वारा गांव का विकास होगा और गांव स्तर पर ही कह सकते हैं स्थानीय रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। तो इससे जब पलायन थमेगा तो ये कह सकते हैं कि नगरीय विकास पर भी जो एक दबाव बनता है, गांव से जब मजदूर पलायित होकर नगरों की तरफ आते हैं तो कई प्रकार की नगरीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनको भी संबोधित करने में ये विकसित भारत जी राम जी स्कीम सहायक सिद्ध हो सकती है।
1: सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार साल 2047 तक एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना चाहती है, यानी कि विकसित भारत की सोच को साकार करना चाहती है, उस दिशा में ये पहल आपको कितनी महत्वपूर्ण लगती है, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पर ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण विकास और रोजगार की बात बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है?
0: देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, उत्तर प्रदेश में खेती का क्षेत्र अभी भी एक प्रधान स्थान रखता है। साथ ही साथ जैसा मैंने अभी उल्लेख किया कि ODOP का क्षेत्र है, जो छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं, फूड प्रोसेसिंग है, एग्रो प्रोसेसिंग है, इनको आगे बढ़ाने का काम चल रहा है और उसको और अधिक मजबूती देने में इस स्कीम से मदद मिलेगी। साथ ही साथ जहां तक विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है, उसको मूर्त रूप देने में भी ये स्कीम काफी सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि ये स्कीम केवल रोजगार देने की स्कीम नहीं है या आजीविका देने की स्कीम नहीं है। इसमें एक और जहां समेक मजदूरी देते हुए मजदूरों का सशक्तिकरण होगा, साथ ही साथ मजदूर एक जनशक्ति के रूप में राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जो जनशक्ति है, जो मैन पावर है या मानवीय पूंजी है, उसकी सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में उभरने में। तो इस तरह देखा जाए तो ये है स्कीम जो एक नवाचारी है, कह सकते हैं ये टिकी हुई है नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल द्वारा, गांव का आमूलचूल परिवर्तन करते हुए या गांव की तरक्की को तेज करते हुए भारत की आर्थिक विकास की गति को भी टिकाऊ बनाना और 2047 तक लक्ष्य को प्राप्त करना विकसित भारत का, वो इस विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में स्कीम बहुत कारगर साबित होगी। आवश्यकता इस बात की है कि निरंतर मॉनिटरिंग की जाए।
1: बिल्कुल सर, आपने विस्तार से बताया कि ये बदलाव केवल रोजगार योजना का विषय नहीं बल्कि ग्रामीण विकास, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था के व्यापक मॉडल से भी जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सामयिक चर्चा में आज आपने सुना विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के लागू होने के बाद ग्रामीण विकास, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलावों पर अर्थशास्त्री एपी तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं 747 किलो हर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी लखनऊ है, पेश है उर्दू कार्यक्रम। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
4: समय नादाब, उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेजबान मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज आप समाअत फरमाएंगे डॉक्टर शरीफुद्दीन से उनका एक मकाला, अमीर मीनाई की गज़लिया शायरी और कलाम शायर के तहत आज के शायर हैं जनाब सलाम फैज़ी। लेकिन सामईन, आज ड्रामा नवीसी और अफसाना नवीसी की एक मोतबर शख्सियत सैयद असगर वजाहत का यौम पैदाइश है, तो पहले समाअत फरमाइए इस हवाले से एक मुख्तसर तकरीर ड्रामा नवीसी का एक अहम शाहकार सैयद असगर वजाहत। पेश कर रहा हूँ मैं मोहम्मद फर्रुख जमाल। दुनिया अदब की ऐसी मुतअद्दिद शख्सियतें हैं जिनके अदबी कारनामों से गुलशन अदब में ताज़ा हवा के झोंकों का एहसास होता रहता है, लेकिन हम अक्सर उनकी हालात ज़िंदगी और दीगर अदबी कारनामों से नावाकिफ रहते हैं। जनाब सैयद असगर वजाहत का शुमार भी हिंदुस्तान के मारूफ अदीबों में होता है। सैयद असगर वजाहत की पैदाइश आज के ही दिन 5 जुलाई सन 1946 को गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में यूपी

0: सलाम फैजी से उनका कलाम।
1: गजल से पहले चार मिसरे समात फरमाए। अर्ज क्या है, खिलने न पाए थे अभी फल फूल के चराग, खिलने न पाए थे अभी फल फूल के चराग, पागल हवा की तेग शजर काटने लगी, पागल हवा की तेग शजर काटने लगी, और दुनिया ने पहले फन की मेरे दाद दी सलाम, दुनिया ने पहले फन की मेरे दाद दी सलाम, फिर उसके बाद दस्ते हुनर काटने लगी, फिर उसके बाद दस्ते हुनर काटने लगी। गजल का मतला समात फरमाए। अब के जुनून शौक में जी का ज़ियां बहुत हुआ, अब के जुनून शौक में जी का ज़ियां बहुत हुआ, रक्से शरर तो कम हुआ फिर भी धुआं बहुत हुआ, रक्से शरर तो कम हुआ फिर भी धुआं बहुत हुआ। हुस्न मतला समात फरमाए कि मुझसे बिछड़ते वक्त वो गिरिया कुना बहुत हुआ, मुझसे बिछड़ते वक्त वो गिरिया कुना बहुत हुआ, बुझ तो गया मगर चराग शोला फसा बहुत हुआ, बुझ तो गया मगर चराग शोला फसा बहुत हुआ, और उठे न हश्र फिर कोई अब अल अमां बहुत हुआ। शेर समात फरमाए कि बाकी नहीं रही रगों में खून की हिद्दतें भी अब,

क्या बहुत हुआ और रहने दो और इम्तिहान सब्र का मेरे अब न लो, रहने दो और इम्तिहान सब्र का मेरे अब न लो, बेहतर है अपनी राह लो देखो मियां बहुत हुआ, बेहतर है अपनी राह लो देखो मियां बहुत हुआ, अब के जुनूने शौक में जी का ज़िया बहुत हुआ। और शेर समाज फरमाए कि लेकिन मैं अपने आप को देता रहा अज़ियतें, लेकिन मैं अपने आप को देता रहा अज़ियतें, यूं तो अदा फरीज़े हमसायेगा बहुत हुआ, यूं तो अदा फरीज़े हमसायेगा बहुत हुआ। मक्ते का शेर समाप्त फरमाए कि अब तो

ताह में कारे जहां बहुत हुआ, इश्को हवस की राह में कारे जहां बहुत हुआ, अब के जुनूने शौक में जी का ज़ियां बहुत हुआ, रक्से शरर तो कम हुआ फिर भी धुआं बहुत हुआ। दूसरी गजल का मतलब समाप्त फरमाए। अर्ज क्या है कि बज़्म में यारा में है सब तंग नजर सोच के चल, बज़्म में यारा में है सब तंग नजर सोच के चल, कौन देता है यहाँ दादे हुनर सोच के चल, कौन देता है यहाँ दादे हुनर सोच के चल, हमने हर शाख पे देखे हैं चमकते खंजर, हमने हर शाख पे देखे हैं चमकते खंजर, तू भी है मौजे हवा, तू भी है मौजे हवा समते शजर सोच के चल, तू भी है मौजे हवा समते शजर सोच के चल, और अपनी पहचान भी खो देते हैं चेहरे के नकूश, अपनी पहचान भी खो देते हैं चेहरे के नकूश, खाक उड़ती है सरे राह गुजर सोच के चल, खाक उड़ती है सरे राह गुजर सोच के चल, और मुझको जाना है बहुत आगे जवाले शब से, मुझको जाना है बहुत आगे जवाले शब से, मेरे हम राह शबे माह उधर सोच के चल, मेरे हम राह शबे माह उधर सोच के चल, और फलसफे वक्त के गुमराह न कर दे तुझको, फलसफे वक्त के गुमराह न कर दे तुझको, सबकी बातों पे यहाँ कान न धर सोच के चल, सबकी बातों पे यहाँ कान न धर सोच के चल। और ये शेर भी समाप्त फरमाए कि फिर कभी

बैठिए बछड़ा जी के लाल, करो तैयारी हरिद्वार कैसो भाया कुमर ना जाए कौन भोर की सगर निगर है गड़ू हर तहर रहे घबराए। पहुंचे हरिद्वार मां सब जजमान रहे बदलाए, चार महीना चौमा तब हरिभाजन मानव कहा हमाल,

तब बाग माँ कोयल कुग कुग रहियाए सुरजा बहनी नरमल खेकर

स्वामी इधर गयो ता महल न माहिल बोले गिरा उजान। कौने राजा का बुलवा दे बगिया हरण दी है करवाए। दिल्ली के बाती माहिल दीनो यौधा वर कालियो बुलाए। राजा जानो बानो गह का मोती सिंहर हे बदलाए। बोले तब

बांधव का राजा पाती दियो पढ़ाए। जल्दी आ जाओ नगर महाबा सुरजा तुमका दियो पढ़ाए। धावन पहुंच गयो बांधव महाराजा पाती दियो पढ़ाए। पाती पढ़ते पर लड़ेगा सरिगा बांधव का।

अभी आप सुन रहे थे राजकुमार यादव और साथी केसवर में आल्हा गायन। प्रसंग था सुरजा हरण। आपको बता दें, राजकुमार यादव और साथी के गाए आल्हा गायन का आप आनंद ले सकते हैं लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं 747 किलो हर्ट्स पर। और अब समय मिला लें, सुबह के 10 बजे का समय हुआ है और कार्यक्रम प्रस्तुत है आपकी पसंद के लोकगीत। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज सबसे पहले पत्र हमने लिया है गुरखेत बाज़ार लहरपुर से एजाज अहमद, रशीद, हकीम मोहम्मद, कबीर, जगदीश प्रसाद और इनके बहुत सारे मित्र बंधु। और आप सभी ने पत्र भेजा है और सुनना चाहते हैं मीनू खरे, रश्मि खरे के स्वर में देवी गीत।

मीनू खरे रश्मि खरे के स्वर में अभी आपने देवी गीत सुना और अब प्रस्तुत है दीपिका मिश्रा के स्वर में द्वारचार। सुनने के लिए पत्र लिख भेजा है महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार, राहुल कुमार, विशाल, शीला, गायत्री ने। और खुर्दी रोड मानपुर से पत्र भेजा है विजय, रानी, महिमा, नीतू और इनके बहुत सारे मित्र बंधुओं ने।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दीपिका मिश्रा के स्वर में द्वार चार। इसी के साथ आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। 10:20 से पुनः सुन सकेंगे आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की प्रशंसा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर चार खाड़ी देशों और अमेरिका तथा बेल्जियम की यात्रा पर आज रवाना होंगे। वेनेजुएला भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2954 हुई। पूर्वी अमेरिका में भीषण गर्मी का प्रकोप, बिजली आपूर्ति प्रभावित। और फ्रांस तथा मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में जकार्ता में इंडिया क्लब के अध्यक्ष सिद्धार्थ टपाड़िया ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों देश अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, कृषि, प्राकृतिक संसाधनों और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करेंगे।
1: पूरे इंडोनेशिया में, ना केवल जकार्ता में, एक उत्साह की लहर दौड़ रही है। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं इंडोनेशिया, तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। 200 वॉलंटियर हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, जो भिन्न भिन्न कम्युनिटी से आ रहे हैं, अपना कल्चर

0: डाइवर्सिटी दिखाने के लिए। इसके अलावा जकार्ता से बाहर से बहुत सारे सैकड़ों लोग आ रहे हैं, चाहे वो मेडान हो, बाली हो, सुराबाया हो या समारांग हो।
1: इस बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं और गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्व पूर्ण है और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। बयान में कहा गया है कि दोनों नेता मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन में मुलाकात करेंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर चार खाड़ी देश और

0: विश्व की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं और गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और ये साझेदारी हिंद प्रशांत में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। बयान में कहा गया है कि दोनों नेता मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन में मुलाकात करेंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर चार खाड़ी देश और अमेरिका तथा बेल्जियम की यात्रा पर आज रवाना होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 10 जुलाई तक की इस यात्रा में डॉक्टर जयशंकर विभिन्न देशों के शीर्ष नेताओं से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। ओमान के बाद डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। इसके बाद वे 14 और 15 जुलाई को ब्रुसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में भाग लेंगे और यूरोपीय संघ तथा बेल्जियम के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अल खमेनेई के 6 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार कल से तेहरान में शुरू हो गए। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
3: ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसाला में आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित लोगों में राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर दलीबफ, विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। बिहार के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेडिटा ने भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। 9 जुलाई को पवित्र शहर मशहद में दफनाए जाने से पहले अगले कुछ दिनों तक अंतिम संस्कार का कार्यक्रम जारी रहेगा। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिग्स ने कहा है कि देश में भूकंप से मृतकों की संख्या 2954 हो गई है और 16,000 से लोग अधिक लोग घायल हैं। लगभग 16,000 लोग बेघर हुए हैं। देश में एक सदी से भी अधिक समय में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप के बाद बचाव अभियान अब भी जारी है। इस बीच वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के शोक की घोषणा करते हुए कहा कि विनाशकारी भूकंप से हुई जान माल की हानि से पूरा देश सदमे में है। वेनेजुएला में 24 जून को 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिससे राजधानी कराकस में कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के झटके वेनेजुएला के एक बड़े हिस्से में महसूस किए गए। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू का प्रकोप जारी है, इससे बिजली आपूर्ति पर प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण फीफा फुटबॉल विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है। पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने भीषण गर्मी से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। अमरीकी मौसम विभाग ने कहा है कि बोस्टन में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस, फिलाडेल्फिया में 44 डिग्री और वाशिंगटन में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। फ्रांस में 1947 के बाद से जून अब तक सबसे गर्म महीना रहा। सरकारी मौसम एजेंसी के अनुसार जून में औसत तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रहा।

0: भीषण लू से तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से 24 और 25 जून अब तक के सबसे गर्म दिन रहे। इसी पहली बार फ्रांस में राष्ट्रीय स्तर पर औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। माली की सेना ने कहा है कि विद्रोहियों ने उत्तरी इलाकों के गांव और सिवारी कस्बों को निशाना बनाया है। एक विद्रोही गुट के उत्तरी इलाके के एक कस्बे पर कब्जा करने के लिए नए हमले का ऐलान करने के बाद ये बयान आया है। आजाद लिबरेशन फ्रंट के एक प्रवक्ता ने कहा कि अलगाववादी एनिफिस कस्बे को निशाना बना रहे हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: सबसे पहले बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने प्री क्वार्टर फाइनल के मैच में पैराग्वे को कड़े मुकाबले में 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले टेक्सास में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 की शानदार जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। क्रिकेट की बात करें तो मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने T20 क्रिकेट में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर ही 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। और अब बात टेनिस की। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मार्टेस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबकीना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की इगा स्वेटेक को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आज सर्बिया के नोवाक जोकोविच का प्री क्वार्टर फाइनल के मैच में रूस के रोमन सफियोलिन से मुकाबला होगा। वहीं शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली के यानी सिनर का सामना जापान के शिंतारो मुजुकचुकी से होगा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 4 खाड़ी देशों और अमरीका तथा बेल्जियम की यात्रा पर आज रवाना होंगे। वेनेजुएला भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2954 हुई। पूर्वी अमेरिका में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, बिजली आपूर्ति प्रभावित। और फ्रांस तथा मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम में। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं संजोली पांडे के स्वर में बधावा। इसे सुनने के लिए हमें पत्र भेजा है महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग, प्रदीप, केशव और सरला प्रकाश ने।

0: कनेरा मोहल्ला पटियाला सी मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, करण, निहारिका और वंश बत्ता ने पत्र भेजा है और आप सभी सुनना चाहते हैं। सतीश चंद श्रीवास्तव के स्वर में दादरा
1: बदरिया में चांद का

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
3: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम में। और अब आइए सुनते हैं उपमा पांडे के स्वर में विवाह गीत। इसे सुनना चाहा है बाबा कुठी उफरा पाटन से प्रेम साहू, यमुना साहू ग्राम अमलेश्वर से डोमन, सुमन मिथिलेश तारनी, सूरज ज्योति रियांश और गुड़िया ठाकुर ने।

दत्रेंगी से भागवत वर्मा और इनके परिवार के सदस्यों ने पत्र भेजा है और आप सभी सुनना चाहते हैं। संजू सिंह के स्वर में विदाई गीत। और आप सभी सुनना चाहते हैं संजू सिंह के स्वर में विदाई गीत।

अवधेश बालेश्वर और साथी के स्वर में लोक भजन सुनने के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है कटरा चांद खां, पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल सुंदर देवी, प्रकाश रिंकी, कपिल वेदराम, खुशबू एरोही और स्वाति मौर्य ने।

छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से पत्र भेजा है गन्नू लाल के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री ने, और आपने फरमाइश की है श्रद्धा शुक्ला और मुस्कान तिवारी के स्वर में सुहाग गीत सुनने की।

सुहाग बर से बनी तोहरे अंगनवा। अभी आप श्रद्धा शुक्ला और मुस्कान तिवारी के स्वर में ये सुहाग गीत सुन रहे थे। आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से। नीलम पाठक के स्वर में आइए सुनते हैं सोहर। इसे सुनने के लिए पत्र भेजा है मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंद्र संधू, महावीर गुरचरण, रमेश मिगलानी। और आदर्श नगर मलोट पंजाब से हमें पत्र भेजा है राज शर्मा, मीना, योगेश और सौरभ शर्मा ने। और आपकी फरमाइश पर प्रस्तुत है सोहर स्वर नीलम पाठक का।

और अब आइए सुनते हैं प्रियंका पांडे के स्वर में चौमासा। इसे सुनने के लिए पत्र भेजा है करगैना बरेली से बेनी सिंह, पन्नीलाल, आशीष कुमार, हितेश, राजेश, रूबी, एकता, दिव्या, रचना और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने।

अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद के लोकगीत। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर।

अभी आपने सुना फिल्म जीनी की राह में मोहम्मद रफ़ी को। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि किन्हीं कारणों से आज हम आपको आपका पसंदीदा कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें नहीं सुनवा पा रहे हैं, जिसका हमें खेद है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। लीजिए सुनिए फिल्म सूरज का ये गीत, जिसे स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी ने।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म सूरज का ये गीत। आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कश्मीर की कली का ये गीत।

और अब लीजिए सुनिए फिल्म जंगली का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। गीत के बोल हसरत जयपुरी के और संगीत शंकर जयकिशन का है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट से आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। लीजिए अब सुनिए फिल्म प्रोफेसर का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने, गीत के बोल हसरत जयपुरी के और संगीत शंकर जयकिशन का है।

अभी आपने सुना फिल्म दिल तेरा दीवाना का ये गीत, जिसे आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। गीत के बोल शैलेंद्र के और संगीत शंकर जयकिशन का था। आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं हसरत जयपुरी का लिखा गीत, जिसे संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने। फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस और स्वर वही एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी के।

और अब हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार का गाया फिल्म अनोखी अदा का ये गीत, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: अभी आपने सुना किशोर कुमार को फिल्म अनोखी अदा में। इसके साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश। आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: हम अपने खेल प्रेमी श्रोताओं को एक बार पुनः याद दिला दें कि आज शाम 7:31 पर आप सुनेंगे ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले फाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है बच्चों के लिए उनका साप्ताहिक कार्यक्रम बाल मंच।

0: प्यारे बच्चों जय हिंद।
1: सभी साथियों को हमारा भी जय हिंद। दीदी नमस्ते।
0: आ जाइए अपने रेडियो सेट के और पास या बढ़ा लीजिए वॉल्यूम,
2: क्योंकि शुरू हो चुका है आपका अपना मन पसंद कार्यक्रम
3: बाल मंच। स्वागत है आप सभी का। आज आपके साथ हैं मैं मोहम्मद अरीब,
2: मैं स्वरा त्रिपाठी
0: और मैं आपकी राजलक्ष्मी दीदी। और बताइए अरीब और स्वरा, क्या हो रहा है आजकल?
3: होना क्या है दीदी, फिर वही बोरिंग लाइफ शुरू हो गई है।
0: बोरिंग लाइफ? अच्छा, आपके स्कूल्स खुल गए हैं, है ना?
2: जी दीदी, सही कहा आपने, फिर वही सब करना पड़ रहा है जिसे करने का मन नहीं करता।
0: मन को मनाना पड़ता है और उस काम में लगाना पड़ता है जिससे आपकी जिंदगी बनती है, संवरती है।
3: वही तो दीदी, तभी तो मन मार कर हम लोग वही करते हैं।
0: करना ही पड़ेगा बच्चा, क्योंकि आप लोगों का काम ही पढ़ना लिखना और कुछ कर दिखाना।
2: वो तो ठीक है दीदी, लेकिन कोई हमारी बातें भी सुने तब सही है।
0: क्या बात है आपकी, हमें भी कुछ बताइए।
3: दीदी आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है, बारिश के मौसम में बारिश ही नहीं हो रही है।
2: हाँ अरीब, सही कहा तुमने, बादल आते हैं, थोड़ी देर बरसते हैं और फिर चले जाते हैं।
0: स्वरा, ये सब प्रकृति से खिलवाड़ करने के कारण हो रहा है। जो चीजें हमें मुफ्त में मिलती है ना, हम उनकी वैल्यू नहीं समझते।
3: बिल्कुल सही कहा दीदी, आज जहाँ देखो वहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं सड़क बन रही है तो कहीं फ्लाईओवर बन रहा है और कहीं कुछ।
0: ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है कि हम विकास के नाम पर प्रकृति की परवाह नहीं कर रहे। जब पेड़ नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे, तो मौसम में ये बदलाव तो होंगे ही। ना समय से बारिश होगी, ना गर्मी रुकेगी, धीरे धीरे बहुत सारी और भी समस्याएं पैदा होंगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर के एम मुंशी जी ने सन 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की थी।
2: जी दीदी, इसे हर साल 1 से 7 जुलाई के दौरान मनाया जाता है।
0: इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए तैयारी और लोगों को पौधे लगाने और धरती को हरा भरा रखने के लिए प्रेरित करना है।
3: जी दीदी,

0: पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ये धरती के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता देते हैं।
1: अरीब, इसके साथ ही पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। पेड़ बादलों को भी लाते हैं।
0: अच्छा, तभी बारिश के मौसम में बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी कॉलोनी में तो पेड़ ही नहीं है।
2: इसीलिए ये वन महोत्सव मनाने की परंपरा शुरू की गई है। जैसे हम अपने पर्व उत्सव हंसी खुशी से मिलजुल कर मनाते हैं, वैसे इस महोत्सव को सक्रिय रूप से भाग लेकर सफल बनाना होगा। तभी हमारा जीवन सुरक्षित होगा, पर्यावरण संरक्षित होगा, फिर हम वर्षा रानी को बुला सकेंगे।
1: क्या बात है दीदी, सचमुच अब तो बस बादल राजा और बरखा रानी का इंतजार है।
0: हाँ स्वरा, जब बादल और बरखा आएंगे तभी तो धरती पर हरियाली छाएगी और हर तरफ खुशहाली ही होगी।
2: क्या बात कही है अरीब, तो इसी बात पर सुनो ये संगीत नाटिका हाँ से हरियाली चहु दिश खुशहाली। संगीत संयोजन अमिताभ श्रीवास्तव भैया का, आलेख और प्रस्तुति ममता उपाध्याय दीदी की है।

0: शाबाश बच्चों।
1: घंटी बोली टन टन टन, अब घर जाओ आना कल। घंटी बोली टन टन टन, अब घर जाओ आना कल।

छुट्टी की घंटी बजते ही मीकू खरगोश और टीटू कछुआ भी घर की ओर चल दिए। दोनों का घर दूर घने जंगल में था। दोनों दोस्त बातें करते चले जा रहे थे कि अचानक उन्हें रोने कराहने की आवाजें सुनाई पड़ी।

0: नीकू बहुत डर गए और झटपट घर की ओर दौड़ पड़े। अगले दिन स्कूल में मीकू और टीटू ने भालू टीचर को भूत और पेड़ वाली बात बताई।
1: भालू दादा ने उनको समझाया, होता नहीं भूत प्रेत का साया। फिर भालू दादा हैरान परेशान होने लगे, सोचने लगे, किसने काटे पेड़ हमारे, पर्यावरण के कौन हत्यारे।
0: चिंतित भालू टीचर ने स्कूल की छुट्टी कर दी और जंगल के राजा शेरू शेर से मिलने चल दिए।
1: बच्चों, शेरू शेर अपनी गुफा से बाहर बैठे धूप सेक रहे हैं।
2: महाराज की दुहाई हो।
3: क्या बात है भालू मास्टर, बड़े परेशान लग रहे हो।
0: भालू टीचर ने शेरू राजा को भूत जैसे काले साये द्वारा पेड़ काटने की घटना बताई। यह सुनकर शेरू शेर ने गुस्से में दहाड़ लगाई।

भालू दादा ने शेर महाराज को सुझाव दिया, क्यों ना अपराधी को पकड़ने का काम जासूस मंटू बंदर को सौंप दिया जाए। महाराज ने हामी भर दी और मंटू को बुलावा भेजा।

0: सभी खुश होकर बोले, तू भी दो घड़े शहद के इनाम में ले ले।
1: मंटू बंदर ने फिर जंगल की ओर दौड़ लगाई, पेड़ों से सूखा गोंद इकट्ठा किया, आग में पिघलाकर गोंद का घोल तैयार किया और चल दिया उस ओर जहाँ खूब हरे भरे पेड़ थे। वहाँ पहुंचकर मंटू ने पिघले गोंद को पेड़ों के चारों तरफ फैला दिया।
0: शाम हो चली थी। शेरू राजा, मंटू बंदर, भालू दादा, टीटू कछुआ, मीकू खरगोश के साथ और भी कई जानवर दूर झाड़ियों में छुपकर रात का इंतजार करने लगे।
1: घिरा अंधेरा, रात आ गई, हाथ को हाथ न सूझे भा

0: चला आ रहा था वो पेड़ों की ओर। सासे थामे देख रहे थे सभी जानवर उसकी ओर।
1: बच्चों, वो काला साया पेड़ों के पास आकर खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। पेड़ काटने के लिए जैसे ही वो पेड़ों के और पास पहुंचा, उसे पैरों तले कुछ चिपचिपाहट महसूस हुई। घबरा कर उसने पैरों को झटका दिया, लेकिन ये क्या, पैर तो जमीन से चिपक गए थे।
0: झटके मारे उसने 8-10 पैर हुए ना टस से मस। कुल्हाड़ी हाथ से गिरी छूट कर, डर से कांपने लगा वे थर थर, डर से कांपने लगा वे थर थर, डर से कांपने लगा वे थर थर।
1: डर से कांप रहे भूत को देखकर सभी जानवर झाड़ियों से बाहर निकल आए। देखे ये कैसा है भूत, क्या जीता है ये लकड़ी का चूस।
0: शेरू राजा ने लगाई दहाड़, करता हूँ इसकी चीरफाड़, करता हूँ इसकी चीरफाड़, करता हूँ इसकी चीरफाड़।

0: तुझको हमने माफ किया, कैद से तुझको आजाद किया।
1: शेरू

0: संगीत नाटिका सुनकर तो मजा ही आ गया।
1: सचमुच हम सभी को अपनी धरती को हरा भरा बनाना होगा, तभी हम सुरक्षित रहेंगे, हमारी धरती सुरक्षित रहेगी।
2: बच्चों अभी आपने सुनी ये संगीत नाटिका ह से हरियाली चहु दिश खुशहाली। आलेख एवं प्रस्तुति ममता उपाध्याय दीदी की थी। संगीत संयोजन अमिताभ श्रीवास्तव भैया का, और इसमें भाग लेने वाले बाल कलाकार थे अमृता पाल, दर्श दीक्षित, स्वरा त्रिपाठी, नीति के गुप्ता, तेजस्वी श्रीवास्तव, सारांश तिवारी और पावनी गुप्ता।
0: दीदी हमें केवल कहना ही नहीं है, करके भी दिखाना है।
2: बिल्कुल स्वरा, हम पर्यावरण, पेड़, पानी, बिजली जैसी चीजों को बचाने की बात करते हैं, लेकिन इस पर काम नहीं करते। कई बार हम यूं ही बिजली से चलने वाले उपकरणों को चलता छोड़ देते हैं, पानी का नल खुला छोड़ देते हैं।
1: जी दीदी, मेरे पड़ोस के एक घर में पानी की मोटर चला दी जाती है और उनकी टंकी से घंटों तक पानी बहता रहता है।
0: तो तुम्हें इस बात की शिकायत करनी चाहिए, ऐसे तो धरती के अंदर का सारा पानी खत्म हो जाएगा, फिर हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य तो बर्बाद हो जाएगा।
2: सही कह रही हो सुरा, क्योंकि अब बारिश भी कम होती है और जो होती भी है वो पानी बहकर बेकार चला जाता है। हमें बारिश के इस पानी को पकड़ना होगा, तभी बात बनेगी।
1: बारिश का पानी कैसे पकड़ेंगे दीदी?
0: मैंने इसके लिए बहुत उपाय पढ़े हैं।
1: तो जल्दी से बताओ ना।
0: एक उपाय है रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
2: हाँ, इसे वर्षा जल संचयन कहते हैं। इसमें बारिश के पानी को बर्बाद होने से बचाया जाता है और बाद में उपयोग करने के लिए इसे जमीन के अंदर भेजा जाता है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें बारिश के पानी को छतों, खुले

0: मैदानों में गिरने वाले पानी को टैंक में इकट्ठा किया जाता है या फिर पाइप के द्वारा सीधे जमीन में रिचार्ज किया जाता है।
1: अच्छा, मतलब जैसे हैंड पाइप या सबमर्सिबल से धरती से पानी निकाला जाता है, वैसे ही इसे हार्वेस्ट भी किया जा सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा अरिब, इसे ही कैच द रेन मतलब बारिश के पानी को पकड़ना कहते हैं। पहले के जमाने में भी लोग बहुत सारे तालाब बावड़ियां बनाते थे जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था और बाद में उसका उपयोग किया जाता था।
2: अब समझ में आया तुम्हें?
1: हाँ, अब अच्छे से समझ गया हूँ।
3: कैच द रेन।

0: नॉलेज बैंक का पिटारा खुलने जा रहा है।
1: हाँ, हर बार की तरह फिर एक बार आने वाले दिनों में पढ़ने वाले दिवसों की जानकारी लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले बात विश्व चॉकलेट दिवस की।
2: चॉकलेट दिवस? मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है दीदी।
1: ये दिवस हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है और इसे चॉकलेट की शुरुआत के अवसर पर मनाया जाता है, मतलब चॉकलेट का बर्थडे होता है इस दिन। यूरोप में चॉकलेट को 1550 में खोजा गया था और विश्व चॉकलेट दिवस 2009 से मनाया जा रहा है।
0: स्वरा, इस बार हम लोग भी चॉकलेट का बर्थडे मनाएंगे।
2: बिल्कुल मनाएंगे, तो मेरे लिए सबसे बड़ी वाली चॉकलेट लेकर आना।
1: लेकिन जरा सोच समझ कर चॉकलेट खाना, नहीं तो ज्यादा मीठा खाने से दांतों में कीड़े लग जाएंगे। कीड़ों से याद आया, 6 जुलाई को हर साल विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है।
2: जूनोसिस दिवस? ये क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है दीदी?
1: स्वरा और अरीब, ये दिन जानवरों से इंसानों में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों, मतलब जूनोटिक बीमारियों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने और इनसे बचने के लिए उपायों को बताने और अपनाने के लिए मनाया जाता है। इसी दिन, मतलब 6 जुलाई को 1885 में लुई पाश्चर ने पहली बार रेबीज का सफल टीका लगाया था। आप लोग तो जानते ही हो, रेबीज जानवरों से फैलने वाली एक बीमारी है। इसके अलावा स्वाइन फ्लू, कोविड-19, निपाह वायरस, इबोला वायरस आदि भी जानवरों से फैलते हैं।
0: अच्छा दीदी, इनसे बचा कैसे जाए?
1: इन जूनोटिक बीमारियों से बचने के लिए पालतू जानवरों का समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, जंगली जानवरों और उनके प्राकृतिक आवासों में बेवजह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
2: बहुत ही बढ़िया जानकारी दी दीदी आपने। इस बारे में मैं और लोगों को भी बताऊंगी।
0: मैं भी बताऊंगा।
1: बिल्कुल बताना, यही तो हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। और अब याद कर लेते हैं अपने उन महापुरुष को जिनकी जयंती हम 6 जुलाई को मनाएंगे।
0: उनका नाम क्या है दीदी?
1: वो है श्री

0: श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे देश के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता, हम उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
1: जी दीदी।
0: उसने कहा था।
1: किसने क्या कहा था दीदी?
0: उसने कहा था, एक कहानी है जिसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा था, जिनकी जयंती हम 7 जुलाई को मनाएंगे।
1: ओह, तो ऐसा बताइए ना दीदी, आप तो पहेली पूछने लगती हैं।
0: तभी तो पता चलता है कि आप लोग कितना ध्यान से पढ़ाई करते हो।
2: बिल्कुल दीदी, आपकी ये नॉलेज बैंक की पिटारी बहुत ही कमाल की है।
1: हाँ, इससे बहुत सारी नई नई जानकारियाँ निकलती हैं।
0: तो अब करते हैं ये पिटारी बंद।
2: दीदी, अब तो कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है।
1: इतनी जल्दी?
0: तो समय पर समय की बात, लेकिन हमारे बाल साथियों को आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ईमेल जरूर करें।
2: हमारा ईमेल एड्रेस है bmbg.airlko@gmail.com।
0: और अब बारी आ गई विदा लेने की, तो अगले किसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति
2: स्वरा त्रिपाठी को,
1: मोहम्मद अरीब को
0: और राजलक्ष्मी दीदी को।
3: जय हिंद।
4: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल मंच। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं आशा भोसले की गई फिल्म एक फूल दो माली के इस गीत के साथ। गीत प्रेम धवन का और संगीत रवि का है।

और अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर का गाया फिल्म पत्थर की सनम का ये गीत, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

और अब लीजिए सुनिए इंदीवर का लिखा, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया फिल्म हीरा का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

राजा और रंग, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब आप सुनेंगे। स्वर लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

और अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म मेरा गांव मेरा देश का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: इसके साथ ही सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, दिन के 1 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित LNG के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्ची में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में AI गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद AI के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक AI संवाद में AI पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो AI की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी

0: संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित कुछ सूचनाएं सुनिए। प्रभारी विलुप्त व्यक्ति राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रकाश पुत्र राम सहाय निवासी ग्राम जरियनपुर थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर से दिनांक 1 जून 2026 से कहीं लापता हैं। प्रकाश की आयु लगभग 65 वर्ष, कद 6 फुट, सांवला रंग और औसत चेहरा है। इनके चेहरे पर चेचक के दाग भी हैं। निधि पत्नी छोटक्के निवासी C128N विनीत खंड 1 गोमती नगर लखनऊ से दिनांक 11 जून 2026 से कहीं लापता हैं। निधि की आयु 30 वर्ष, कद 5 फुट, गोरा रंग और गोल चेहरा है। सचिन गौतम पुत्र सुरेंद्र गौतम निवासी हरिहरपुर थाना सूर्यावां जनपद भदोही से दिनांक 11 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। सचिन गौतम की आयु लगभग 19 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, गेहुआ रंग और गोल चेहरा है। सविता देवी उर्फ सोनू पत्नी अजय वर्मा निवासी ग्राम रामपुर ग्राम रामपुर घाट थाना गोपीगंज जनपद भदोही से दिनांक 11 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। सविता देवी उर्फ सोनू की आयु 26 वर्ष, कद 5 फुट, गोरा रंग और लंबा चेहरा है। खुशबू बिंद पत्नी विमल कुमार बिंद निवासी ग्राम रामकिशनपुर बसही थाना कोईरौना जनपद भदोही से दिनांक 20 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। खुशबू बिंद की आयु 23 वर्ष, कद 5 फुट 4 इंच, गेहुआ रंग और गोल चेहरा है और दाहिने आँख के नीचे काला तिल है। काजल पांडे पुत्री सत्य प्रकाश पांडे निवासी इनारगांव थाना कोईराना जनपद भदोही से दिनांक 25 जनवरी 2026 से कहीं लापता हैं। काजल पांडे की आयु लगभग 26 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, गेहुआ रंग और गोल चेहरा है। जिस किसी भी व्यक्ति को इन खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कोई जानकारी हो या मिले तो कृपया इस पते पर सूचित करें। पता है प्रभारी विलुप्त व्यक्ति राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश लखनऊ। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं समाप्त हुईं। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रायोजित कार्यक्रम NCRT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

0: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
1: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
3: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 1:10 हुआ चाहते हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
4: ये आकाशवाणी लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से।
5: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान में हिंदुस्तान की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को कौम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अज़्म और मुसलसल कोशिशों के जरिए उसने 21वीं सदी के सबसे बड़े तवानाई के बहरान पर कामयाबी से काबू पा लिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने हर सतह पर बरवक्त फैसले किए, उभरते हुए बहरान का दुरुस्त अंदाज़ा लगाया, एक मौसर हिकमत अमली बनाई और मुल्की वसायल के मुतवाज़न इस्तेमाल को यकीनी बनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि सिफारतकारी और तजवीराती इकदामात के जरिए मुल्क ने इस बहरान से कामयाबी से निपटा।
6: पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
5: भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट नितिन नवीन कल पहली बार 2 रोजा दौरे पर लखनऊ पहुंचे। कौमी सदर ने पार्टी हेडक्वार्टर में रियासती एग्जीक्यूटिव अहदेदारों और जिला सुदूर के साथ एक अहम मीटिंग की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और रियासती बीजेपी सदर और मरकजी वजीर मुमलिकत पंकज चौधरी भी मीटिंग में मौजूद थे। इसके अलावा उन्होंने वजीर आला, नायब वजीर आला, बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट और एमएलसी से भी मुलाकातें की। कल लखनऊ के अपने दौरे के दौरान जनाब नवीन ने हनुमान सेतु मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने भगवान हनुमान के दरबार में अपना सर झुकाकर मुल्क और रियासत के लोगों की खुशी, अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। लखनऊ के अपने 2 रोजा दौरे के दौरान कौमी सदर जनाब नितिन नवीन ने रियासती सदर पंकज चौधरी के साथ लखनऊ में बीजेपी उत्तर प्रदेश के साबिक सुदूर की मीटिंग में भी शिरकत की और रियासती जनरल सेक्रेटरी तंजीम श्री धर्मपाल कौमी सदर आज मुख्तलिफ आवामी तकरीबात में शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू काउंसिल ने अवामी अहमियत की अराजी से मुतल्लिक मुकदमात के जल्द और मेयारी निपटाने को यकीनी बनाने के लिए एक अहम फैसला किया है। इस फैसले के तहत रिजर्व कैटेगरी की जमीन, सरकारी जमीन, ग्राम सभा की जमीन, नजूल अराजी, खाली होने वाली जायदाद और दुश्मन की जायदाद से मुतल्लिक तमाम मुकदमात की समाअत अब 3 रुकनी खसूसी बेंच करेगी। इस इंतजाम को फौरी तौर पर नाफिज कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
7: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों

0: प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: उत्तर प्रदेश रेवेन्यू काउंसिल। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। पार्लियामानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून इजलास बुलाने की हुकूमत की तजवीज को मंजूरी दे दी है। मिस्टर रिजिजू ने कहा कि सेशन में कौमी अहमियत के मसाइल पर बामानी बहस और फैसला साजी पर तवज्जो दी जाएगी। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा इस साल भी बड़े जोश के साथ शुरू हुई। यात्रा के पहले दो दिनों के दौरान 32,313 जायरीन ने मुकद्दस गार की जियारत की। दरियसना सालाना यात्रा के लिए यात्रियों का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान रवाना हुआ। रियासत के कई अजला में मरतूब गर्मी पड़ रही है, जिससे मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। इधर लखनऊ समेत कुछ अजला में बारिश होने से शदीद गर्मी से राहत मिली है। कानपुर और टूंडला में कल की मूसलाधार बारिश ने

0: आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान रवाना हुआ। रियासत के कई इजला में मरतूब गर्मी पड़ रही है, जिससे मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। इधर लखनऊ समेत कुछ इजला में बारिश होने से शदीद गर्मी से राहत मिली है। कानपुर और टूंडला में कल की मूसलाधार बारिश ने आम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक रियासत के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम, आज इतवार है। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए साक्षमा पांडे की लिखी लघु नाटिका एक सवाल, तुम ठीक हो। निर्देशक हैं अतिश कुमार श्रीवास्तव।
2: आई एम द बेस्ट। बस करो, वही सपना। आखिर ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है? जरा फोन चेक कर लेता हूं, कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं आई है। ओ माय गॉड, 12 बज गए। अरे बाप रे, मुझे तो 2 बजे तक स्टूडियो पहुंचना था और मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूं। 10 मिनट के अंदर मुझे घर से निकलना ही पड़ेगा, वरना मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगा। अरे राहुल बेटा, जल्दी कर।
3: अरे अरे राहुल बेटा, ऐसे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो?
2: मम्मी, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, पहले लेट हो चुका हूँ।
3: कुछ खा कर तो जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ।
2: अरे मम्मी, ऑलरेडी लेट हो गया हूँ भाई, अगर कुछ खाने के लिए रुकूंगा तो पक्का टाइम से नहीं पहुँच पाऊंगा मैं।
3: तो क्या खाली पेट जाओगे? बस 2 मिनट रुको, मैं अभी पराठे में सब्जी लगा कर लाती हूँ, तुम खाते हुए चले जाना।
2: अरे क्या है मम्मी, सबसे खाना खाना खाना लगा रखा है। अरे सब कुछ खाने से मिल जाएगा क्या?
3: अरे अरे भगवान के हाथ तो जोड़कर

0: आज 100 मीटर दूर पार्किंग भी बहुत लंबी लग रही है। बस कैसे भी करके मैं टाइम पर पहुंच जाऊं। वैसे जहां तक है बाइक से 1.5 घंटे में तो पहुंच ही जाऊंगा।
1: रोहन चलो उधर की तरफ चलकर खेलते हैं, इधर बहुत धूप है।
2: हाँ चलो चलो। अरे वो देखो राहुल भैया आ रहे हैं, जल्दी चलो नहीं तो गुस्सा करने लगेंगे।
1: हाँ हाँ चलो चलो जल्दी। मिर्ची भैया आइसक्रीम खा लो ना, भागो रोहन। भागो, भागो।
0: इस वक्त जल्दी में हूँ, वरना अभी तुम दोनों को यही मिर्ची वाली आइसक्रीम खिलाता मैं। अरे ये बाइक स्टार्ट होने के बाद भी उठ क्यों नहीं रही है?
2: अरे भैया आपकी बाइक तो पंचर है, पंचर।
0: क्या ये जरूर इन शरारती बच्चों की कारिस्तानी होगी। मन तो कर रहा है इन्हें अभी यही ठीक कर दूं, पर पहले ही 12:20 हो चुके हैं, इनसे उलझा तो लेट होना तय है। क्या करूं, फिलहाल जल्दी से कैब बुक कर लेता हूं।
3: कैब?
0: ये कैब को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे इतनी देर कहां लगा दी भाई, टाइम तो 5 मिनट ही दिखा रहा था।
3: साहब मेरी पिछली सवारी एक बूढ़ी बाबा की थी, उनके पास काफी सामान था जो वो अकेले नहीं उतार पा रहे थे।
0: अब चलो जल्दी।
4: राहुल जी ओटीपी
0: 82749। स्टूडियो चलिए जल्दी।
3: साहब स्टूडियो आ गया।
0: पेमेंट हो गया है।

0: अब इस स्टूडियो में तो फिलहाल पहली बार ही हूँ, और तुम?
1: मेरा तीसरा ऑडिशन है, देखो क्या होता है।
0: अच्छा, ऑल द बेस्ट।
2: ध्यान से सुनो सब, ऑडिशन अब शुरू होने वाले हैं। सुनो, मैं एक एक करके नाम पुकारूंगा और तुम लोग अंदर आते रहोगे, समझे?
3: लगता है बड़ा खड़ूस है।
0: मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है।
2: राहुल देख चेक। ऑनर राहुल भाई।
3: अरे, इसकी फाइल में राहुल नाम लिखा है पर ये तो सो गया। राहुल, उठो, देखो तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है।
0: जी, मैं राहुल हूँ।
2: इतनी देर से जब मैं तुम्हारा नाम पुकार रहा था, तुम कहाँ थे? देखने से तो लग रहा है तुम सोते से उठ के आए हो। तुम गाना गाओगे? हुलिया देखो अपना, जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं हमारा टाइम बर्बाद करने के लिए, हैं?
0: शक्ल देखकर टैलेंट नहीं जज करा जा सकता, और इतना इंतजार करने के बाद किसी की भी ऐसी हालत हो जाएगी ना।
2: क्या कहा? चलो, ये तुम्हारी इच्छा है ना, ये अभी पूरी कर देते हैं। तुम्हारे टैलेंट से ही जज कर लेता।
0: नहीं, वो क्या, मेरा वो मतलब नहीं था सर।
2: इधर लो।
0: मैं तो बस
2: तुम्हारी फाइल है, देखिए जरा, देखें तो। अच्छा,
0: I'm sorry सर, मुझे माफ कर दीजिए ना, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए।
2: अंदर जाने से पहले मेरे सामने अपनी काबिलियत साबित करो।
0: जी।
2: अच्छा, इसमें लिखा है कॉलेज के बैंड में रहे हो, वहां से 3-4 कॉन्सर्ट किए हो, और यूट्यूब पर एक गाना वायरल हुआ है, वो भी 1.5 साल पहले। अच्छा, और उसके बाद क्या? चलो,
0: उसके बाद से कोशिश ही कर रहा हूं।
2: अच्छा, मतलब किया कुछ नहीं, कि कोशिश चल रही है तुम्हारी, किया कुछ नहीं।
0: आई एम सॉरी सर, प्लीज ऐसे मेरे नाम के आगे क्रॉस मत लगाइए सर। प्लीज मुझसे ये मौका मत छीनिए, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है सर।
2: ऐसा है बच्चे, इतनी मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हो? अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। फिलहाल मेरे पास इस वक्त इतना समय नहीं है कि जो मैं तुम पर बर्बाद करूं, समझे?
0: सर प्लीज सर
2: गो नेक्स्ट, अमित वर्मा।
0: बस इतना ही था, मैंने इतनी मेहनत की थी। हाँ, शायद सच में आज का दिन ही खराब था। चल राहुल, घर चल। अगर आज ये बाइक ना पंचर हुई होती तो शायद ये सब नहीं होता, और ये सब उन शरारती बच्चों की वजह से हुआ है। मैं उन्हें इसकी सजा जरूर दूंगा, और अभी दूंगा। अच्छा, ये खेल रहे हैं यहाँ पर, अभी रुको।
4: अरे रोहन, जल्दी से भागो, देखो देखो राहुल भाई आ गए।
5: हाँ, भागो।
6: मुझे देखते भाग रहे, रुको। ये ना तुम्हारी साइकिल, क्यों नहीं तोड़ू? तोड़ूंगा साइकिल तुम्हारी। मैं तुम लोग मुझे मिर्ची वाली आइसक्रीम खिलाना चाहते थे ना?
4: नहीं, ये लो, ये लो, हमारी साइकिल मत तोड़िए।
6: हाँ, अब जाओ टूटी साइकिल लेके जाओ।
4: हमारी साइकिल तोड़ दी राहुल भैया ने। चलो मम्मी से बताते हैं।
7: अरे क्या हुआ, फिर लड़ाई हो गई क्या दोनों में?
4: मम्मी, राहुल भैया ने तोड़ दी।
7: अरे क्या, राहुल ने तुम्हारी साइकिल तोड़ दी? अरे राहुल, तुमने ये क्या किया? तुमको शर्म नहीं आई? तुमने इन मासूम बच्चों की साइकिल तोड़ दी।
6: जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। सुबह इन्होंने मेरी बाइक के टायर की हवा निकाली थी, इसलिए मैंने इनकी साइकिल तोड़ दी।
7: तुम होश में तो हो? ये मासूम 8-9 साल के बच्चे हैं, और इनसे तुम अपनी तुलना कर रहे हो। अगर उन्होंने कोई शरारत करी भी है तो तुम उन्हें प्यार से समझाओ, या तुम्हें उनसे बदला लेना चाहिए।
6: छोटे हैं तो क्या हुआ भाई, कुछ भी करेंगे क्या, बिना ये सोचे समझे कि दूसरों को इससे कितनी परेशानी हो सकती है।
7: बच्चों इधर आओ मेरे पास। बच्चों, क्या तुमने भैया की बाइक से हवा निकाली थी?
4: नहीं मम्मी, हमने कुछ नहीं किया।
6: झूठ बोल रहे हैं ये, आज सुबह मैंने अपनी आंखों से देखा था कि ये दोनों मेरी बाइक के पास खेल रहे थे, तो इन्होंने निकाली हवा।
7: खबरदार, अगर तुमने एक शब्द भी बोला राहुल।
2: और राजेश जी।
8: अरे क्या हुआ बत्रा साहब, बताइए क्या हुआ?
2: गजब हो गया राजेश।

0: अरे बाप, कितना बड़ा सेटअप है।
1: ओ जी, कौन सा गाना गाने वाली हो आप?
2: बस जो भी गाऊंगी दिल से गाऊंगी। पहली बार आए हो क्या?
0: हाँ,

0: राहुल की लड़ाई हो गई वान्या और रोहन की मम्मी से। जल्दी चलिए।
1: लड़ाई हो गई?
2: राहुल तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मेरे मासूम बच्चों को रुलाया।
1: अरे ये क्या हो रहा है यहाँ?
2: मैं बताती हूँ आपको अंकल जी, राहुल बिना वजह मेरे बच्चों पर गुस्सा कर रहा है, जबकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने राहुल की बाइक से हवा नहीं निकाली है।
1: क्या, बाइक से हवा? अरे राहुल, तुम्हारी बाइक के टायर में हवा काफी दिनों से कम थी और मैंने बताया भी तो था तुम्हें।
3: आपने कब
1: अरे राहुल, राहुल क्या हो गया तुम्हें? राहुल तुम ठीक तो हो ना?
2: मैं पानी लेकर आती हूँ, घबराइए नहीं।
1: राहुल बेटा तुम ठीक तो हो ना बेटा?
3: हाँ पापा, मैं ठीक हूँ।
1: अच्छा चलो घर चलो, घर चलो
3: जी।
1: चलो शालू बेटा, राहुल की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ।
2: अरे नहीं अंकल, आप राहुल का ख्याल कीजिए, आप माफी मत मांगिए, जाने दीजिए।
4: अरे क्या हुआ राहुल, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? और आप इतनी जल्दी में कहाँ चले गए थे?
1: कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, बस राहुल काफी थक गया है।
4: थका तो होगा ही, सुबह भी तो जल्दी से ऐसे ही बिना खाए निकल गया था।
1: शायद इसीलिए चक्कर आ गया।
4: क्या चक्कर? मैं अभी खाना लेकर आ रही हूँ, चुपचाप पहले खाना खाओगे तुम।
1: राहुल तुम इतना क्यों परेशान हो? और तुम कह रहे थे कि आज तुम्हारा कोई जरूरी काम था, क्या हुआ उसका?
3: क्या हुआ, क्या जानना है आप लोगों को कि आज कहां से रिजेक्ट होकर आया हूं मैं? पर आज ना उससे भी बड़ी चीज हुई है, मुझे ऑडिशन ही नहीं देने दिया गया। इतने दिनों से मैं रात दिन रियाज कर रहा था, कल भी पूरी रात में प्रैक्टिस करता रहा, जिस वजह से सुबह उठने में देर हो गई और वहां उस मैनेजर ने सबके सामने मेरे साथ बदतमीजी की, जिसके जवाब में मेरी कही छोटी सी बात को उसने अपने ईगो पर ले लिया और मेरा ऑडिशन ही कैंसिल कर दिया। और बताइए क्या जानना है आप लोगों को?
1: अरे बेटा इतना क्यों परेशान हो, थोड़ा शांत हो जाओ।
3: शांत हो जाओ, यही कहना चाहते हैं ना कि हमने तो कहा था कि तुम इस गाने बजाने के चक्कर में ना पड़ो, अगर इसकी जगह पढ़ाई में मन लगाया होता तो आज बाकी सब की तरह अच्छा पैकेज उठा रहे होते।
1: अरे बेटा हम समझ सकते हैं कि तुम पर क्या बीत रही है।
3: और तो मेरे पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए, पर मेरी वजह से जो आप लोगों को सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है ना, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से।
4: हमारा राहुल इतना परेशान और दुखी है और मुझे इसका अंदाजा भी नहीं है, कितनी बुरी माँ हूँ मैं।
1: नहीं सुनीता नहीं, इसमें अकेले तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी भी है। मैंने उससे ये तो बेहिचक कह दिया कि गाने बजाने के चक्कर में ना पड़े, लेकिन उसे ये नहीं बताया कि उस दिन कॉलेज में उसका गाना सुनकर मुझे कितना गर्व महसूस हुआ था। आज भी मुझे याद है, राहुल के लिए बजती तालियों को सुनकर मेरी छाती चौड़ी हो गई थी और मैंने ये तय कर लिया था कि राहुल को गाना गाने से अब कभी नहीं रोकूंगा। बस यही गलती हो गई कि मैंने उससे ये बात कभी बताई नहीं, जिस वजह से आज ये नौबत आ गई है ना कि हमारा बेटा हमें भी अपना नहीं समझ पा रहा है।
4: सही कह रहे हैं आप, अगर माता पिता बच्चों को उनकी गलती बताते हैं तो उन्हें उनकी कामयाबियों पर शाबाशी भी देनी चाहिए, रिश्तों का मौन बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा कर देता है।
1: सही कहा तुमने सुनीता, पर हम अपनी गलती अब सुधारेंगे, राहुल को हम ऐसे सबसे दूर नहीं होने देंगे।
3: अगर मैं खुद को खत्म कर लूं तो सारी परेशानी अपने आप ही खत्म हो जाएगी, ये इन नींद की गोलियों को खाकर मैं हमेशा के लिए चैन की नींद सोना चाहता हूं। मम्मी पापा आप लोग यहाँ?
1: अरे बेटा हम दोनों यहाँ तुमसे माफी मांगने आए हैं, हमें माफ कर दो।
3: माफी? पर किस लिए?
4: हर उस पल के लिए जब तुम्हें हमारे साथ की जरूरत थी और हम तुम्हारे साथ नहीं थे, हर उस बात के लिए जो हमारे मन में थी पर हमने तुमसे कहने की जरूरत नहीं समझी, जिस वजह से तुम्हें हमारे साथ की कमी महसूस हुई, तुम्हें ऐसा लगा कि हमें तुम्हारी नाकामयाबियों पर शर्मिंदगी है।
1: आज हम यहाँ तुम्हें ये बताने आए हैं बेटा कि हमें तुम पर गर्व है,

0: जिस दिन कॉलेज में मैंने तुम्हारा गाना सुना था ना, उसी दिन ये फैसला कर लिया था कि तुम्हें गाने से अब कभी नहीं रोकूंगा। पर ये बात मैं तुमसे कह नहीं पाया। अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हारे अंदर जो जुनून है, वही तुम्हें एक दिन जरूर कामयाब बनाएगा। बस कभी भी खुद को अकेला मत समझना राहुल, हम दोनों हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। वैसे तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, खासकर वो जो तुमने 1.5 साल पहले इंटरनेट पर डाला था ना।
1: आपने सुना है?
0: अरे हाँ बेटा, मेरी प्लेलिस्ट में है, रोज सुनता हूं।
1: अभी नींद की गोलियों को डालो डस्टबिन में। थैंक यू मम्मी पापा, आज मैं चैन की नींद सोऊंगा।

0: अरे सुनती हो सुनीता?
1: हाँ जी।
0: मैं जरा वॉक पर जा रहा हूँ, वॉक पर।
1: अच्छा अच्छा। अरे अरे राहुल, आज तुम इतनी जल्दी उठ गए?
2: हाँ माँ। अरे पापा रुकिए ना।
0: हाँ।
2: मैं भी चलता हूँ। वो ऐसा है ना माँ, मैंने सोचा कि आज मैं भी पापा के साथ मॉर्निंग वॉक पर चला ही जाता हूँ।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: आओ फिर चलते हैं।
2: चलते हैं। चलिए पापा, आते हैं माँ।
1: ठीक है।
3: एक सवाल, तुम ठीक हो? अभी आप सुन रहे थे साक्षमा पांडे की लिखी ये लघु नाटिका। कलाकार थे प्रेम कांत तिवारी, वरुण टमटा, सुनील शुक्ला, स्नेहिल श्रीवास्तव, राधा कुमारी, वाहिबा और अब्दुल्ला। संपादन और प्रस्तुति सहयोग रवि तिवारी, निर्देशक थे अतिश कुमार श्रीवास्तव। इसके साथ ही आज इतवार है कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय वट।
4: अक्षय वट परंपराओं, संस्कृति, यादों, अनुभवों और संवेदनाओं का संगम।
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। राम राम, प्रणाम हमारे सभी आदरणीय बुजुर्गों को और स्नेह भरा स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम अक्षयवट में। श्रोताओं, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरा देश वन महोत्सव सप्ताह मना रहा है। जब हम बड़े जंगलों की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि पेड़ लगाना शायद हमारे हाथ में ही नहीं है, इतने बड़े जंगल हम कैसे खड़े करेंगे। लेकिन हमारे कबीर दास जी कह गए हैं, वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारत के कार ने साधुन धरा शरीर। यानी प्रकृति हमेशा दूसरों को जीवन देती है और इसी परमार्थ की शुरुआत हम अपने घर से, अपनी बालकनी या अपनी छत से कर सकते हैं। इसीलिए आज वन महोत्सव के इस पावन अवसर पर हमारे कार्यक्रम का विषय है घर की हरियाली, जीवन की खुशहाली। इस विषय पर मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं जाने माने विशेषज्ञ श्री अतुल दुबे जी। अतुल दुबे जी का शौक है बागवानी और ये बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अतुल जी, अक्षयवट कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
5: अतुल जी, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बढ़ते उम्र में अकेलेपन या स्वास्थ्य की वजह से वे कभी कभी काफी उदास हो जाते हैं, ऐसे में घर की हरियाली यानी गार्डनिंग उनके जीवन में खुशहाली कैसे ला सकती है?
6: हरियाली जीवन का एक पार्ट है
5: जी,
6: उससे ही आदमी का जीवन में ऊर्जा आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। खासतौर से सीनियर सिटीजन जब आइसोलेशन में आता, अकेला पड़ जाता है, बच्चे बाहर चले जाते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं इंगेजमेंट चाहिए।
5: बिल्कुल।
6: उसके लिए हरियाली ही एक माध्यम है जिससे वो सुबह अपना उठें, चाय पिएं, हरियाली में लग जाएं, पौधे लगाएं, पौधों को देखें, निराई गुड़ाई करें, छोटे छोटे ही काम करें, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करने का उसमें
5: जी।
6: लेकिन हाँ, जब अपने हाथ से कोई चीज क्रिएट होती है ना
5: जी, जी
6: जिसकी संरचना होती है, तो जो संतुष्टि उसमें मिलती है वो किसी और काम में उनको नहीं मिल सकती। इस बहाने कम से कम लगता है कि सुबह हम उठ रहे हैं, पानी डालने का काम हमको करना है, पानी डालते हैं, एक लाइफ पैटर्न उनका बन जाता है
5: जी।
6: और हमको लगता है उस समय भी उनका व्यतीत हो,

0: और उनको खुशहाली तो मिलनी ही चाहिए, मिलता ही है उस चीज के लिए।
1: क्या बात है, यानी सेहत भी और सुकून भी। अतुल जी, कई बार बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि उन्हें शौक तो बहुत है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर कभी घुटनों का दर्द तो कभी कमर दर्द, तो इस वजह से वो कभी भारी गमले नहीं उठा सकते और कहते हैं कि अब हम क्या इस उम्र में बागवानी शुरू करें। तो उनके लिए आप क्या आसान तरीके या टिप्स सुझाएंगे कि वो सेकेंड इनिंग्स में आके कुछ इस तरीके का शौक कल्चर करें और हरियाली को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं?
0: हरियाली पैदा करने के लिए बहुत बड़ा मेहनत वाला काम नहीं है। इस
1: जी
0: उम्र में आपको इतना हैवी वर्क ही नहीं करना है कि आप बड़े बड़े प्लांट लगा रहे हैं घर में हैं, आप छोटे छोटे प्लांट लगाइए, प्लास्टिक में प्लांटेशन कीजिए, वेजिटेबल्स बैग्स आते हैं उसमें सब्जी लगाइए। आप ऊंचाई पे एक टेबल्स आती है, इसके आज के स्टैंड्स आते हैं, उस पर ऊपर ला के अपना उसमें लगाए पौधे, तो आप सब्जियां ही पैदा कर सकते हैं, प्लांट भी लगा सकते हैं। वर्टिकल गार्डन्स आता है कि आप फ्रेम में जाली लगा दीजिए, उसमें 100-200 छोटे छोटे गमले लगा दिए, उसमें छोटे छोटे प्लांट लगा दिए, तो उसमें आप पाइप से पानी डालना है या ऑटोमेटिक आप पानी का सिस्टम कर दें, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको ऑन करना है, पानी अपने लेवल पर ले लेगा, उसके बाद बंद कर दें। ऐसा नहीं है कि आप सीनियर हैं और सीनियर सिटीजन की एज में आ गए हैं और आप बागवानी आपके लिए टफ है, टफ नहीं है, इंटरेस्ट क्रिएट करने की बात है कि आप कैसे उसका अपने मन में इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। ये एक नशा है, एक बार अगर किसी के दिल में छा गया, मेरे को नहीं लगता है कि वो फिर कहीं हट सकता है। जब मैंने स्टार्ट किया था 8 से 10-12 साल पहले,
1: जी
0: तब मैं भी बड़ा बिजी रहता था, फिर एकदम से जब मैं खाली हुआ तो मैंने कैसे करें, तो हम लोगों ने स्पेशली एक प्लॉट लिया इसको बनाने के लिए
1: अच्छा
0: और उसमें बहुत सारे प्लांट लगाना शुरू किया। पहले तो माली भी नहीं था, हम लोग शुरुआत में खुद ही काम करते थे, 4 गमले से 40, 40 से 400, 400 से अब कम से 1,000-1,500 गमले हो गए होंगे, इससे कम नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, शौक है सब कर सकते हैं। आपको गमला उठाना है तो आप एकदम झुके ना, धीरे धीरे करके उठें, कुर्सी बैठ जाएं, कुर्सी बैठ कर फिर गमले उठा के कहीं रख दें, वो एक
1: जी
0: तरीका है। हाँ, एकदम से वो करेंगे तो दिक्कत आ सकती है, तो
1: जी
0: थोड़ा सा सावधानी बरतना है। लेकिन प्लांटेशन करना है आपको, ये कोई बहुत बड़े बड़े पौधे नहीं लगाने हैं,
1: जी
0: आप
1: जी
0: बोनसाई प्लांट्स में काम करना शुरू कर दिए। एक जेट प्लांट आते हैं, उसमें आप आकृतियां बना सकते हैं, बहुत सारी आकृतियां बना सकते हैं, कहीं सतिया बना रहे हैं, कहीं ओम बना रहे हैं, कहीं चिड़िया बना रहे हैं, वो आप खुद कर सकते हैं। वो बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी आदमी कर सकता है,
1: अच्छा
0: बस केवल देखने का है कि आप देख लें एक बार तो हमको लगता है 2 दिन में सीख जाएगा, 2 दिन में वो कर सकता है।
1: अच्छा
0: हाँ, वो सीनियर सिटीजन के लिए है वो सब चीजें,
1: जेड
0: आप
1: प्लांट की ट्रिमिंग करके
0: हाँ
1: डिफरेंट
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: आकृतियां।
0: कर सकते हैं। छोटा जो सीजर होता है अपने घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं,
1: जी जी
0: उसी से आप छोटी छोटी कटिंग कीजिए, सेप दीजिए, बांधते रहिए उसे, धीरे धीरे करके वो 1-6 महीने में वो एक आकृति ले लेगा। जब ले लेगा तब आपको लगेगा कि मैंने कुछ करके दिखाया, तो ये करना आवश्यक है, करना चाहिए उन लोगों को,
1: जी
0: मेरे को
1: जी और
0: लगता
1: ये
0: है
1: जो क्रिएशन की खुशी होगी ये
0: बहुत
1: अलग
0: बड़ी
1: ही
0: बड़े
1: होगी कि हमने
0: बिल्कुल
1: कुछ डिफरेंट
0: वो जो
1: क्रिएट
0: सुकून
1: किया।
0: मिलता है ना
1: जी
0: देख करके कि मैंने कुछ बनाया, मैंने कुछ किया,
1: जी जी
0: तो क्रिएशन की बात ही अलग होती है। लोग कहते हैं कि उससे लाइफ बढ़ती है देख करके, कोई चीज क्रिएट हो रहा है। हमारे
1: जी
0: फादर
1: जी
0: थे, कोई मकान बनता था तो कहते हैं रोज देखते थे कि आज इतना हो गया, इतना हो गया, तो मैं कहता था क्या जाते हो, क्या देखते हो दूसरे के मकान, बोले देखते नहीं, उससे जिंदगी हमारी बढ़ती है। तो इन फैक्ट है, कोई भी चीज क्रिएट करेंगे तो आपकी लाइफ उससे बढ़नी ही है, कम होने का सवाल ही नहीं उठता है।
1: बहुत बढ़िया बात बताई अतुल जी आपने। अतुल जी, एक समस्या ये भी आती है कि बुजुर्ग कई बार पौधों में खाद डालने या कीटनाशकों के लिए बाजार नहीं जा पाते। ऐसे में क्या घर पर रसोई के कचरे से कोई आसान तरीके से हम खाद बना सकते हैं?
0: जो घर के वेस्ट प्रोडक्ट हुए उसको अगर आप गड्ढे में डालते रहें और 15 दिन बाद उसी गड्ढे से निकाल के फिर दूसरे गड्ढे में डाल दें, फिर उसको यूज करने लगे धीरे धीरे करके, एक
1: जी
0: साइकिल बना ले, उससे भी कीटनाशक होता है। दूसरा चीज, कुछ नहीं करना आपको, अगर नीम का पेड़ कहीं आसपास लगा, नीम के पेड़ ही ले आइए, उसकी पत्तियां सुखा लीजिए, उसका छिड़काव कर दीजिए पानी मिला के, तो आप उससे ही बच सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है। और अदरवाइज कुछ स्टैंडर्ड दवाएं हैं वो इजिली मिल जाती हैं, उसको आपको पूछना ही नहीं है कि कौन सा डालना है, कौन सा, किसी डॉक्टर की जरूरत है नहीं, आप वो एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि इतना बड़ा काम होता नहीं, आप उसमें स्प्रे ले लीजिए, उसमें 2 बूंद डालिए दवाओं को, स्प्रे कर दिए, तो उसके लिए समस्या नहीं है, इस चीज के लिए वो
1: अच्छा, अब
0: इजिली
1: तो
0: हो
1: ये
0: सकता
1: सब
0: है,
1: चीजें ऑनलाइन भी अवेलेबल
0: ऑनलाइन मिल
1: होती
0: जाती है,
1: होंगी
0: कोई
1: मुझे।
0: दिक्कत नहीं, कहीं जाना ही नहीं किस चीज के लिए। और प्लांट्स तक ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो ये दवाओं का तो कुछ स्टैंडर्ड है ही नहीं कि हमको वहीं से लेने का है, बस सोच बनानी है कि हमें करना है, क्योंकि वो एक भी पौधा अगर आपने लगाया और पौधा अगर मरने लगता है तो बड़ा कष्ट होता है।
1: जी
0: तो ये तो आपको लेके चलना पड़ेगा, पौधे लगा रहे हैं उनको जीवन देना है, जीवन रखना है उनका, उनका अंत नहीं होने देने का, उसके लिए प्रत करते रहना पड़ेगा, क्योंकि पौधे और बच्चे
1: जी
0: दोनों एक ही समान होते हैं। जितनी केयर आपको बच्चों की करनी होती है उतनी ही पौधों की करनी आवश्यकता होगी आपको, क्योंकि बच्चों से प्यार है तो आप करते हो, आपको
1: जी
0: लगता नहीं कि कुछ कर रहे हैं, ऐसे जब पौधों से प्यार हो जाएगा तो आपको लगेगा नहीं आप कुछ कर रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया बात बताई आपने और बहुत ही उपयोगी नुस्खा भी बताया। अतुल जी, लखनऊ और आसपास के इलाकों में जुलाई के मौसम में अब जब मॉनसून आ रहा है

0: हमारे बुजुर्गों को अपने पौधों को खराब होने से बचाने के लिए किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत पानी चाहिए होता है
0: जी,
1: कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पानी की बहुत कमी चाहिए होती है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पानी रिटेन होना ही नहीं चाहिए।
0: अच्छा,
1: डाले और निकल जाए।
0: अच्छा,
1: अब इस चीज का ध्यान देना है कि कौन से पौधे आप किस साइड में रखने हैं, कौन से पौधे आप सेमी साइड में रखने हैं, कौन से ओपन में रखने हैं। कुछ एडेनियम ऐसे पौधे हैं आप उनको इधर अंदर रखना हो, क्योंकि धूप लगनी हो, पानी डालना ही नहीं, महीने भर में दो दिन भी डाल दिया तब भी आपका काम हो जाता है।
0: अच्छा,
1: लेकिन आप उसमें रोड डालेंगे तो खत्म हो जाएंगे वो। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, ऐसे जेट प्लांट है, उसमें कुछ नहीं करना होता, इतना केयरिंग ही नहीं है, आप उसको केवल रख दीजिए, उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए।
0: अच्छा,
1: रुकेगा तो खराब हो जाएगा। तो इस तरीके के कुछ है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें पानी रेगुलर पड़ते रहना चाहिए, भरा रहना चाहिए पानी। तो ये ध्यान देने का कौन से पौधे किस कैटेगरी के हैं, अकॉर्डिंगली उनको उसी हिसाब से अगर प्लांट को रखवा दें बारिश के मौसम में, तो आपके कोई पौधे सड़ेंगे गलेंगे नहीं।
0: अतुल जी, वन महोत्सव का मौका है तो हम चाहेंगे कि हमारी रसोई और स्वास्थ्य का भी नाता प्रकृति से जुड़े, तो घर में कौन कौन से औषधीय पौधे आसानी से लगाए जा सकते हैं?
1: हम लोगों ने भी जैसे अपने लगाए हुए हैं तुलसी
0: जी,
1: तुलसी 6-7 वैरायटी का आता है, सबको लगा के रखना चाहिए, उससे रहता है बीमारियां नहीं आती है, शाम को सुगंध भी फैलती है उससे। एलोवेरा हो गया।
0: अच्छा,
1: उसके अलावा आपका नीम, जो खाने वाला नीम होता है जिसको सब्जियों में डालते हैं,
0: जी, जी,
1: वो
0: जी।
1: लेके चलना चाहिए।
0: करी पत्ता,
1: करी पत्ता इसको आप बोलते हैं
0: जी।
1: पान के पौधे हैं
0: जी,
1: वो आप लगाइए। इस तरीके और भी वैरायटी है, कुछ चीजें तो जैसे अजवाइन का पेड़ है,
0: जी,
1: पौधे हैं छोटे, अजवाइन लगा लीजिए, पुदीना लगा लीजिए,
0: धनिया,
1: धनिया लगा लीजिए,
0: जी जी
1: बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं अगर हम लोग लगाएं तो, मेथी के पौधे हैं
0: जी,
1: वो लगाइए, वो सारे हो जाते हैं। कुछ चीजें तो ऐसी हैं, ब्रो बैग में लगाइए तो सीजन भी नहीं होगा तब भी वो निकल के आ जाते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, जो धनिया कितना भी गर्मी हो अभी भी डालेंगे तब भी शुरू हो जाएगा, थोड़ा निकलेगा आपके मतलब भर कर निकल आएगा, इससे काम।
0: अतुल जी, अक्षयवट के इस मंच से हमारे बुजुर्गों को आप चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे अपनी इस हरियाली की विरासत को अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे सौंपें?
1: देखिए, बच्चे देख करके ही सीखते हैं हम लोगों से, जैसा हम करते हैं वैसे ही बच्चे करते हैं
0: जी।
1: तो हमको भी कुछ ऐसा करके दिखा देना है उनको कि वो उसको कंटिन्यू रखें। तो हमारे में शौक आएगा तो बच्चों में शौक आता है, हमारे में शौक नहीं आएगा बच्चों में शौक नहीं आएगा। तो नंबर एक तो ये कि स्पेस देखना है कि आपके कैसे है, अगर बड़ी जगह है तो बड़े प्लांट लगाएं, अगर छोटी जगह है तो छोटे प्लांट लगाएं। फ्लैट में रहते हैं तो आप वर्टिकल गार्डन लगा लें
0: जी,
1: प्लास्टिक के लगा लें। अगर आपका बड़ा प्लॉट है, ठीक ठाक है, जैसे कॉलोनी के अंदर रहते हैं, एक अपना मकान ही है
0: जी,
1: तो आप उसमें मिट्टी के गमले लगाएं तो वो बेटर है, क्योंकि उसमें पोरसपन होता है, उसमें पौधे ठीक चलते हैं। ये तो मैसेज समाज को उनको देना ही है कि हरियाली के बिना जीवन नहीं है
0: जी,
1: हरियाली को तो आसपास मेंटेन करना है, वेस्टेज जो पानी का वेस्टेज रुकना है उसी से। इंटरलॉकिंग लोग नॉर्मली बाहर लगा लेते हैं, पत्थर लगा लेते हैं फुटपाथ पे, उसके बाद पानी धोते रहते हैं, पानी वेस्ट जाता है। तो मैं उनको यही राय देता हूँ कि वो वहाँ पत्थर ना लगाएं, वो इंटरलॉकिंग ईंटें ऐसे आते हैं उसमें होल्स होते हैं, उसमें ग्रास लगा लें तो उसमें पानी पड़ेगा तो जमीन में ही जाएगा, और बारिश का पानी भी वो अब्जॉर्व कर लेता है, हार्वेस्टिंग का काम करता है एक तरीके से।
0: अच्छा,
1: वाटर हार्वेस्टिंग काम करता है वो, तो उससे आपका वाटर लेवल भी मेंटेन रहता है और ये वेस्टेज वाटर भी बचता है इससे। वो करें और प्लांट लगाएं, दूसरों को प्लांट बांटें। तुलसी उसी के पौधे बांटने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, घर से निकालिए, 4 पौधे लिए अपने घरों में, दूसरे घरों में बांटना शुरू कर दिया।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: इस बार ने कम से अवेयरनेस आती लोगों में।
0: हाँ, मतलब खुशियां भी बढ़ती हैं और लोगों को भी एक प्रेरणा मिलती है कि भाई ये हमारे लिए पौधे लाए हैं, लगा सकते हैं तो हम भी लगाएं।
1: देखिए, दो चीज होती है, एक तो बारिश के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हमें जंगल लगाने चाहिए
0: जी,
1: प्लांट लगाने से कुछ नहीं होता है, प्लांट तो आंखों को सुख देने के लिए है। अगर बारिश के हिसाब से देखना है तो बड़े बड़े जंगल लगाइए आप, चीड़ के पौधे, टीक के लगा रहे हैं, नीम के लगा रहे हैं आप, पीपल के पौधे लगा रहे हैं, ताड़ के लगा रहे हैं, इस टाइप के पौधे लगा, उनसे जंगल क्रिएट होता है
0: जी।
1: तो हम लोग जंगल तो क्रिएट नहीं कर सकते, सरकार का काम है
0: जी।
1: लेकिन ये पौधे आसपास लगा सकते हैं, हरियाली भी आंखों को सुख देती है, वो लगाने के लिए
0: जी। और एक ये है कि आसपास की आपकी हवा शुद्ध होगी, ऑक्सीजन तो मिलेगा ही मिलेगा।
1: बिल्कुल नहीं, उस पर एक और, जैसे आपकी बाउंड्री है, बाउंड्री पे आप कोई बेल डाल दें
0: जी,
1: पर्दा बेल होती है, कोई एक्सपायरी डेट डालते हैं तो उसमें चिड़िया के घोंसले ऑटोमेटिकली आने लगते हैं
0: जी, जी।
1: तितलियां आने लगती हैं, वो माहौल आपके एटमॉस्फेयर के हिसाब से अच्छा है, क्योंकि बाहर कोई पोल्यूशन है और अंदर में 5-7 डिग्री का फर्क पड़ जाता है। इस चीज के लिए हर घर के बाहर एक पौधा लगा होना चाहिए, नहीं आप बांटी जा करके कम से कम वो चीज दिखाई देगी, 40 साल बाद देखिए इतना पौधा लगा हुआ है। मैं एक पॉइंट इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, लोग जैसे किसी को स्वागत करते हैं तो बुके देते हैं
0: जी,
1: तो अब लोगों के दिमाग में अपने भर लेना चाहिए कि बुके नहीं देना है, क्योंकि बुके की मेमोरी 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन की रहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आप प्लांट ही दीजिए लोगों को, आप महंगा सस्ता कुछ भी दें, प्लांट दीजिए, कम से कम वो एक सजीव चीज कोई दे रहे हैं, उससे जो लगाव मिलेगा वो बुके से नहीं मिलता है। तो किसी भी कार्यक्रम हो, किसी का

0: स्वागत करना हो, ना माला दें, ना बुके दें, प्लांट दें, विद प्लांटर दें।
1: बहुत बढ़िया अतुल जी, कितनी गहरी और मर्मस्पर्शी बात कही आपने। सचमुच रिश्तों की हरियाली ही जीवन की असली खुशहाली है। आज आप हमारे स्टूडियो में आए और वन महोत्सव सप्ताह पर हमारे सीनियर सिटीजन्स को इतनी सरल और उपयोगी जानकारियां दी, इसके लिए आकाशवाणी परिवार और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे प्यारे श्रोताओं, देर किस बात की, आज 5 जुलाई है, वन महोत्सव सप्ताह की उमंग चारों तरफ है। आज अतुल जी की बातों से प्रेरित होकर आप अपने घर में कौन सा नया पौधा लगाने जा रहे हैं, या आपकी बगिया में कौन सा पुराना पेड़ आपकी यादों का गवाह है। हमें आपकी चिट्ठियों का बेसब्री से इंतजार रहता है। उठाइए कलम और अपने दिल की बात, अपनी बगिया की कहानी और इस कार्यक्रम पर अपनी राय एक खत में लिखकर हमें भेज दीजिए। हमारा पता तो आपको याद ही है, कार्यक्रम अक्षयवट, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी लखनऊ, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ 226001। आप चाहें तो अपनी सुंदर बगिया की तस्वीरें भी हमें भेज सकते हैं। अगर आप ईमेल के द्वारा हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा मेल का पता नोट कर लीजिए, pkldlko@gmail.com, pkldlko@gmail.com। अगले हफ्ते अक्षयवट के एक और नए अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी इस दोस्त को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, अपनी हरियाली को सहेजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ। नमस्कार। अक्षयवट, परंपराओं, संस्कृति, यादों, अनुभवों और संवेदनाओं का संगम।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय वट। इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया डॉक्टर अलका चौधरी ने। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशगान। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम जवानों के लिए।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को डॉक्टर विकास चंद्र शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म प्रेम पुजारी के इस गीत के साथ, जिसे आवाज़ दिया है मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे ने। गीत नीरज के और संगीत SD बर्मन का है। सुनने का अनुरोध करते हैं आप सब। हेड कांस्टेबल CRPF जम्मू कश्मीर से धर्मेंद्र यादव, देवेंद्र सिंह यादव, दंगल यादव, अभिनव यादव, दीपेश, अनामिका, अनुराग और सुनीता यादव। हेड कांस्टेबल संजय सिंह, आशा राम सिंह, कशिश देवी, आयुष कुमार, विश्वास कुमार, जिला शाहजहांपुर से। तो लीजिए, आप सबके अनुरोध पर सुनिए फिल्म प्रेम पुजारी का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म पूरब और पश्चिम से स्वर महेंद्र कपूर के गीत के बोल इंदिवर के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। इसे सुनना चाहते हैं सुरक्षा जवान आवास विकास लखनऊ से सब इंस्पेक्टर जेपी यादव, सब इंस्पेक्टर डीके तिवारी, सब इंस्पेक्टर डीएस यादव, एके यादव, डीएन यादव, प्रमोद मिश्रा, दरोगा सिंह, एके सिंह, एसपी सिंह, रितेश मिश्रा, बीरेंद्र यादव और राजेंद्र सोनी, भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लखनऊ से। तो लीजिए सुनिए आपके अनुरोध पर फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म तिरंगा से, स्वर मोहम्मद अजीज के, गीत के बोल संतोष आनंद के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। सुनने का अनुरोध करते हैं आप सब। कुरौली बाराबंकी से पीयूष वर्मा, जीआरपी थाना प्रभारी बाराबंकी से चंद्रमणि पांडे, एसआई वीरेंद्र कुमार, एसआई पवन कुमार गुप्ता, हेड मुहर्रिर अरुण कुमार यादव, महिला हेड आरक्षी ममता यादव, पूनम सिंह और समस्त राजकीय रेलवे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी बाराबंकी, यातायात प्रभारी बाराबंकी रामेतन यादव, आशीष सिंह, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन प्रभारी मुन्नी सिंह, साइबर थाना बाराबंकी से राजन यादव, थाना जहांगीराबाद प्रभारी राम प्रकाश मिश्रा, एसआई अमरेश सिंह, पुलिस लाइन बाराबंकी से काजल शर्मा, कमलेश राम और विमलेश शर्मा। आप सबने सुना चाहा है तिरंगा फिल्म का ये गीत।

अमरजीत श्रीनिवास, आदर्श अनमोल, फिरोज खान, राकेश कुमार वाराणसी रिजर्व पुलिस लाइन से, मुरादाबाद से आबकारी निरीक्षक अक्षय चौधरी, अलीगढ़ से डॉक्टर सुरेंद्र मोहन सिंह, अभिषेक योग्यता कन्हैयालाल, प्रिया वीर सिंह, बबलू प्रमोद राज और योगेश और मीनू, पैंतेपुर सीतापुर से बसंत कुमार, कुसुमलता, योगेंद्र वर्मा, नेहा वर्मा, अनुराग वर्मा, नरेंद्र सिंह, रामबदन सिंह, पुष्पा, सुशील चंद्र यादव और सब इंस्पेक्टर लखनऊ से। आप सुनना चाहते हैं फिल्म गोलमाल का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है किशोर कुमार ने। गीत के बोल गुलजार के और संगीत आरडी बर्मन का है।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह का गाया फिल्म बॉबी का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और सुनने का अनुरोध किया है उपनिरीक्षक जयंत कुमार दुबे, चौकी प्रभारी जीआरपी अयोध्याधाम, कांस्टेबल करुणेश पांडे, हेड कांस्टेबल श्याम सुंदर शुक्ला और कांस्टेबल विपिन यादव। तो लीजिए सुनिए आपके अनुरोध पर फिल्म बॉबी का ये गीत।

इस गीत के साथ ही आज का जवानों के लिए कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त डॉक्टर विकास चंद्र शर्मा को। फौजी भाइयों, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 2:15 हुआ चाहते हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाईं।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 2:15 हुआ चाहते हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
2: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित।
1: प्रतिशत की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत के अध्यक्ष

0: कोलकाता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानंद मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
2: The significance is immense.
1: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
2: Greater economic engagement between these two large countries.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली।

0: डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
1: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
2: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
3: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
1: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20

0: क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर ललन सिंह यादव से भेंट वार्ता। विषय है खरीफ में समन्वित नाशी जीव प्रबंधन। आपसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ फसलों की बुआई और रुपाई में लगे हैं। खरीफ में IPM यानी समन्वित नाशी जीव प्रबंधन कैसे करें ताकि खरपतवार, हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन हो सके, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर ललन सिंह यादव साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां खरीफ अभियान में लगे हैं किसान भाई बहन, तो IPM यानी समन्वित नाशी जीव प्रबंधन कैसे अपनाएं ताकि प्रबंधन हो सके।
3: किसान भाइयों बहनों नमस्कार। देखिए, चूँकि खरीफ की फसल इस समय आप रोपाई कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, तो उसमें जो कीट रोग नियंत्रण की बात है या चाहे खरपतवार नियंत्रण की बात है, आजकल जो प्रायः नियंत्रण किसान भाई कर रहे हैं उसमें रसायनों का प्रयोग प्रायः करते हैं। अब चूँकि रसायनों के प्रयोग से इसके अवशेष जो है फलों, सब्जियों, अनाजों में रह जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त रसायनों के अवशेष जो है पर्यावरण प्रदूषण भी फैलाते हैं, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण फैलता है, और रसायनों के अधिक प्रयोग से जो मिट्टी में हमारे मित्र कीट होते हैं उनकी संख्या भी कम हो रही है, और इस तरह अगर देखा जाए तो मृदा स्वास्थ्य जो है पूरी तरह प्रभावित हो रहा है
2: और लागत भी बढ़ रही है,
3: और इसके साथ साथ जो है उत्पादन लागत भी बढ़ रही है। तो अब कीटों और रोगों के प्रभावी नियंत्रण के लिए अब जिस विधा पर जोर दिया जा रहा है उसे एकीकृत या समन्वित नाशी जीव प्रबंधन या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM कहा जाता है। और किसान भाइयों, इस विधि में किसी एक तरीके को अपनाने के बजाय कई विधियों का जो है समन्वित करके इसका प्रयोग,
2: यानी मिला जुला
3: का प्रयोग किया जाता है कीट रोग नियंत्रण के लिए, और इसमें रसायनों का प्रयोग जो है अंतिम विकल्प के रूप में लिया जाता है। IPM जो हम अपनाएंगे तो उत्पादन हमारा जो है कम खर्चीला होगा, जो हम पैदा करेंगे वो कम जहरीला होगा, और जो है इको फ्रेंडली कृषि जो होगी हमारी,
2: यानी पर्यावरण हितैषी खेती,
3: पर्यावरण हितैषी खेती होगी,
2: और मित्र कीट भी बढ़ेंगे,
3: मित्र कीट भी साथ साथ बढ़ेंगे,
2: और जब मित्र कीट बढ़ेंगे तो जो भी दुश्मन कीट हैं, बीमारियां, उनका प्राकृतिक रूप से
3: नियंत्रण होता है, प्रबंधन होता रहता है जी।
2: तो IPM के कितने घटक हैं डॉक्टर साहब?
3: इसमें एक चीज और किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, इस पद्धति जो IPM की है इसमें जो हमारे कीड़े या बीमारियां हैं उनकी संख्या को या घनत्व को जो है आर्थिक क्षति स्तर सीमा के अंदर जो है रख करके प्रबंधन किया जाता है
2: जी,
3: ताकि रसायनों का प्रयोग करने की स्थिति न बने। और रसायनों का प्रयोग तभी किया जाता है जब कीट रोग का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर के ऊपर हो जाए। और अब इसमें जो मुख्य घटक है समन्वित नाशी जीव प्रबंधन की अगर बात करें तो इसमें जो किए जाने वाले कार्य हैं या विधियां हैं इसको 4 बिंदुओं में बांट सकते हैं किसान भाई।
2: जैसे
3: एक है शस्य क्रियाएं या रोकथाम से जुड़े खेती संबंधी कार्य जो हम कर रहे हैं,
2: यानी कर्षण क्रियाओं के माँ
3: है। दूसरा आता है यांत्रिक विधि द्वारा कीट रोग नियंत्रण, जैविक विधि द्वारा कीट रोग नियंत्रण, और लास्ट में रासायनिक विधि से
2: अंतिम विकल्प
3: के रूप में लिया जाता है, जब इन तीनों विधियों से जो है नियंत्रण ना हो और कीटों और रोगों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर के ऊपर पहुंच जाए तब रसायनों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
2: तो शुरुआत करें डॉक्टर साहब की खरीफ में कौन कौन सी कर्षण क्रियाएं किसान भाई बहन करें ताकि हानिकारक कीट, बीमारियों और खरपतवारों का प्रबंधन हो जाए।
3: ये किसान भाइयों, शस्य क्रियाओं द्वारा जो अगर हम कीट रोग नियंत्रण की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है गर्मी की जुताई, जो किसान भाई किए होंगे उनको लाभ जरूर मिलेगा क्योंकि इसमें अंडे बच्चे जो है सुड़ियाँ जो होती हैं कीड़ों को नष्ट हो जाते हैं, खरपतवारों के बीज जो हैं वो जमीन में दब जाते हैं जिसका उनका जमाव काफ़ी कम हो जाता है, तो हमारी फसल अच्छी होती है। इसके अलावा अगर कोई बीज जनित बीमारी है या भूमि जनित बीमारी है उससे बचाव के लिए बीज शोधन

0: एवं भूमि शोधन करके ही जो बुआई करें
1: और पौध जड़ उपचार जहां रोपाई कर
0: हाँ जहां रोपाई करने की तिथि हो जाए पौध जड़ उपचार करें या कंद उपचार भी कर सकते हैं
1: जी।
0: इस तरह कर सकते हैं कि फसलों की बुआई हमेशा लाइन में करें
1: जी
0: और लाइन से लाइन की या पौध से पौध की दूरी जो है वांछित रखें ताकि उसमें प्रकाश का और हवा का आवागमन अच्छा हो तो कीट रोग का प्रकोप कम होगा।
1: डॉक्टर साहब यांत्रिक कौन कौन सी विधियां हैं जो किसान भाई बहन खरीफ में अपनाएं?
0: देखिए जो यांत्रिक विधियां हैं किसान भाई उसको कर सकते हैं। जैसे धान की अगर रोपाई करने का समय चल रहा है तो इसकी जो है उसकी चोटी जो है ऊपर से काट दें
1: अगर पुराना बेहन हाँ, हो गया है
0: या कीट रोग नियंत्रण भी मदद करता है अगर ऊपर से थोड़ा काट देंगे एक तिहाई करीब
1: जी
0: तो इससे कीड़े या बीमारियों के प्रकोप की संभावना कम हो जाती है। और दूसरा है कि कीड़े और अंडों की सुड़ियां जो एकत्र करके कहीं किसान भाई देखें किसी पौधे में किसी कोने में लगा हुआ है
1: यानी सुबह निगरानी जब करें तो पत्तियों पर अगर अंडे दिख रहे हैं तो उनको इकट्ठा करके नष्ट कर दे
0: जमीन में गाड़ करके क्योंकि IPM में जो है कीट रोग सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इसको किसान भाई जो नियमित करते रहें तो उनको पता लग जाएगा कि हमारा फसल में कहाँ कीड़े रोग लग रहे हैं। आगे है जैसे या एक बात आती है जी कोई पौधा या कोई शाखा कोई पत्ती अगर प्रभावित हो रही है तो उसको उखाड़ करके जो है
1: नष्ट कर दें
0: जमीन गाड़ कर जैसे उड़द या मूंग में कहते हैं पीला चित्रवण लगता है वायरल डिजीज है तो इसमें उखाड़ करके नष्ट कर दें ताकि आगे इसका प्रसार नहीं होगा। या धान की फसल में केशवर्म की सुड़ियां हैं उससे रस्सी सिला कर खेत में गिरा दें तो नष्ट हो जाती हैं।
1: डॉक्टर साहब जैविक विधियों में क्या करना है किसान भाइयों बहनों को खरीफ में?
0: जैविक विधियों में किसान भाइयों को ध्यान देने की बात यह है कि हमारे जो मित्र कीट हैं या परभक्षी कीट हैं जैसे मकड़ियां हैं बग हैं ड्रैगन फ्लाई है इसको जो है इनकी संख्या को संरक्षण करना चाहिए।
1: यानी जो हानिकारक कीट हैं उनका प्रबंधन ये करेंगे?
0: हाँ उनका प्रबंधन ये करेंगे
1: यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा परजीवी एक ट्राइकोग्रामा कीट होता है उसको अगर लैब में संबंधित मिलता है ट्राइको कार्ड के रूप में इसमें एक कार्ड में 20,000 अंडे होते हैं इसको जो है अगर खेतों में छोड़ा जाए तो जगह जगह बांध दिया जाता है पौधों में तो हमारे कीट जो है इससे नियंत्रण होते हैं क्योंकि इसके कीट जो है हमारे जो शत्रु कीट है उसके अंडे में अपने अंडे देती है तो उसी से निकलते हैं तो जो हानिकारक कीट है उसका जो है विकास या संख्या घट जाती है।
1: डॉक्टर साहब बीमारियों से बचाव के लिए भी तो ट्राइकोडर्मा है मेटाराइजियम है ये सब भी तो है?
0: हाँ हाँ जैसे बीमारी से बचने के लिए किसान भाई बीज शोधन में भी कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा का प्रयोग खड़ी फसल में भी कर सकते हैं इसका प्रयोग करके रोग का नियंत्रण करते हैं किसान भाई या दीमक के नियंत्रण करना हो तो
1: ब्यूवेरिया
0: बेसियाना का प्रयोग करें इसका बहुत अच्छा काम करता है दीमक के। और उर्द मूंग में जो फली छेदक का बहुत समस्या आती है खरीफ फसल में देखी जाए तो इसमें NPV का प्रयोग किसान भाई करें
1: जी
0: न्यूक्लियर
1: पॉलीहाइड्रोसिस वायरस
0: होता है इसको कहते हैं। नीम आयल का प्रयोग किसान भाई
1: इस समय निमकौड़ी है इकट्ठा कर लें?
0: हाँ बिल्कुल इकट्ठा कर लें उससे नीम बना सकते हैं नीम का सत निकाल के उसको सुखा करके तो उसका प्रयोग कर सकते हैं इससे जो है कीड़े जो होते हैं उनको खाने की अनिच्छा हो जाती है उनका प्रजनन प्रभावित होता है जो उनकी
1: और उनकी पीढ़ी बढ़ने नहीं पाती है। डॉक्टर साहब जो अंतिम विकल्प है जब नुकसान का स्तर अधिक है तब जो रासायनिक प्रबंधन है उसमें क्या कुछ करें किसान भाई बहन?
0: जब ये सब विकल्प के बाद भी अगर कीटों का प्रभावी नियंत्रण नहीं होता है तो किसान भाई जो फसल के लिए कीट विशेष के लिए रोग विशेष के लिए संतुलित कृषि रसायन है उसकी संतुलित मात्रा में प्रयोग करें और रसायनों का प्रयोग करते समय पानी की जो मात्रा को जो है ध्यान दें कि जो है जितना संतुलित पानी की मात्रा में उतना मिलाकर ही प्रयोग करें
1: यानी कम न रहे अधिक न रहे
0: ताकि जो है अच्छे से जो है प्रभावी रूप से कीटनाशकों का जो है काम हो और कीट नियंत्रण हो सके।
1: डॉक्टर साहब किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ में समन्वित नाशी जीव प्रबंधन के बारे में अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: किसान भाई हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें 9415364962 94-153-64-962।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ में IPM के बारे में? डॉक्टर साहब
0: IPM में सबसे महत्वपूर्ण किसान भाइयों बहनों यह है कि अपनी फसल की जो है नियमित निगरानी करें ताकि आपको पता चल सके कि हमारे फसल में कीट रोग का प्रकोप कहीं हुआ रहा है तो आपको जल्दी से मालूम हो जाएगा। और प्रयास से करें कि शत्रु और मित्र कीट का जो अनुपात है
1: जी
0: 2-1 का बना रहे ताकि जो है
1: संतुलन बना रहे
0: तो
1: कोई भी कृषि

0: रक्षा रसायन तब तक न प्रयोग करें।
1: बिल्कुल, और जैविक कीटनाशकों का छिड़काव सायंकाल में करें, अच्छा प्रभावी होगा। और रसायनों का प्रयोग करते समय जो सावधानियां हैं उसको जरूर रखें ताकि किसी दुर्घटना से बच सकें और फसल पर जो है उसका अच्छा प्रभाव पड़े।
0: डॉक्टर ललन सिंह यादव साहब, आज आप कार्यक्रम में आए, और खरीफ में समन्वित नाशी जीव प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: खरीफ फसल में समन्वित नाशी जीव प्रबंधन, अभी आप इस विषय पर डॉक्टर ललन सिंह यादव से भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट वार्ता की डॉक्टर सुशील कुमार राय ने। इसके साथ ही आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित कुछ सूचनाएं सुनिए। प्रभारी विलुप्त व्यक्ति राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार खुशी विश्वकर्मा पुत्री लवकुश विश्वकर्मा निवासी तीन वरवा चकी किशुनदास थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही से दिनांक 17 अप्रैल सन 2026 से कहीं लापता हैं। खुशी विश्वकर्मा की आयु 19 वर्ष, कद 152.4 इंच, गोरा रंग और गोल चेहरा है। अर्चना देवी पत्नी अमरजीत निवासी गोधना थाना ऊंज जनपद भदोही से दिनांक 15 अप्रैल सन 2026 से कहीं लापता हैं। अर्चना देवी की आयु 27 वर्ष, कद 4 फुट 6 इंच, गोरा रंग और गोल चेहरा है। रागिनी पुत्री श्यामलाल सरोज निवासी मल्लूपुर थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही से दिनांक 31 मई सन 2026 से कहीं लापता हैं। रागिनी की आयु 19 वर्ष 4 माह, कद 5 फुट, गोरा रंग और गोल चेहरा है। छोटेलाल उर्फ बाबा पुत्र फकीरदास निवासी मलेपुर थाना सूर्यावा जनपद भदोही से दिनांक 26 मई सन 2026 से कहीं लापता हैं। छोटेलाल उर्फ बाबा की आयु 55 वर्ष, कद 5 फुट, काला रंग और लंबा चेहरा है, और इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। राजकुमार उर्फ जोगी पुत्र राधेश्याम गौतम निवासी वारी थाना सूर्यावा जनपद भदोही से दिनांक 21 मई सन 2026 से कहीं लापता हैं। राजकुमार उर्फ जोगी की आयु लगभग 22 वर्ष, कद 5 फुट, गोरा रंग और लंबा चेहरा है, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जिस किसी भी व्यक्ति को इन खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कोई जानकारी हो या मिले तो कृपया इस पते पर सूचित करें। पता है प्रभारी विलुप्त व्यक्ति राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश लखनऊ। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं समाप्त हुईं। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
7: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

0: आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक माधुरी। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे राजकुमार यादव और साथियों का गाया आल्हा। प्रसंग है गांजर की लड़ाई।

बाबा वाले राजा जिनका दिहो निगार निकर बना भर गे महुबा से अब आगे का सुनो हवाल कचिए जानो जय चंद्र का यार कनु ये सहर रहन बदलाए जरा यहुला घन का आला वो दलली हो बसाए जिगिर बैठे आला वो दल सो भाया कुबर ना जाए पता लगेगा है माहिल का जो है उरई के परिहार भभू का है माहिल के भूत

ललकारा के नवरिया का मुरी लिल्ली का करो तैयार। घोड़ी जज के माहिर वाली लियो कनहू जगा धुरा दबाए। हड़ी नबी तह नहबल गुजारा लियो कनहू

जहाँ बैठका है राजा का गद्दी तब रही दिखलाए। उधर बछेड़ी के भुइया वह घोड़ी कथा मिली हो धनवार। महल धस गए या बंगला माय अब गहरा खंजेर लगाए। बैठका है बंगला माँ बैठे कनौज के महिपाल। नचे कंजनी यो बंगला माँ तगहीन तगहीन सब।

భూమి గారడ బాఘనకాయ మహిళ మా పరైనిగా बोले राजा कनु जवाले यो माहिल काली हो बोलाय या जा उरई वाले या जा हिया बैठ जा भाई लाल कनु जी के मंगला माया गे हमराई के परिहार लाई के बहनोई के माधे माली हो लगाए पड़ी कलैया तो माहिल के राजा बगल हो बैठाए कौन कारण आवन होगा बोल उड़ई के परिहार माहिल बोले तब राजा से जीजा कह गयो बौराए जन्म के छलिया महुबा वाले जिन कार्य गिर हो बसाए सुनो हकीकत अब आगे के अब आगे का सुनो हवाल कुमर बैठ गए है राजा के बोले कनौज के महिपाल कैसे निकर महुबा वाले रह रहे प्राण रहे घबराए माहिल समझावे जीजा का जीजा मानव कहा हमार बार बार सका पैसा यद को अब कारा खो देर लगाए याज बलाओ बखबू दल का अब कहरा खो देर लगाए पीरा धर के तुम मंगला महाराजन बालो गिरा उजार मंदबा को बंगला मा पैसा हमरो वसूल जाए यमन भाय गई राजा के जो है कनौज के महाराज धर के बीरा तो बंगला मा यऊ दल काली हो बोलाए आए हो के राजा वाले राजन मा

पगली देखो या बंगला मा तबही अभू पगली हो उठाई यारी मंतवा है मंगला मा एक से एक दुहरुआ जवान सवा पहर बीरा का हुई गए बीरा पानु का वाकु मिलाए राजा वाले कन बुजवा ले ये तो मेहमान नौ कहा हमार नहीं मन जवा को मंगला मा बीरा हमरो जवाब है यार इतना कहते पर ले भई गए बढ़िया सिंह हो भी गया है दुलरुआ जावली वाला दादा मानव कहा हमार चिंता रखो ना जी आराम पै

बोली वाला मनिया सुमिर महो बेघ्यार अल्हा दादा मनमा तो चाहिए अपने मनमा करें विचार फिर नगर जी का बोलवा वैसे का बीरा दियो गहाय डंका बजा दियो रिजगिर माँ हमारी भौजे करो तैयार बार वर्ष का पैसा है देखो पैसा आज वसूल है जाए नुला का जड़वैया लाल दे दराज का लाल हनु हकाल की

ना की रावण भारी तोप की हो तैयार, सभा भर भर जंका बाजो शोभा या को बरन न जाए। हैया हाथ में चढ़ गए बाकी घोड़ा नमाया सवार, करे तैयारी बिरिया गढ़ के लाला दे दराज के लाल। भैया है जिनके बेड़ भय तलवार, जाए पहुंचे जब धूरे माँ भोला सिंह महो बेग्यार। लिखे पाते भूदल दिन हो कलह जब न महो बेग्यार, पाते पहलियो बिरिया वाले राजन मानो कहा हमार। अब बेंदुला का चढ़वैया पैसा भरो बराबर आए, जल्दी पैसा गांजरी वाला तो तमुआ मा दियो बढ़ाए। राखो मरदूमी का अपने बाग हो तलवार, पाती भ्या जाता बंगला का जिनका कहीं लहुरवा भाई। गलती बिरिया घर का धावन तहा पहुंचो आए, पाती जी नो जब राजा का राजन मानो कहा हमार। आए बना भर महुबा वाले जिनका कहे लहुरवा भाई। पैसा को लाइव गांजरी वाला पैसा जल्दी दियो भराए, काते पर लड़ गए दोनों भाई उठे झुल्लाए। बहादुर है दुनिया मा पैसा आज वसूल आए, हाथी पढ़ते पर लड़ गए पहुंचे मूठ मगर बिग्यार। दोनों भैया करे तैयारी अब कारा घर।

स्वामी बिरिया का समाभार ये भौज हुए तैयार। धुरा दबा हुआ जब धूरे का तब आगे का सुनो हवाल। ऐसी वाड़ी में दोनों भैया यह आपस में रहे बदलाए। और बहादुर दुनिया जन्मे कह के जमे कले जे भार। कौड़ी दिया भाई यह बेरिया ना चाहे कोटिन करो उपाय। जल्दी लेके भौजे भागो बसिया ही माँ जान तुम्हार।

राजावली वाला तो अपन बत्ती दियो लगाए, और से गोलियां छूटे सुन आया समान घाय चढ़ा का वही बेरिया मात भैया गे का सुनो हवाल। कठिन लड़ाई बेरिया के हमा दैया गति बरने ना जाए, गोली लग राजा वही बेरिया तब आगे का सुनो हवाल। लड़का दियावली वाला जो है सिंघुमा हो बेग्यार, हाई गटारी वही बेरिया मा बोला सिंघुमा हो बेग्यार। तमरो तमरो बिरिया गढ़ के राजन मानव कहा हमार, और हमारा यब की है लो यब कारा खो देर लगाए। गड़गड़ देगा बाजे यब आगे का सुनो हवाल, जन का ऊदल मारे वह धरती मगिरे भरा है, बहुत बिगड़ के बिहिया गढ़ के दोनों।

0: Mario Garayati, un más joven.
1: अभी आप सुन रहे थे गाजर की लड़ाई का ये प्रसंग राजकुमार यादव और साथियों के स्वर में। इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से।

कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया, रविंद्र जैन का लिखा और संगीतबद्ध किया फिल्म फकीरा का ये गीत।

और अब लीजिए सुनिए फिल्म चोर मचाए शोर का ये गीत, जिससे स्वर दिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं गुलशन बावरा का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत बदकिया फिल्म फांसी का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित ने।

फिल्म फकीरा के इस गीत के साथ, क्षमा कीजिएगा, फिल्म फांसी के इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम अपने श्रोताओं को एक बार पुनः याद दिला दें कि आज शाम 7:31 पर आप सुनेंगे ICC वेमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले फाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर अनुज चौबे से संस्कृत वार्ता। विषय है भारतीय ज्ञानम परंपरायाम स्वप्न विज्ञानम।
1: वेदाद आरभ्य काव्यम यावत् संस्कृत वाङ्मये बहुषु ग्रन्थेषु स्वप्नस्य विशिष्टतमं विवेचनं कृतमस्ति। प्रायशः वेद ब्राह्मण उपनिषद सूत्र आर्षकाव्य

0: ज्ञातवान् अस्ति। तद्यथा गजदन्तमयी दिव्यां शिविकाम् अन्तरिक्षगाम् युक्तां वाजिसहस्त्रेण स्वयमस्थाय राघवः शुक्लमाल्यां वरधरो लक्ष्मणेन समागतः। अनेन प्रकारेण श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे विषयस्मिन् अन्य विषये च स्वप्न विमर्शो दुःख स्वप्न निरूपणाध्याये निगदितम् अस्ति यद् स्वप्ने यदि भल्लुकः काकः वानरादीनां दर्शनं भवति चेत् केवलं तस्य फलं व्याधिकारकं भवति। तद्यथा कङ्कं च शकुनं काकं भल्लुकं वानरं गरम् ऊयं गात्रमलं स्वप्ने केवलं व्याधिकारकं। वस्तुतस्तु स्वप्नादीनां विमर्शनं वेदवेदांग आर्षकाव्य इतिहास पुराणादि काव्येषु स्वप्नानां निरूपणेन सह सुस्वप्नानां दुःस्वप्नानां च सविस्तरेण विमर्शनं वर्तते। अनेन स्वप्नानां परीक्षया सह तेषां शान्त्यर्थं शुभाय च अनेकोपायाः अपि वर्णिताः सन्ति। श्रीमद् रामायणे प्रायशः स्वप्नसम्बन्धाः शताधिकाः श्लोकाः स्वप्नक्षेत्रेण सह सम्बद्धाः वर्तन्ते। येषाम् आधुनिकी रीत्या यतो हि भारतीयमनीषायां स्वप्नसम्बन्धाः ये विषयाः विवेचिताः सन्ति तेषां पृथक्त्वेन अध्ययनम् अपेक्षितम् अस्ति। धन्यवादः।
1: भारतीयज्ञानं परम्परायां स्वप्नविज्ञानम्। अभी आप डॉक्टर अनुज चौबे से ये संस्कृत वार्ता सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का संस्कृत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
2: Hey girls!
3: Hi! Congratulations!
2: आज तो पार्टी चाहिए।
4: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है।
7: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रिकॉर्डेड फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।

0: अब सुनिए हमारा आज का ये कार्यक्रम। हेलो डॉक्टर।
1: दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। और दोस्तों जैसा आपको पता ही है कि इस कार्यक्रम में हम किसी ऐसे विशेषज्ञ को, किसी ऐसे चिकित्सा के उस विधा के विशेषज्ञ को लाते हैं जो आपकी ढेरों जो समस्याएं हैं, आपकी भ्रांतियां जो हैं वो दूर करते हैं। कई ऐसे विचार, कई ऐसी बातें बताते हैं जो शायद उस विधेयक उस विषय के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों जो आज का विषय है वो है आँखों की सुरक्षा और देखभाल, और जो विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं वो हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार विश्नोई। आप कई दशकों से आँखों का इलाज कर रहे हैं, आप वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
2: नमस्ते
1: डॉक्टर साहब। हम आँखों की सुरक्षा और देखभाल की बात करते हैं कि भाई आँखें कैसे सुरक्षित रहें, कैसे वो बहुत दिनों तक ठीक रहें, कोई बीमारी ना होने पाए। तो किस चीज़ से सुरक्षा, कौन सी बीमारियों से सुरक्षा हम करते हैं?
2: सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हमें अपनी आँखों की देखभाल तो पूरे जीवन में ही करनी चाहिए
1: जी।
2: उसके लिए सबसे जरूरी है कि उसकी नियमित जांच होती रहे आँखों की, उसका हमारा खानपान अच्छा रहे, हमें किसी चोट आदि से सुरक्षा अपनी आँखों की करनी चाहिए क्योंकि आँख सबसे नाजुक हिस्सा है शरीर का। तो इन्हीं सब चीजों का हमें बचाव हमेशा जिंदगी में करना चाहिए
1: जी,
2: तभी हमारी आँखें सुरक्षित रहती हैं।
1: आपने कहा कि टेस्ट कराते रहने चाहिए, कौन से टेस्ट होते हैं और प्रायः वो कौन से टेस्ट हम कराते रहें जिससे ये हमें पता चलता रहे कि आंखें हमारी सुरक्षित हैं?
2: देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसकी आंखों की एक जांच होनी चाहिए कि उसकी आंखों में कोई ऐसा दोष तो नहीं है जो जन्मजात हो। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, पढ़ने की उम्र पे आ जाता है, 3 से 5 साल की उम्र में, तो उसकी निगाह की जांच होनी चाहिए कि उसको कोई चश्मे का नंबर तो नहीं है, क्योंकि उसकी अगर सही समय पे पता लग जाती है कमी तो उसका उपचार पूरी तरह किया जा सकता है उस उम्र में। उसके बाद जब बच्चा और बड़ा होता है तो उसकी मांसपेशियों की जांच, निगाह की जांच कि अगर उसके चश्मे का नंबर लगा हुआ है तो वो नंबर बढ़ रहा है, तो उसको समय समय पर उसकी जांच होती रहनी चाहिए। और जब और बड़ा हो जाए तो तमाम जो बीमारियां उम्र के साथ हो सकती हैं या जो ऐसी कमियां हैं जो उम्र के साथ होती हैं, और ख़ास तौर से ऐसे लोगों को जो मधुमेह के रोगी हैं या ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, उनको जो हो सकती हैं, तो उनके लिए 40 वर्ष की आयु के बाद जांचें होती हैं, काला मोतिया की जांच होती है और चश्मे के नंबर की जांच होती है। तो ये सब समय समय पे हमको कराते रहना चाहिए।
1: ये तो रही सुरक्षा की बात, क्या कोई बीमारियां भी अगर वर्गीकृत की जाए कि भाई उम्र के आधार पर कि बच्चों को या युवा को या वृद्धों को, वो कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं या कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं?
2: बच्चों में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है निगाह
1: जी,
2: जो उसकी दृष्टि है वो कमजोर तो नहीं है और उसको चश्मे का नंबर तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एक आंख कमजोर है और एक आंख ठीक है तो उसके भेंगापन भी हो सकता है
1: जी, जी।
2: तो अगर किसी बच्चे के लगता है कि उसको भेंगापन है तो उसकी तुरंत जांच करानी चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है उम्र क्या है जिसपे जांच हो रही है। तो 3 साल से 5 साल के बीच की उम्र वो उम्र होती है कि जिसमें अगर ये पता लग जाए कि बच्चे की एक आंख की निगाह कमजोर है तो उस निगाह को इलाज के द्वारा, चश्मे के द्वारा पूरी तरह वापस लाया जा सकता है। लेकिन अगर उम्र बढ़ जाती है और तब ये पता लगता है कि एक आंख की निगाह कमजोर है तब ज्यादा हो नहीं पाता है इलाज और निगाह कम की कम ही रह जाती है। इसलिए समय बहुत महत्वपूर्ण है कि किस समय पे उसकी जांच होनी चाहिए।
1: ये तो बच्चों की बात रही, युवाओं में भी क्या कोई दिक्कत इस तरह की हो सकती है?
2: युवाओं में आजकल ये देखने में आया है कि क्योंकि स्क्रीन टाइम लोगों का बहुत ज्यादा हो गया है, मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर पे ज्यादा समय वो दे रहे हैं
1: जी,
2: तो ऐसे में अगर उनकी आंखों में पानी आ रहा है या सर में दर्द, भारीपन रहता है, थकान रहती है, तो उसके लिए भी उन्हें अपनी निगाह की जांच करानी चाहिए। कई बार थोड़ा बहुत चश्मे का नंबर होता है या मांसपेशियों की कमजोरी होती है तो उससे भी ये दिक्कतें आती हैं, या ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, आंखों में खुश्की की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है इस कारण, तो उसकी भी जांच कराते रहना चाहिए और उसका उपचार करना चाहिए।
1: क्या कोई लक्षण दिखने लगते हैं युवाओं में कि हाँ अब ये लक्षण दिख रहे हैं, शायद दिक्कतें हो सकती हैं?
2: जी हाँ, अगर को पढ़ने में या मोबाइल पे, कंप्यूटर पे काम करने में आँखों में पानी आता है बहुत ज़्यादा और आँखों में भारीपन लगता है, थकान हो जाती है, या सर में

0: दर्द हो रहा है या आंखें लाल हो जाती हैं, तो ऐसे में ये लक्षण आंखों की कमी के हो सकते हैं कि उसके चश्मे का नंबर हो शायद, तो जो कि जांच करने के उपरांत ही पता लग पाता है।
1: बच्चों की भी हम बात कर रहे थे, क्या बच्चों में भी कोई ऐसे लक्षण दिखते हैं कि जब आपने कहा कि जैसे बेंगापन या इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, हम कोई लक्षण के आधार पर समझ लें?
0: बच्चा अगर क्लास में बैठा है और वो पढ़ नहीं पा रहा है, ब्लैक बोर्ड पे देख नहीं पा रहा है,
1: जी
0: तो वो काम पूरा करता नहीं है अपनी कॉपी पे, जो हमारे टीचर्स हैं वो भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं अक्सर, वो बच्चों को बताते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं कि इनकी आँख चेक कराइए, बच्चा जो है ठीक से पढ़ नहीं पाता है बोर्ड पे जो लिखा हुआ है। या फिर वो आप घर पे जैसे टीवी देख रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा पास जाके टीवी देखता है, पीछे
1: जी
0: से नहीं देख पा रहा है जहाँ पर सब लोग देख रहे हैं, तो ये भी इसका संकेत है कि बच्चे की निगाह कमज़ोर है और उसकी जांच करानी चाहिए।
1: अब एक उम्र विशेष, जिसे हम कहते हैं कि भाई वृद्धावस्था की या प्रौढ़ावस्था की स्थिति में बहुत बार आंखों में दिक्कत होती है, तो प्रायः वो कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं और क्या कोई लक्षण भी प्रकट करते हैं वो?
0: जी हाँ, अगर आपकी निगाह कमज़ोर हो रही है
1: जी
0: या आपको रात में देखने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है या रोशनी से अंधेरे में जाते हैं तो बहुत समय लगता है आपको देखने में, या शाम के समय आपकी आंखों में भारीपन थकान ज़्यादा रहता है, तो
1: जी जी
0: ये अक्सर ग्लोकोमा या काला मोतियाबिंद के भी लक्षण हो सकते हैं, जिसके लिए कि समय पे जांच करा लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये बीमारी ऐसी है काला मोतिया की कि जिसमें समय पे अगर जांच हो के इस बीमारी का पता लग जाता है
1: जी
0: तो इसका उपचार हो जाता है और जो रोशनी है वो और घटने से बचाई जा सकती है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो रहा कि बीमारियों की बात की आपने, उम्र के वर्गीकरण के आधार पर सामान्यतया बीमारियों का जिक्र किया, उसके लक्षण बता दिए। अब यदि इन बीमारियों से हम बचना चाहते हैं, हम शुरू से ही ये जानते रहे कि ये प्रिकॉशन लेके हम शायद इन बीमारियों को टाल सकते हैं या बच सकते हैं, वो क्या उपाय होंगे जो सामान्यतः अपनाए जाएं?
0: सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आंखों की नियमित जांच।
1: जी
0: कोई भी उम्र हो, आंखों की नियमित जांच एक किसी भी नेत्र विशेषज्ञ से समय समय पर अवश्य कराते रहना चाहिए, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी हैं जिनका पता नहीं लग पाता है और उनको नेत्र विशेषज्ञ द्वारा जांच करने के बाद ही पता लगता है कि ये बीमारी आपको है, और जबकि वो बीमारी आंख में काफी नुकसान कर रही होती है।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: समय
1: जी
0: समय पर नियमित जांच कराना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: हाँ, आपने जांच का जिक्र किया, बहुत बार हमारे ऐसे श्रोता जो कई बार अवॉइड करते रहते हैं, उन्हें लगता है कि शायद थोड़ी दिक्कत है, हमारा काम चल जा रहा है, हम किसी और का चश्मा लगाकर काम कर ले रहे हैं या बाद में दिखाएंगे, बहुत बार ढेर सारे लोगों में ये दिक्कत होती है। क्या यदि हम समय पर नहीं दिखाते हैं या इसे अवॉइड करते रहते हैं, बड़ी समस्या हो सकती है?
0: जी हाँ, बहुत बड़ी समस्या इसमें उत्पन्न हो सकती है अगर देरी की जाती है,
1: जी
0: क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे काला मोतियाबिंद की बीमारी है, ग्लोकोमा की,
1: जी
0: वो
1: जी
0: भी
1: जी
0: अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो जो रोशनी एक बार ख़त्म हो जाती है वो वापस नहीं लाई जा पाती है। ऐसे ही सफ़ेद मोतियाबिंद का, अगर वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही पक जाता है,
1: जी
0: देखिए क्या होता है, हम लोगों की दो आँखें हैं और कई बार जो लोग थोड़ा डरते हैं दिखाने में, वो एक ही आँख से काम करते रहते हैं और दूसरी आँख से ये ध्यान नहीं देते कि उस आँख की रोशनी बहुत कम हो गई है, और ज़्यादा मोतियाबिंद पक जाने से भी उसमें दर्द होके और काला मोतियाबिंद हो जाता है। या जो हमारे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं
1: जी जी जी
0: उनको भी
1: जी
0: पर्दे में खराबी आती है, लगभग 15-20 साल के ज़्यादा की डायबिटीज़ जब हो जाती है तो आँख के पर्दे पे भी उसका असर होने की संभावना पूरी बनी रहती है, और उसकी भी अगर जांच करा ली जाए समय पे तो उसका बचाव किया जा सकता है और पर्दा खराब होने से रोका जा सकता है।
1: आपने ये डिजीज की बात की, प्री डिजीज जैसे हाइपरटेंशन है या डायबिटिक है, क्या इसका इम्पैक्ट आंखों पर ज्यादा पड़ता है बाद में?
0: आंखों पर सभी बीमारियों का असर पड़ता है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे
1: जी
0: वो ब्लड प्रेशर बीमारी हो या उम्र का असर हो। आंखें सबसे नाजुक हिस्सा है, अगर शरीर पे कहीं भी उस बीमारी का असर होगा तो सबसे पहले वो आंखों में नज़र आएगा,
1: जी जी
0: क्योंकि
1: जी
0: आंख सबसे नाजुक चीज़ है, आदमी को दिखाई कम देने लगता है तो एकदम उसको पता लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है मेरी आंखों में, तो तुरंत समझता है कि हाँ कुछ परेशानी है, तो
1: परेशानी
0: तुरंत
1: है।
0: जाँच करानी चाहिए उसकी।
1: डॉक्टर साहब, अपने कार्यक्रम में अपने श्रोताओं को प्यारे प्यारे गीत भी सुनवाते रहते हैं, तो लीजिए सुनिए ये प्यारा सा ट्रैक।

0: दोस्तों एक बार पुनः कार्यक्रम में स्वागत है। और अभी जैसा हम डॉक्टर संजय जी से बात कर ही रहे थे, आपके कई ऐसे सवाल हैं, आपके कई संदेश हैं जो मैं डॉक्टर साहब को संदर्भित कर रहा हूँ। हमारे एक श्रोता है, उन्होंने पूछा है, सर कंप्यूटर स्क्रीन या फोन के अधिक इस्तेमाल से क्या कोई बड़ी दिक्कत हो सकती है या इसे रोकें कैसे?
1: बड़ी दिक्कत कोई उसको इस्तेमाल करने से नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी आंख कमजोर है और आपको दिक्कत हो रही है और आप समय से जांच नहीं कराते हैं तो आपको थकान महसूस होगी और आपका वर्क आपका सफर करेगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है कंप्यूटर इस्तेमाल करने में या मोबाइल पे पढ़ने में तो तुरंत आंखों की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। कई बार थोड़ा बहुत चश्मे का नंबर होता है जिसको लगाने से पूरा आराम हो जाता है, तो जांच कराने के बाद ही ये पता लग पाता है कि किस कारण से ये कमी आ रही है।
0: एक इससे समसामयिक सवाल भी जो जुड़ा हुआ है, कई बार आजकल हम जब बच्चों को देख रहे हैं, जो हमारे बहुत छोटे बच्चे हैं, वो कई बार मोबाइल या स्क्रीन से ही कनेक्ट हो जा रहे हैं, वही देखकर वो खाना खाते हैं, उसी को देख के खुश होते हैं, या अपने परिवार से बार बार जिद करते रहते हैं कि भाई ये स्क्रीन दिखाइए, मोबाइल दिखाइए। क्या इससे बच्चों की आंखों पर असर पड़ेगा?
1: जी हाँ, बच्चों की आंखों पर इससे असर ये पड़ता है कि उनको आंखों में थकान जल्दी महसूस होती है
0: जी।
1: और जब मोबाइल पर ज्यादा समय लगाते हैं तो पढ़ाई में उनका ध्यान बढ़ता है और वो पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं
0: जी, जी, जी।
1: और अगर मोबाइल देखने से उनकी आंखें में दर्द हो रहा है, लाली आ रही है, तो वो आंखों को मलते हैं, मलने के बाद वो और बीमारियां भी पकड़ते हैं जो गंदे हाथों को आंखों में लगाने से भी हो सकती है। उनकी आंखों में पानी बह रहा है और वो गंदे हाथों से आंखों को पोंछते रहते हैं
0: जी, जी,
1: तो
0: जी,
1: उससे
0: जी,
1: भी आंखों में वो बीमारियां लग सकती हैं जो गंदगी के कारण आंखों में होती हैं।
0: जी जी जी जी।
1: तो अगर माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा अगर ज्यादा मोबाइल चला रहा है तो उसको उससे रोकें और उस पर ध्यान दें कि वो एक सीमित समय के लिए ही मोबाइल को देखे।
0: आपने कहा कि वो आंखों के पोंछने या आंखों पर हम जो धुलते रहते हैं या कोई और जो आंखों से सुरक्षा के हम उपाय करते हैं, क्या कोई बेसिक स्टेप्स भी हैं जिसे अपनाकर हम आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं? प्रायः हम देखते हैं कि आंखें धुल रहे हैं या आंखें पोंछ रहे हैं, उससे आंखों में दिक्कत होती है।
1: आंखों को जब भी छूना है या पोंछना है या दवा डालना है, पहले साबुन से हाथ धो लेने चाहिए। बिना धुले हाथों को कभी आंखों में नहीं लगाना चाहिए और बहुत ज्यादा आंखों को धोना भी नहीं चाहिए।
0: जी,
1: ज्यादा कुछ लोगों की आदत होती है कि हर घंटे पे आंखों को धोते रहते हैं, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे जो कुदरती चिकनाहट आंखों में होती है वो धुल जाती है और आंखों में गड़न चुभन ज्यादा पैदा होती है। और जब भी आंख को पोंछना है, हमेशा साफ रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। एक ही रुमाल से या साड़ी के पल्ले से या दुपट्टे से आंख को नहीं बार बार पोंछना चाहिए, क्योंकि उससे आंखों में और गंदगी जाने का डर रहता है।
0: जी जी जी। सर हम लोग अभी मोतियाबिंद का जिक्र कर रहे थे या हम कह रहे थे कि भी डॉक्टर को दिखा लें और जो चिकित्सा का उपाय बता रहे हैं उसे अपनाकर सुरक्षित कर लें। क्या मोतियाबिंद में सर्जरी की बात की जाती है? क्या केवल और केवल यही मात्र एक विकल्प है?
1: जी हाँ, मोतियाबिंद का इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। ये इस प्रकार से समझिए जैसे उम्र के कारण हमारे बाल सफेद होते रहते हैं, ऐसी जो आंख का पारदर्शी लेंस है वो सफेद होता रहता है। तो उस सफेदी को खत्म करने का कोई दवा नहीं होती है। उसका यही उपाय है कि उस सफेद हिस्से को निकाल के वहां पर एक आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाए और ताकि आंख की निगाह वापिस आ सके।
0: एक सवाल है एक हमारे श्रोता का और शायद कमोबेश हम सबसे वो जुड़ा भी हुआ है जो युवा अवस्था में है।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार, हमारी अवस्था लगभग 40 वर्ष की है, तो क्या हम इस अवस्था में चश्मा बनवा लें जिससे जो है हमें नज़दीक कुछ कम दिखाई देता है तो हमारी दृष्टि स्थिर रहेगी?
1: 40 वर्ष की आयु पे देखा जाता है कि पास की निगाह लोगों की कमजोर हो जाती है, क्योंकि आँख की मांसपेशियाँ

0: के साथ कमजोर हो जाती हैं और वो उतना जोर नहीं दे पाती हैं जितना बचपन में दे लेती हैं, तो पास की निगाह कमजोर हो जाती है और उसके लिए पास का चश्मा अक्सर लोगों को 40 साल की उम्र के करीब आकर लगाना पड़ता है।
1: जी, जी।
0: तो अगर पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है, नजदीक का काम महीन करते हैं उसमें दिक्कत आ रही है, तो अवश्य चश्मा बनवा लेना चाहिए।
1: हम स्क्रीन की ही बात कर रहे थे, क्या स्क्रीन से सुरक्षा के लिए कोई ऐसा चश्मा हम उस टाइम लगा लें या हम कुछ ऐसे प्रिकॉशन कर लें जिससे कि सुरक्षित रहें?
0: स्क्रीन से सुरक्षा के लिए कोई अलग से चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी आंख में कोई चश्मे का नंबर नहीं है तो आप नेकेड आई से स्क्रीन का इस्तेमाल करें, उससे कोई आंखों पर गलत असर नहीं पड़ता है। लेकिन अंधेरे कमरे में मोबाइल चलाना या लेट के मोबाइल चलाना या कंप्यूटर लैपटॉप पे गलत दिशा में बैठ के काम करना, उसकी हाइट भी एडजस्ट करनी चाहिए, सही ऊंचाई पे रहना चाहिए, उसकी ब्राइटनेस जो है वो भी सही होनी चाहिए
1: जी।
0: और आपका बैठने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए कि आप सीधे बैठ के उस पर काम करें। कई बार लोग लेट के मोबाइल चलाते हैं
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: वो भी गलत है, उससे आंखों पे अनावश्यक तनाव पड़ता है।
1: सभी हम लोग सर मोतियाबिंद की सर्जरी की बात कर रहे थे, एक हमारे श्रोता है उन्होंने पूछा कि क्या मोतियाबिंद की सर्जरी के उपरांत आंखें पूर्व की भांति ही हो जाती हैं?
0: जी हाँ, लगभग वैसे ही हो जाती हैं जैसे पहले दिखता रहा होता है।
1: जी,
0: अगर सिर्फ मोतियाबिंद है तो पूरी निगाह वैसे ही वापस आ जाती है। अगर कोई और भी कारण उसके साथ जुड़ा हुआ है कि पर्दे में कोई कमी है या कोई और बीमारी साथ में है मोतियाबिंद के, तब उसी हिसाब से रोशनी वापस आती है।
1: सर हमने बीमारियों की बात कर ली, उसके लक्षण की बात कर ली, उपचार की बात कर ली, बचाव की भी बात कर ली, क्या जो हमारी दिनचर्या है या जो हमारा खान पान है उससे भी क्या आंखों की सुरक्षा या आंखों की बीमारियों का कोई संबंध है?
0: जी हाँ, खान पान का बहुत विशेष महत्व है आंखों के लिए।
1: जी,
0: बचपन से ही हमें देखना चाहिए कि ऐसी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें जिनमें विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में हो, जैसे पके हुए फल हैं, पका पपीता है, आम है और गाजर है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध है, इनका सेवन करने से आंखों की रोशनी अच्छी रहती है।
1: जी जी, मतलब खान पान में इन बातों
0: खान पान का बहुत
1: रखे।
0: विशेष महत्व है आंखों के लिए।
1: सर अगर हम अपने श्रोताओं को चलते चलते, चूंकि समय बहुत कम है, अगर हम एक सामान्य व्यक्ति को आंखों को सुरक्षित रखने के वो सामान्य से उपाय बताना चाहें, क्या बताना चाहेंगे श्रोताओं को?
0: सफाई पे विशेष ध्यान दें, गंदे हाथों को कभी आंखों पे न लगाएं और अगर कोई आंखों में दिक्कत है, पानी आ रहा है या दर्द हो रहा है, भारीपन लगता है, तो तुरंत नेत्र विशेषज्ञ से जांच कराएं। ऐसे ही किसी भी दुकान पे जाके स्वयं कोई दवा लेके न डालें, क्योंकि स्वयं कोई भी दवा लेके डालना अक्सर नुकसान कर सकता है।
1: जी जी, तो श्रोताओं आपने डॉक्टर संजय जी को सुना ही और डॉक्टर साहब ने जो सबसे मूल बातें बताई कि भाई खुद भी डॉक्टर ना बने, डॉक्टर साहब ने बताया है कि भाई आप अगर कोई लक्षण इस तरह के दिख रहे हों जो विभिन्न बीमारियों के संदर्भ में है, आप चिकित्सक से सलाह लें, उनके पास जाएं, जो इलाज बता रहे हैं वो करें, खुद से कोई अपने से सही कोई एक्सपेरिमेंट ना करने लगें। और डॉक्टर साहब ने जो लास्ट में आपको बात बताई कि आंखों को सुरक्षित रखने के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी हमें जानकारी दी और आंखों की सुरक्षा के बारे में हमारे श्रोताओं को जागरूक किया आपने। तो दोस्तों ये थी हेलो डॉक्टर के संघ की प्रस्तुति। अगले अंक में हम पुनः उपस्थित होंगे और जो अगले अंक का विषय है वो है दांतों की सुरक्षा और देखभाल। आप इससे संबंधित हमें सवाल और संदेश भेज सकते हैं, हम आपके सवाल और संदेश कार्यक्रम में शामिल करेंगे और डॉक्टर साहब से इससे संबंधित राय भी लेंगे। आप यूं ही हमें फोन करते रहें, सुनते रहें। नमस्कार।

0: ये था हमारा आज का कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।
1: अभी आप सुन रहे थे रिकॉर्डेड फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया सुभाष खन्ना ने। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं, प्रस्तुत है दिव्यांगजनों हेतु कार्यक्रम संकल्प। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए श्रीमती नीलम बंसल विशेष शिक्षक से वार्ता, जिसका विषय है समान अधिकार, सम्मान व रोजगार।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नीलम बंसल है और मैं दिव्यांगजनों के लिए कार्य करती हूँ

जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी सभ्य और प्रगतिशील समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सभी नागरिकों को समान अवसर और सम्मान प्रदान करता है। दिव्यांगजन भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा, क्षमता और योगदान किसी भी प्रकार से कम नहीं होते। इसलिए उन्हें समान अधिकार, सम्मान और रोजगार के अवसर प्रदान करना समाज और राष्ट्र दोनों की ही जिम्मेदारी है। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने नागरिकों को समान अवसर, समाज में सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करता है। भारत में दिव्यांगजन समाज का एक अभिन्न अंग है और उनके अधिकारों की रक्षा करना राज्य तथा समाज दोनों का ही दायित्व है। लंबे समय तक दिव्यांगजनों को बहुत सारी सामाजिक उपेक्षाओं, भेदभावों, अवसरों की कमी का सामना करना पड़ा है। इस स्थिति को बदलने के लिए भारतीय संविधान तथा विभिन्न कानूनों ने उन्हें समान अधिकार, सम्मान और रोजगार के अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की है। अब हम जानेंगे कि दिव्यांगजन कौन है। दिव्यांगजन वे व्यक्ति हैं जिन्हें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी अक्षमता के कारण दैनिक जीवन की गतिविधियों में कठिनाई होती है। आधुनिक दृष्टिकोण दिव्यांगता को केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि समाज में मौजूद भौतिक, सामाजिक और संस्थागत बाधाओं का परिणाम भी मानता है। इसलिए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए समावेशी व्यवस्था अति आवश्यक है। समान अधिकारों का महत्व अगर हम देखेंगे तो भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। दिव्यांगजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवागमन, न्याय और सामाजिक सुरक्षा के समान अधिकार रखते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। भारतीय संविधान में समान अधिकार प्राप्त हैं, जो इस प्रकार से हैं कि सभी नागरिकों को समानता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो और दिव्यांगजन भी इन अधिकारों को समान रूप से प्रयोग कर पाए। तो पहला इसमें है अनुच्छेद 14, जिसके अंतर्गत कानून के समक्ष समानता। यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष संरक्षण की गारंटी भी देता है। दिव्यांगजन भी किसी प्रकार के भेदभाव के बिना समान अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 15 भारत के संविधान में भेदभाव का निषेध करता है, जिसमें राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। न्यायालयों ने समानता के सिद्धांत को व्यापक रूप से लागू करते हुए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की भी रक्षा की है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें रोजगार के समान अवसर की बात की गई है, जिसमें सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएं, चाहे वह दिव्यांगजन हो या वो दिव्यांगजन ना हो। अगर हम इसके अलावा बात करेंगे तो अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। यह अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, जो हमारे देश में संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशन द्वारा स्वीकृत कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अनुरूप बनाया गया है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि यह दिव्यांगताओं की श्रेणी को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। इस अधिनियम के तहत सरकारी नौकरियों में कम से कम 4% आरक्षण का प्राविधान किया गया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों में कम से कम 5% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ सार्वजनिक भवनों, परिवहन और सेवाओं को सुगम, एक्सेसिबल बनाने की व्यवस्था भी पूरे देश में की जाए, यह भी इस अधिनियम में कहा गया है। भारतीय कानून दिव्यांगजनों को केवल सहायता का पात्र नहीं मानता बल्कि उन्हें सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी दे देता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे रोजगार के बारे में तो रोजगार आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान का आधार है। भारतीय कानून दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष बल देता है। इसके लिए निम्न कदम आवश्यक हैं। पहला है सरकारी और निजी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करना। दूसरा है कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तीसरा है कार्यस्थलों को दिव्यांग अनुकूल बनाना। चौथा है आधुनिक तकनीकी और सहायक उपकरण उपलब्ध कराना। पांचवा है उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना। सरकार विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, सरकारी कौशल विकास योजनाएं, स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों को रोजगार के लिए तैयार कर रही है। इसके साथ साथ वह कार्यस्थल पर भी

0: विभिन्न प्रकार की सुविधाएं नागरिकों को प्रदान कर रही है। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे शिक्षा और रोजगार के संबंध की, तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A जो हमारे संविधान में व्याप्त है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, जो दिव्यांग व्यक्तियों को भी प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए समावेशी और सुलभ शिक्षा पर विशेष बल देती है। इसके अंतर्गत बाधा रहित यानी कि बैरियर फ्री विद्यालय, इसके अलावा सहायक तकनीकों का उपयोग, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति, समान शैक्षिक अवसरों की समानता की व्यवस्था, यह सभी चीजें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पार्ट है। दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रमुख अधिकारों की अगर हम बात करें तो निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए, वह भेदभाव से मुक्त होने चाहिए, उन्हें सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए, समावेशी विद्यालयों में प्रवेश का उन्हें अधिकार है और छात्रवृत्ति एवं शैक्षणिक सहायता भी उन्हें प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ परीक्षा में आवश्यक सुविधाएं जैसे अतिरिक्त समय, लेखक या स्क्राइब आदि की व्यवस्था भी की जाए। इसके अलावा सुलभ भवन यानी कि एक्सेसिबल बिल्डिंग्स, पुस्तकालय और डिजिटल संसाधन, ये सारी व्यवस्था हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी और सुलभ शिक्षा पर विशेष बल देती है। सरकार और समाज की संयुक्त जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो दिव्यांगजनों के अधिकारों की वास्तविक सुरक्षा केवल कानून बनाने से नहीं होती, इसके लिए समाज, सरकार, शैक्षणिक संस्थान, निजी कंपनियां और नागरिकों को मिलकर कार्य करना होगा। इसके लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे, जन जागरूकता को बढ़ाना होगा, सार्वजनिक स्थानों को सुगम बनाना होगा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना होगा, तकनीकी सहायता और डिजिटल पहुंच को सुनिश्चित करना पड़ेगा, तभी हम दिव्यांगजनों की जो भागीदारी हमारे देश में है उसको सुनिश्चित कर पाएंगे। धन्यवाद।
1: समान अधिकार, सम्मान व रोजगार। अभी आप नीलम बंसल विशेष शिक्षक से ये वार्ता सुन रहे थे और आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर अल्पना रस्तोगी मनोचिकित्सक से भेंट, क्षमा कीजिएगा, वार्ता विषय है मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक और भावनात्मक पहलू।
2: नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम डॉक्टर अल्पना रस्तोगी है। मेरा कार्य क्षेत्र ज़्यादातर मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में रहा है और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के साथ मैंने काम किया है। इसके अतिरिक्त सामान्य जनों के साथ भी काम किया है जिनको मानसिक परेशानियां हो जाती हैं या कोई और कष्ट हो जाता है। तो आज हम आपसे बात शुरू करेंगे विशेषकर जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य के सामाजिक और संवेगात्मक या इमोशनल भावनात्मक पहलुओं के बारे में। पहली बात तो ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति चाहे सामान्य हो या फिर दिव्यांग हो या कुछ और भी समस्या हो, उसको बीमार भी हो, तब भी मानसिक स्वास्थ्य हर व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर हम दिव्यांगता की बात करें तो हमने कई बार उनका सिर्फ एक पक्ष देखते हैं जो उनमें कमी है, जबकि मानसिक स्वास्थ्य में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसको हम कहते हैं बहुत पक्ष हैं जो कि बहुत अच्छी तौर पर काम कर सकते हैं। सिर्फ एक पक्ष होता है, या तो शारीरिक कोई अंग होगा या फिर मानसिक कोई क्षमता होगी जो वो नहीं कर पा रहे होंगे, उसके अतिरिक्त वो एक सामान्य व्यक्ति हैं। तो तीन बातें जो मुझे कहनी है इनके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, एक्सेप्टेंस या स्वीकारोक्ति। स्वीकारोक्ति हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम स्वीकार ही नहीं करेंगे, हमारे लिए वो व्यक्ति एक मनुष्य है, एक जीव है और उस व्यक्ति का समान आदर होना चाहिए, जैसे कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि सामान्य तौर पर काम कर रहा है, उसको प्रत्यक्ष रूप से कोई कमी नहीं है। क्योंकि मैं मनोवैज्ञानिक होने के नाते ये मानती हूँ कि कमी हम सब में होती है, कोई ना कोई तो होती ही है। दूसरा, एप्रिसिएशन। एक बार ये बात समझ में आ जाए कि हमें उन्हें मनुष्य के तौर पर स्वीकार करना है, जीवन के तौर पर स्वीकार करना है, तो हमें सिर्फ एक चीज और करनी होती है, वो होता है एप्रिसिएशन, यानी कि उन चीजों की तरफ देखना, उन चीजों की एक्नॉलेजमेंट करना कि इस व्यक्ति में ऐसे गुण हैं। चलो ठीक है, कोई व्यक्ति देख नहीं सकता लेकिन वो गा बहुत अच्छा सकता है, कोई व्यक्ति चल नहीं सकता लेकिन उसके हाथों में जादू है, वो पेंट कर सकता है, कोई व्यक्ति स्कूल कॉलेज की पढ़ाई जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है वो बहुत अच्छी नहीं कर सकता लेकिन वो किसी व्यक्ति का काम

0: हूँ, बहुत अच्छे से समझ करके उसको बहुत तन्मयता से सीख सकता है। ये तब हो पाएगा जब हम उसे एज इट इज स्वीकार करेंगे, हम उसमें शर्तें नहीं रखेंगे कि नहीं अगर ये व्यक्ति इतना पढ़ सकता है हम तभी इसको उचित, अच्छा और योग्य मानेंगे, अगर ये नहीं कर पा रहा है तो इसे हम इतना योग्य नहीं मानेंगे। तीसरा है, एक बार आपको अगर ये बात समझ में आ जाती है कि आप उस व्यक्ति के किसी हुनर को, उसके किसी गुण को पहचान लेते हैं, तो उस व्यक्ति के उस गुण को अप्लाई करवाना शुरू कर दीजिए, एप्लीकेशन फॉर दैट, यानी उसको उस क्षेत्र में बढ़ावा दीजिए, उसी तरह की ट्रेनिंग दीजिए। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसकी बौद्धिक क्षमता उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर हम उसे स्वीकार करेंगे तो भावनात्मक दिव्यांगता भी होती है, एक मानसिक दिव्यांगता तो है जिसमें बौद्धिक क्षमता की बात करते हैं कि कोई बच्चा है उसकी आयु 12 साल है लेकिन मानसिक आयु उसकी 4 साल है, तो अगर ऐसे स्थिति में हम उस बच्चे का जो भावनात्मक पक्ष है उसको हमने बहुत ही ज्यादा दिव्यांग कर दिया है कि फिर वो अपने बारे में मानने लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो प्रयास भी नहीं करता है, धीरे धीरे वो एक डिप्रेशन, हताशा में ढलता चला जाता है। मैंने कई बार देखा है कि बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है क्योंकि उनकी बौद्धिक क्षमता उतनी अच्छी नहीं है, स्कूल में, घर में, बाकी जगहों पर बहुत ज्यादा दबाव हो रहा है, उसके अलावा उनके परिवारजनों को, विशेषकर माओं को बहुत ज्यादा तनाव और दबाव झेलना पड़ता है। अक्सर क्या होता है कि हम देखते हैं माएं या और भी लोग जो परिवार में देख रहे हैं वो इतना ज्यादा प्रेशर में होते हैं, उस बच्चे के साथ उन्हें डील करना बहुत पड़ता है, उसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर सकते हैं, कईयों को अपना करियर छोड़ना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम स्वीकार्यता बढ़ाते हैं अपनी तो हम रास्ते खोज लेते हैं। जैसे मैंने कई माओं को मोटिवेट भी किया है और कई माओं को हमने देखा भी है कि वो क्या करते हैं, जनरली वहां पहुंच जाते हैं कि अच्छा ठीक है मेरे बच्चे को ये समस्या है तो हम इससे संबंधित कोई कोर्स कर लेते हैं, और भारत सरकार ने हमारे यहाँ इतनी सुविधा दे दी है कि हम कभी भी किसी भी आयु में अपनी पढ़ाई या किसी स्किल को सीख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो केवल अपना बच्चा ही नहीं देख पाती है, और भी बच्चों को स्वीकार्यता दिला पाती, जिसकी वजह से उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो बढ़ जाता है और उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है, जिसका रिफ्लेक्शन हम उनके बच्चे में देख सकते हैं। सामाजिक तौर पर दो तीन चीजें हैं जिसमें हम कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म से अगर बचेंगे तो हम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य या दिव्यांग व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। तीन चीजें करनी है और दो बिल्कुल नहीं करनी है। क्या करना है? एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द स्किल्स। और क्या नहीं करना है सामाजिक तौर पर? कंपैरिजन कि नहीं नहीं मेरा बड़ा बच्चा तो अच्छा कर लेता था, ये नहीं कर पाता है, या घर में चार बच्चे हैं तो ये तो बिल्कुल बुद्धू है, ये बिल्कुल बेकार है, तुम तो कोई काम के नहीं हो, ये कंपैरिजन नहीं करेंगे। और क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे कि तुम रहने दो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारा कोई काम नहीं है, ये तुमने कैसे कर दिया है, तुमने कैसे क्यों किया। तो अगर हम ये कंपैरिजन क्रिटिसिज्म बंद कर देंगे तो धीरे धीरे हम उन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं। बौद्धिक दिव्यांगता 4 श्रेणियों की होती है। उससे पहले मैं बता दूं कि एक सामान्य व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि या IQ है वो होती है 90 से 110 के बीच में। इसके बाद जो उनसे हल्की श्रेणी होती है उनकी IQ होता है, वो होता है, जिनको हम बॉर्डर लाइन कहते हैं, उनका होता है 75 से 90 तक। इसके पहले माइल्ड रिटार्डेड होते हैं, इनका 60 से 75 होता है IQ। और इसके बाद होते हैं मॉडरेट, जिनका 40 से 60 होता है। फिर सीवियर आते हैं, जिनका 20 से 40 IQ होता है। और प्रोफाउंड सबसे बाद में आते हैं, जो कस्टोडियल ग्रुप कहते हैं, जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उसकी मानसिक क्षमता 20 से कम होती है। तो ये हमारे कैटेगरीज हैं, इनका निर्धारण एक सुप्रशिक्षित चिकित्सा मनोवैज्ञानिक कर सकता है हमारे यहाँ, जो कि उत्तर प्रदेश में विशेषकर हर जिले के जो सरकारी अस्पताल में एक मानसिक स्वास्थ्य विभाग होता है, और उसमें बच्चा हम जा करके उनके IQ का असेसमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक और भावनात्मक पहलू। अभी आप डॉक्टर अल्पना रस्तोगी से ये वार्ता सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का संकल्प कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से।

कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म जीवन मृत्यु का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, स्वर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के हैं।

और अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर का गाया फिल्म चुपके चुपके का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत SD बर्मन का है।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर का गाया फिल्म आंखें का ये गीत। इसके साथ ही आज का चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक झनकार। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं आराधना राठौर और साथी। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं आपके गाए इस चौमासे के साथ।

लोक झंकार कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से सुन रहे हैं। आज कलाकार हैं आराधना राठौर और साथी, जिनसे आप सुन रहे हैं कुछ अवधि लोकगीत। अब सुनिए कंछेदन।

लोक झनकार कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आराधना राठौर व साथी के आवाज में ये जीवनार, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं इन्हीं की आवाज में बारहमासा।

अभी आप आराधना राठौर व साथी की आवाज़ में ये नकटा सुन रहे थे। अब आज का लोक झनकार कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्धविराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि इस निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए

0: की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी पूरे देश में सिर्फ एक ही दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों से बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। श्री धामी ने तीर्थयात्रियों से स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों की खरीद करके स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील की। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रमुख पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता परियोजना ICMR माइंड्स ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। ये पुरस्कार केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूह में संस्थागत नियंत्रणता और सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अस्मरणीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात 1:30 बजे ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा। वहीं से पहले फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 और मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। ICC वोमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले फाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे शाम 7:31 से 8:45 तक, रात्रि 9:30 से 11 बजे तक और रात्रि 11:10 से मैच की समाप्ति तक, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग अब से थोड़ी देर में शाम 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम का समय होगा शाम 5:45 पर, जिसमें आज नई सुबह के लोग के अंतर्गत सुनिएगा बदलाव के बाजीगर युवा, जिन्होंने तस्वीर बदल दी, अमता की ओबी पर आधारित ये कार्यक्रम। लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6

बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे लोक भाषा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे मनोज कुमार अवस्थी, सुखदेव, प्रदीप सारंग और कार्यक्रम का संचालन करेंगे डॉक्टर संत शरण तिवारी संत। खेती किसानी कार्यक्रम होगा शाम 6:50 पर, जिसमें आज राम प्रवेश मौर्य से सुनिएगा सब्जी उत्पादन में उनकी सफलता की कहानी। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसके अलावा आप सुनेंगे उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। संकलन है ओम प्रकाश का और प्रस्तुति है डॉक्टर सुशील कुमार राय की। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। और आइए अब आपको जानकारी देते हैं कल यानी 6 जुलाई 2026 को आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। जिले की हलचल आप सुनते हैं हर रोज प्रातः 9:15 पर। कल सुनिएगा बागपत और चित्रकूट जिलों की हलचल। उर्दू कार्यक्रम होगा सुबह 9:30 पर, जिसमें कल समाज फरमाइएगा गुफ्तगु, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। मेहमान होंगे अरूबा मुमताज चार्टर्ड अकाउंटेंट, शरीके गुफ्तगु होंगे सैयद मोहम्मद उमैर, पेशकश आसिफ इकबाल की होगी। कृषि चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 6:05 पर सुनिएगा आम के बागों में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। जानकारी देंगे डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र। आपसे भेंट की है डॉक्टर सुशील कुमार राय ने। कल की स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में प्रातः 7:00 सुनिएगा जरूरी है पराबैंगनी सुरक्षा। जानकारी देंगी नीना सोनकर। ऋषिकेश गांगुर्डे का ख्याल गायन हम आपको सुनवाएंगे। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रातः 7:31 पर और रात्रि 10:30 पर। पूजा तोमर के गाए अवधि लोकगीतों का आनंद लीजिएगा लोक रंग कार्यक्रम में कल प्रातः 9:50 पर और लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर। ज्ञानवती दीक्षित की वार्ता प्रकृति के रंग हरियाली के संग हम आपको सुनवाएंगे घर आंगन कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर। खरीफ में सब्जी उत्पादन पर कौशल कुमार नीरज से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता आप सुन सकेंगे विज्ञान और किसान कार्यक्रम में कल दिन में 2:30 पर। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम का समय होगा शाम 5:45 पर, जिसमें संकल्प वाणी @1942 के अंतर्गत सुनिएगा अमृता की ओबी पर आधारित कार्यक्रम नमामि गंगे जनमन का महाअभियान। डेंगू बुखार कारण और निवारण पर डॉक्टर सतीश कुमार से रियाज अहमद की भेंटवार्ता सुनिएगा कल के लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर। बरसात में पशुओं की बीमारियां कारण और निवारण, इस विषय पर डॉक्टर जयकेश कुमार पांडे से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता सुनिएगा खेती किसानी कार्यक्रम में कल शाम 6:50 पर। स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम का समय होगा शाम 7:31 पर, जिसमें कल आप सुनेंगे गट हेल्थ और हमारा इम्यून सिस्टम डॉक्टर पूनम तिवारी की ये वार्ता। और इसके अलावा आप सुनेंगे वार्ता पेन किलर को कहें ना फिजियोथेरेपी को हाँ, वार्ताकार होंगे संजय यादव। हिंदी कार्यक्रम होगा कल रात 8:00। प्रियंका श्रीवास्तव के गाए भजनों का आनंद लीजिएगा सुगम संगीत कार्यक्रम में कल रात 8:10 पर। कल रात 10:00 श्रृंखला नाटक में सुनिएगा सूखे के बीज, लेखक हैं धीरज नाथ त्रिपाठी, संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग है कीर्ति श्रीवास्तव का और निर्देशक हैं अतीश श्रीवास्तव। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग।

नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवा तरंग में। और मुझे तो आप पहचान ही गए होंगे, मैं हूं आपकी रेडियो

साथी सुरभि, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज संडे के दिन आप लोगों का बहुत ही बेहतर बीता होगा और आप लोगों ने इस संडे को बहुत ही एंजॉय किया होगा। अच्छा दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो जून का महीना है, ये जो गर्मियां चल रही हैं, इसमें कौन कौन से फ्रूट्स आपको पसंद हैं, तो आप कहेंगे भाई सुरभि कैसी बात करती हो, इस वक्त तो जो भी फ्रूट्स हैं सब मज़ेदार ही हैं, अब बात कर लें तो वो पीले रसीले आमों की या फिर वो जामुनी, कम काले रंग के जामुनों की जिनका स्वाद बड़ा ही खट्टा मीठा होता है और वो अपने थोड़े से रंग को जुबान पे भी छोड़ जाते हैं, स्वाद ही नहीं रंग भी छोड़ जाते हैं जामुन। और इसके साथ ही अमरूद भी आप बहुत पसंद हैं, और एक है आपका खजूर साथियों जी। जब कभी आप मामा के यहाँ या दादा दादी के यहाँ गाँव में जाइए तो वहाँ अभी गर्मियों में खजूर भी आपको मिलेंगे। तो इतने सारे फल हैं आप लोगों के पसंद में, मुझे लगता है आप सभी को ये सब पसंद होंगे। दोस्तों, मुझे भी याद है वो आम का पेड़, जब गर्मी की छुट्टियां जब शुरू होती थी तो हम सभी भाई बहन सुबह सुबह उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाते थे, कभी कच्चे आम चुनते थे, कभी गिरी हुई अमियां बटोरते थे और उसे नमक के साथ लगा के चटकारे लेते थे, खाते थे, और कभी उसकी घनी छाँव में बैठकर छुपन छुपाई, पौसम पा जैसे गेम्स खेलते थे। और जब बरसात की पहली फुहार पड़ती थी तो पत्तों से टपकती बूंदों को देखकर लगता था जैसे कोई प्रकृति कोई मधुर गीत सुन गा रही हो, और गीत तो गाती थी कोयल भी। उसी आम के पेड़ पर बैठकर जब कोयल कू कू करती थी तो दोस्तों याद होगा इसमें भी हम लोगों ने एक छोटा सा खेल बना रखा था, हम भी पीछे से उसके कू कू करते थे और कोयल हम लोगों को इस बात की प्रतिक्रिया भी देती थी अपनी आवाज़ में, और ये गेम अपने आप में ही बड़ा मज़ेदार हो जाया करता था। और जब आंधी आती थी या बहुत तेज़ हवा चलती थी तो याद है कैसे वो आम पके हुए गिरते थे और हम लोग उसको बटोरते थे, वाह क्या यादें हैं साथियों। उस वक्त एहसास ही नहीं हुआ कि ये पेड़ सिर्फ आम नहीं दे रहा है, सिर्फ फल नहीं दे रहा है, बल्कि वो यादें दे रहा है जो जीवन भर हमारे हृदय में बसी हुई हैं। साथियों, मुझे यकीन है कि आप सभी के पास भी ऐसी ही यादें होंगी। दोस्तों, ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हम लोग वन महोत्सव मना रहे हैं, और ज़रूरी है हमारे पर्यावरण के लिए भी कि हम पेड़ों के विषय में बात करें, चर्चा करें, और ना सिर्फ चर्चा करें बल्कि एक्शन भी लें, पेड़ लगाएं। और जब पेड़ लगाने की बात आती है तो फलदार वृक्ष साथियों बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम फलदार वृक्ष लगाएं, क्योंकि साथियों जब हम फलदार वृक्ष लगाते हैं तो हम केवल एक पौधा नहीं लगाते बल्कि आने वाले वर्षों के लिए स्वस्थ पर्यावरण और खुशहाली का बीज बोते हैं। एक आम का पेड़ वर्षों तक फल देता है, एक आंवले का वृक्ष पूरे पर्यावरण को पोषण दे सकता है, नींबू, अमरूद, जामुन, बेल, सहजन, कटहल और पपीता जैसे वृक्ष न केवल स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। युवा साथियों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम प्राकृतिक भोजन से दूर होते जा रहे हैं। बाजार के पैकेट बंद खाद्य पदार्थों की जगह अगर हम अपने घर या खेत के ही ताज़ा फल खाएं तो इससे बेहतर क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा। और दोस्तों, यकीन मानिए जो मज़ा पेड़ से फल तोड़कर खाने में है वो यूं बाज़ार से फल लाकर खाने में नहीं है, ना वो स्वाद है, ना मज़ा है, और ना ही वो ऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिशंस हमें मिल पाते हैं जो हम एक प्राकृतिक तरीके से फलों को खा कर पाते हैं। दोस्तों, फलदार वृक्ष आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी है। गांव में कई परिवार अपने बगीचों से अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं, तो जो हमारे किसान युवा साथी हैं वो इसमें भी अपना एक जो बागवानी का जो खेती है उसमें अपना करियर भी देख सकते हैं। आज बागवानी रोजगार और स्वरोजगार का भी एक मजबूत माध्यम बन रही है। लेकिन एक बात साथियों हमेशा याद रखिए, पेड़ लगाना आसान है लेकिन उसे बड़ा बनाना एक जिम्मेदारी है। जिस तरह एक बच्चे को बड़ा होने में समय, देखभाल और स्नेह चाहिए, उसी तरह पौधे को भी नियमित पानी, खाद और सुरक्षा, प्यार की ज़रूरत होती है। दोस्तों, पेड़ कभी अपने लिए नहीं जीते, वे धूप खुद सहते हैं और छाया दूसरों को।

देते हैं। पत्थर खाने के बाद भी मीठे फल ही पेड़ लौटाते हैं। शायद इसीलिए प्रकृति हमें निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा पाठ पेड़ों से ही सिखाती है। आज जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान और घटती हरियाली हम सभी के सामने चुनौती बन चुके हैं। ऐसे में हर समय लगता है कि हमारे पर्यावरण के लिए एक संकट आ रहा है। क्या चाहिए? ऐसे में ज़रूरी है कि एक पेड़ हम ज़रूर लगाएं। हर लगाया गया फलदार वृक्ष आने वाली पीढ़ी

में लगता है कि हमारे पर्यावरण के लिए एक संकट आ रहा है, क्या चाहिए? ऐसे में ज़रूरी है कि एक पेड़ हम ज़रूर लगाएं। हर लगाया गया फलदार वृक्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की एक नई किरण है। यदि आपके घर में आंगन है तो एक फलदार पौधा ज़रूर लगाइए। यदि जगह कम है तो बड़े गमले में नींबू, अनार, अमरूद जैसे पौधे भी लगाए जा सकते हैं। और यदि आप गांव में रहते हैं तो खेत की मेढ़ों पर फलदार वृक्ष लगाइए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपने विद्यालय या महाविद्यालय में वृक्षारोपण अभियान का हिस्सा भी बनिए। जी साथियों, अब आपके पास मैंने कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा है बहाना बनाने का, तो साथियों बिल्कुल भी बहाना मत बनाइए या कोई भी एक्सक्यूज़ मत ढूंढिए। बस एक फलदार वृक्ष अपने गमले में या अपने एक बाहर जो खुली हुई जगह है या खेत है वहाँ पर लगाइए, फल खाइए, ताज़ी हवा खाइए। साथियों, हो सकता है आज लगाया गया वही पौधा कल किसी राहगीर को छाया दे, किसी पक्षी का घर बने या किसी बच्चे की बचपन की सबसे प्यारी याद बन जाए। दोस्तों, जब वर्षों बाद आपके बच्चे या पोते उस पेड़ से फल तोड़ेंगे तो शायद वे गर्व से कहेंगे कि ये पेड़ हमारे घर में दादा दादी या मम्मी पापा ने लगाया था। और यकीन मानिए साथियों कि इससे बड़ी विरासत शायद कोई नहीं हो सकती है। पेड़ लगाना एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है साथियों। तो आइए आज युवा तरंग के माध्यम से हम संकल्प लें कि हर वर्ष कम से कम एक फलदार वृक्ष लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। याद रखिए साथियों, पेड़ लगाना प्रकृति को दिया गया सबसे सुंदर उपहार है और फलदार वृक्ष लगाना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेम की सबसे मीठी सौगात है। तो इसी प्यारे संदेश के साथ आइए सुनते हैं ये गीत।

0: तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ये गीत ज़रूर एंजॉय किया होगा। दोस्तों, अब वक्त हो चुका है कार्यक्रम में आप सभी को एक भेंट वार्ता सुनाने का। दोस्तों, आज आप इस वार्ता के ज़रिए भ्रमण करेंगे वन्य जीवों की अद्भुत दुनिया के विषय में। भेंट करता है आज़ाद जी, और जिनसे वार्ता की है श्री नगेंद्र सिंह रघुवंशी जी ने। आइए सुनते हैं।
1: वनों का आच्छादन घटता हुआ जो हमारे बीच है, यह एक सोचनीय विषय है। कारण यह है कि हमारी जनसंख्या तो बढ़ रही है और इसी बढ़वार को देखते हुए हम जंगलों की ओर अपना रुख कर रहे हैं। जंगलों की कटान पर तमाम तरह के सेमिनार किए गए हैं, तमाम तरह की जागरूकता के लिए प्रेरित किया गया है, लेकिन मजबूरी कहिए या फिर अन्य जो कारण हो सकते हैं, वह काफी कुछ प्रभावित करते हैं वन्य जीवों को। तो वन्य जीवों की जो कुछ स्थिति रही है, वह हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है और इकोलॉजिकल सिस्टम उस पर कितना प्रभाव ये डालता है, इन सब को समझने के लिए टेलीफोन लाइन के माध्यम से ही जुड़ रहे हैं श्री आजाद सिंह, जिन्हें हम बर्डमैन के नाम से जानते हैं।
2: धन्यवाद सर।
1: वन्य जीवों की बात हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहते हैं कि वनों का आच्छादन जो था वह किस स्थिति में है।
2: ग्लोबल रिपोर्ट है कि दुनिया में करीब प्रति व्यक्ति जो पेड़ों की उपलब्धता होनी चाहिए वो करीब 700 प्रति व्यक्ति होना चाहिए, और हमारा जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है वो करीब 28 पेड़ों की है, जब एक आदमी के हिस्से में आता है। तो ये एक बहुत ही शोचनीय विषय है, इसमें सरकार बिल्कुल लगी हुई है, लेकिन जो जन सहयोग की अपेक्षा हम जैसे चिंतक करते हैं वो नहीं मिल पा रहा है। हम तो कहेंगे कि हम अगर स्वार्थी हैं, जैसे मानव समाज सबसे ज्यादा स्वार्थी है प्रकृति में, और कोई स्वार्थी नहीं, तो हम अपना स्वार्थ देखते हुए एटलीस्ट हमारे अगल बगल के जो भी वृक्ष या पौधारोपण किसी ने भी किया है, हम उसकी देखभाल का जिम्मा ले लें, तो ये एक बहुत ही बड़ा काम हो।
1: आजाद जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि वृक्षारोपण किया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास है इसमें, लेकिन एक तथ्य इससे जुड़ा हुआ है जिसे हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, वह यह कि जो भी पौधे अब लगाए जा रहे हैं बिल्कुल वो जंगली हैं, उनके जो फल हैं या फूल हैं वह चिड़िया या फिर जो वन्य जीव हैं उनके लिए उपयोगी नहीं हो पा रहा है, मतलब उसका वो सेवन नहीं कर पा रहे हैं, अपने भरण पोषण के लिए वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पीपल, बरगद, पाकड़ ये सब थे तो उनके बीज को खाते थे, वो हमेशा कहिए कि सालों भर कुछ न कुछ मिलता रहता था, लेकिन अब जो पौधे लग रहे हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं वह कहाँ तक आगे वन्य जीवों के लिए उपयोगी हो पाएगा?
2: उनमें देखिए, खासतौर से आम के पौधे तो ज्यादा नहीं लगे, लेकिन हर जगह एक ये भी सरकार का मिशन रहा है कि हम पीपल, बरगद और पाकड़ ये पेड़ एक साथ लगाएं, जिसको एक हरिशंकरी नाम दिया गया है, और आपकी इस पर भी काम हुआ है, इसका पौधारोपण साथ साथ किया गया है, जो कि हमारे वन्य जीवों के लिए बहुत ही सुखद रहेगा। लेकिन अभी चूंकि इसमें समय लगेगा, जब जंगल एरिया कम होता जा रहा है, तो उसमें जो सबसे बड़ा मुश्किल हुई है आदमी के साथ साथ वो वन्य जीव वन्य पशुओं के लिए हुई, खासतौर से जैसे कि हमारा जो एक पर्यावरण का बहुत ही अभिन्न सहयोगी है कि लगभग कुछ प्रजाति तो एकदम लुप्तप्राय हो गई हैं। इनका है क्या कि जो भी आपको पता है इधर की करीब 15 किलो के आसपास एक गिद्ध का वजन होगा, और जाहिर सी बात है कि इनको फिर घोंसला बनाने के लिए कोई बड़ा वृक्ष चाहिए, तो बड़ा वृक्ष चूंकि कम मिल रहे हैं इसलिए इनका एक कारण ये भी है इनका लुप्तप्राय होने का, इनको नेस्टिंग के लिए जगह नहीं मिलती। अभी जैसे हमारे अवध क्षेत्र में हिमालयन जिफान

0: का जो खासतौर से हमारे ये नेपाल का जो पहाड़ी क्षेत्र है उनका प्रजनन वहां पे होता है, तो वहां से वो लोग अभी विंटर में इधर माइग्रेट करके आएंगे।
1: जी
0: और एक प्रजाति है जो इजिप्शियन वल्चर, वो हमारे अवध क्षेत्र में अब दिखने लगा है। संरक्षण की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण कदम है कि यहाँ पे मैदानी इलाकों में भी इनका जो है प्रजनन शुरू हुआ है। चीते जो है कि इनको घास के मैदान चाहिए, ये शेरों के साथ भी रह लेते हैं। शेर भले ही आपस में कंपटीशन है लेकिन सबका अलग अलग भोजन है, सबकी अलग अलग रिहाइश है। टाइगर है, टाइगर के लिए माना जाता है कि उसको करीब 15 से 20 स्क्वायर किलोमीटर जंगल का रखवाला है, मतलब इतने बड़े क्षेत्र में वो विचरण करता है। इनकी संख्या बढ़ रही है और जो सरकारी प्रयास चल रहे हैं कि हमारा जो है वन क्षेत्र भी बढ़े, ये हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जनता के सहयोग से एक ये सुखद क्षण आएगा, लेकिन अभी समय लगेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि जनता का सहयोग जरूरी है, हम वनों को काटें भी नहीं और जो पौधारोपण हुआ है उनका संरक्षण करें। और वन्य जीवों का खासतौर से जो पक्षी हैं, सांप हैं और जो भी जंगल में और रह रहे हैं, जो भी वन्य प्राणी हैं, उनको बचाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारी ये जैव विविधता का एक बहुत ही अहम कड़ी पक्षी भी है।
1: और आजाद जी, ये सब तो है कि बड़े पशु जैसे कि टाइगर की बात आपने कर दिया या फिर चीते की बात कर दिया, और बड़े पक्षियों में गिद्ध का है, ये बड़े उपयोगी हैं, अपनी जगह इनका महत्व है, लेकिन जो हमारे गांव या फिर नदी के कछार और इसमें पाए जाते थे, सियार है, लोमड़ी है, शाही है, ये सब हुआ करते थे, एक समय था, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी लुप्त होते जा रहे हैं। संभवतः जो आपने अभी इशारा किया कि लोग जंगलों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, या फिर जो उपयोगी जमीन नहीं थी वहां जंगल थे, अब उसको काट काट के लोग अपनी खेती कर रहे हैं। जंगलों की बजाय जो हमारे बीच में है, आस पास है, उनका संरक्षण कैसे हो और क्या स्थिति है, समझते हुए जानना चाहेंगे।
0: उनके लिए हमें पहले तो इन वन्य जीवों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। सांप देखते ही हम सबसे पहले डंडा लेके उसको दौड़ा लेते हैं। हम चाहेंगे कि समाज के लोग हैं वो जागरूक रहें कि यहाँ उत्तर प्रदेश में खासतौर से हमें 3 जहरीले सांपों से बचना है, उसमें एक नाग है, दूसरा करैत है, तीसरा अभी सरयू और घाघरा के कछार क्षेत्र में जो है ये अब रसल वाइपर है। हर सांप हमारे लिए खतरनाक नहीं है, हम डंडा लेके उसके पीछे न पड़े। इनका संरक्षण भी जैव विविधता की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत जरूरी है, क्योंकि सांप अगर कम हो गए तो चूहों की आबादी बढ़ जाएगी और हमारे खासतौर से किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल होगा, किसान क्या सभी के लिए, क्योंकि फिर अन्न दाना जो है वो घर नहीं आ पाएगा। पेस्टिसाइड का उपयोग ना के बराबर करें, अपने फसलों में केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड की बजाय हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ें।
1: इस विविधतापूर्ण संसार में क्या विविधताओं में भी अब कमी आ रही है? अगर आ रही है तो भविष्य के लिए क्या कुछ सचेष्ट होने के लिए व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति को या फिर सरकार को कुछ पहल करने की आवश्यकता है?
0: तो हम यही कहेंगे, जैसे अभी आपने सियार और लोमड़ी की बात की, लोमड़ी तो लुप्त प्राय हो गई है। इनका क्या है कि ये भी जो है हमारे पर्यावरण के बहुत अभिन्न अंग है। वाहन चलाते समय रात में खासतौर से इन वन्य जीवों को जरूर ध्यान में रख के अपना वाहन चलाएं, हम भी सुरक्षित रहें और उनका भी जीवन चक्र पूरा करने में सहयोगी करें। क्योंकि देखिए अब गिद्ध तो कम हो गए, ना के बराबर है, ऐसे में कहीं भी अगर कोई पशु का शव पड़ा है, कुछ है, तो उनको खत्म करने के लिए एक अभिन्न हिस्सा है। ये देखिए कि अगर लोमड़ी होती, कई बार लोगों ने, बच्चों ने खासतौर से वीडियो में देखा होगा कि चूहे का शिकार करती है, या और अचानक बंदरों की संख्या बढ़ गई, उसका कारण यही है कि बंदर इस समय अपने क्षेत्र में वो अपनी खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है, वो प्राकृतिक मृत्यु से मरेगा, अदरवाइज उस पे अंकुश लगाने के लिए कुछ नहीं। जंगल में तो है, जंगल में तेंदुआ हो गया और दूसरे और भी जो हिंसक पशु हैं वो उसको कंट्रोल कर, शहरी आबादी के पास में जो आ गए हैं उनका कोई रोक नहीं। कई बार देखिए कि शहर में तेंदुआ आ जाता है, क्योंकि उनकी रिहाइश कम हो गई है, नए क्षेत्रों की खोज करनी पड़ती है, इसीलिए कई बार वो हमारे बीच में आ जाते हैं, जो कि खतरे का कारण बनते हैं।
1: बिल्कुल, हमको लगता है कि आपने जिन तथ्यों को शामिल किया है, स्पष्ट होता है कि हम लोग जो है जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं, न कि जंगली जानवर हमारे रिहाइश की तरफ आ रहे हैं। वन्य जीव संरक्षण की जो कुछ बात होती है इस खास मौके पर, उसमें आपने जितने तथ्यों को उजागर किया है, उम्मीद करते हैं कि सब लोग इस तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे और वन्य जीवों के प्रति दया का भाव रखते हुए उनके लिए अपने स्तर से कुछ न कुछ योगदान जरूर करेंगे। आजाद साहब, आप हमसे जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, अभी आप श्री आजाद सिंह जी से जानकारी प्राप्त कर रहे थे और आपसे बातचीत की थी डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी जी ने। तो साथियों, निश्चय ही वन्य जीव का अद्भुत संसार है, लेकिन इस संसार बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारा संसार या हमारी दुनिया व्यवस्थागत तरीके से चलती रहे। साथियों, वक्त हो चुका है कार्यक्रम में एक गीत का, आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी सोचा कि जब आप अपने फ़ोन पर हेलो कहते हैं तो वॉइस असिस्टेंट आपकी बात कैसे समझ लेता है, या जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं तो उसे अगला वीडियो कैसे पता चल जाता है कि आपको क्या पसंद आएगा, या जब आप कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं तो कैमरा अपने आप चेहरा कैसे पहचान लेता है, कभी सोचा आपने? दोस्तों, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से संभव है।

जिसे हम लोग आजकल AI कहते हैं। दोस्तों, AI वो तकनीक है जो आज हर जगह है लेकिन अदृश्य है। तो साथियों, ये कोई AI काल्पनिक चीज़ नहीं है या कोई मिस्टर इंडिया नहीं है, ये वो इंजन है जो आज की डिजिटल दुनिया को चला रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, ऑनलाइन एजुकेशन या डिजिटल डॉक्टर। AI हर जगह काम कर रहे हैं साथियों। AI का मतलब अगर हम आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है मशीनों को सोचना और सिखाना। जैसे आप बचपन में सीखते थे कि ये आम है, ये अमरूद है, वैसे ही AI को हजारों लाखों तस्वीरें दिखाकर सिखाया जाता है कि ये बिल्ली है, ये कुत्ता है। जैसे आप गणित के सवाल बार बार करके सीखते हैं, वैसे ही AI भी बार बार डेटा देखकर पैटर्न समझता है और फिर वो खुद निर्णय लेना सीख जाता है, बिना किसी प्रोग्रामर के और बिना किसी इंसान के। अब सोचिए साथियों, जब AI ने आपका काम आधा मिनट में कर दिया है तो क्या आपके पास ज़्यादा समय है, या फिर क्या आप बेरोज़गार हो जाएंगे? कभी सोचा आपने? सोच सकते हैं ऐसा भी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। साथियों, AI तो एक दोधारी तलवार जैसा है, मतलब कि इसके फायदे भी हैं और ये चुनौती भी बन सकता है। देखिए साथियों, AI हमें वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। वो हमारी बोली समझता है, हमारी लिखावट सुधारता है, हमारी तस्वीरें एडिट करता है, और आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं जब AI हर बच्चे का एक पर्सनल ट्यूटर होगा जो हर सवाल का जवाब देगा, हर गलती सुधारेगा। लेकिन साथियों, इसमें चुनौतियाँ ये हैं कि अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या AI हमारी नौकरियाँ छीन लेगा? क्या AI हमारी बातचीत को रिकॉर्ड करेगा, हमारी आदतों का विश्लेषण करेगा और हमें बिना बताए, बिना कंसेंट लिए हमारी आदतों को या हमारे जीवन को प्रभावित करेगा? या फिर क्या कोई AI हमारा डिजिटल चेहरा बनाकर हमारी पहचान चुरा सकता है? तो ये सब जो आपके मन में चुनौतियां हैं दोस्तों, ये सतर्कता है, एक सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि AI खुद कोई समस्या नहीं है। हम उसे कैसे इस्तेमाल करें, इस विषय पे हमें ध्यान देना है। हमारे इंटेंशंस मायने रखते हैं कि AI हमारे लिए वरदान बन सकता है कि अभिशाप बन सकता है। जैसे कि अगर हम AI का इस्तेमाल शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में करें तो ये वरदान है, लेकिन इसी AI का इस्तेमाल अगर हम धोखाधड़ी या किसी को स्टॉक करने में, यानी निगरानी रखने में, या आलस्य के लिए करें, मतलब अपना दिमाग चलाए ही ना, हर सवाल हम AI से पूछ रहे हैं, तो ये हमारे लिए अभिशाप भी बन सकता है। और यहाँ पे युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। वो जिम्मेदारी है कि आज का युवा वही है जो AI का उपयोगकर्ता भी है और कल का निर्माता भी है। तो क्या आप AI को सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करेंगे या जवाब देने के लिए? क्या आप AI को अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए लाएंगे या अपनी सोच को ठप करने के लिए? मुझे तो लगता है साथियों, AI वही है जो हम उसको बनाते हैं। अगर हमने उसे मानवीय मूल्य सिखाए तो वो मानवता की सेवा करेगा, हमें ऐसे सवाल देगा, हमें ऐसे जवाब देगा, ऐसे सुझाव देगा जिससे मानवता की सेवा हो सके। और अगर हमने उससे सिर्फ मुनाफा सिखाया तो हो सकता है वो एक दिन इंसानियत भूल जाए, इंसान को भूल जाए। तो साथियों, आज आपसे एक डिजिटल संकल्प मांगती हूँ कि इस हफ्ते एक AI टूल इस्तेमाल करें, लेकिन ये जानते हुए कि वो काम कैसे करता है। और एक बार AI के, और जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हर जगह पर AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश करिए कि आप AI के बिना कोई काम करें, कलम से लिखें, बिना GPS के रास्ता खोजें, या समझने के लिए तकनीक सहायक है साथियों, अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, फिर वक्त हो चुका है कार्यक्रम में एक गीत का, आइए सुनते हैं गीत।

तो साथियों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब आपसे विदा लिया जाए, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, पेड़ लगाइए। इसी संदेश के साथ अपनी दोस्त सुरभि को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, मेरी प्यारी सहेलियों और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और आपकी होस्ट पारुल, और लेकर हाजिर हूं आपका अपना चहेता शो नई उड़ान। दोस्तों, आज जब मैं सुबह सोकर उठी और अपनी बालकनी में आई तो हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। पत्तों पर रात में गिरी हुई ओस की बूंदें चमक रही थीं और ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति मुझसे मुस्कुराकर कुछ कहना चाहती हो। तभी मुझे याद आया कि जुलाई महीने की शुरुआत हो चुकी है और हमारे देश में जुलाई के पहले हफ्ते को एक बेहद पावन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे राष्ट्रीय उत्सव वन महोत्सव सप्ताह की। ये एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है जिसमें पूरे देश में वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और ग्रहों पर मनुष्यों को ऑक्सीजन प्रदान करने में पेड़ और जंगल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन महोत्सव सप्ताह एक अनुस्मारक है कि हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए और वनों की कटाई को रोकना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण के 3 नियम 3 R को पालन करना चाहिए।

और ये तीन नियम क्या हैं दोस्तों? ये हैं कम करना यानी रिड्यूस, पुनः उपयोग करना यानी रीयूज, और पुनः चक्रण करना यानी रिसाइकिल। इन तीन आर नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। वन महोत्सव दिवस का इतिहास अब आपको बताती हूँ दोस्तों। इसका इतिहास 1947 का है, जब इसे पहली बार पंजाबी वनस्पति शास्त्री MS रंधावा द्वारा 20 से 27 जुलाई तक आयोजित किया गया था। तत्कालीन दिल्ली पुलिस आयुक्त खुर्शीद अहमद खान ने 20 जुलाई 1947 को वन महोत्सव के पहले आयोजन का उद्घाटन किया, जिसमें वनस्पतियों और जीवों पर वनों की कटाई के प्रभाव पर जोर दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू जैसे राष्ट्रीय नेताओं द्वारा एक समृद्ध वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। तब से वन महोत्सव मनाने और पेड़ लगाने की परंपरा चली आ रही है। 1950 में इसे खाद्य और कृषि मंत्री कन्हैयालाल माणिलाल मुंशी द्वारा राष्ट्रीय गतिविधि के रूप में घोषित किया गया था। बाद में इस त्यौहार को जुलाई में पहले सप्ताह में स्थानांतरित कर दिया गया और 1950 में इसका नाम बदलकर वन महोत्सव कर दिया गया। दोस्तों, वन महोत्सव सप्ताह भारत के लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि औद्योगिकीकरण और शहरीकरण दोनों के लिए उन्हें बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। पेड़ खाद्य संस्थानों के उत्पादन में उपयोग करते हैं, उसमें योगदान करते हैं, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं, वायु गुणवत्ता में सुधार करते हैं, जलवायु में सुधार करते हैं, पानी और मिट्टी का संरक्षण करते हैं, वन्य जीवन का समर्थन करते हैं, सूखे को कम करते हैं और मिट्टी के कटाव और प्रदूषण को रोकते हैं। साथियों, जरा सोचिए ये खड़े खड़े कितने सारे काम करते हैं। और अब सोचिए जरा कि अगर हम बात करें एक पौधा अनेक संभावनाएं की, तो कितना सुंदर और गहरा विचार है ना ये। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप जमीन में एक छोटा सा बीज या एक नन्हा पौधा रोपते हैं, तो आप केवल एक पेड़ नहीं लगा रहे होते, बल्कि आप आने वाली पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन, पानी, आजीविका, पंछियों के लिए घर और इस पूरी धरती के लिए एक नया जीवन रोप रहे होते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, जब हम विज्ञान की भाषा में बात करते हैं, तो एक पौधा वास्तव में एक बायोलॉजिकल फैक्ट्री यानी एक जैविक कारखाना है। एक ऐसा कारखाना जो बिना किसी प्रदूषण के, बिना किसी बिजली उपयोग या खर्च के दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज़ें हमें मुफ्त में देता है। जब आप एक पौधा लगाते हैं, तो आप कई तरह की संभावनाओं को जन्म देते हैं। सबसे पहले आती है दोस्तों पर्यावरणीय संभावना। एक पूर्ण विकसित पेड़ एक साल में लगभग 22 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और 4 लोगों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन छोड़ता है। इसके बाद आती है जल संरक्षण की संभावना। पेड़ों की जड़ें स्पंज की तरह काम करती हैं, वो बारिश के पानी को बहने से रोककर जमीन के अंदर भेजती हैं, जिससे भूजल स्तर बढ़ता है और जहां पेड़ होते हैं वहां नदियां कभी नहीं सूखती। इसके साथ ही जुड़ी है आर्थिक और आजीविका की संभावना। एक पौधा जब पेड़ बनता है, तो वो फल, फूल, लकड़ी और औषधियां देता है। हमारे देश के करोड़ों ग्रामीण भाई बहन अपनी आजीविका इन्हीं के पर, वनों पर निर्भर रखते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ दोस्तों कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए पेड़ लगाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा भी है। आज कृषि वानिकी की यानी एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से किसान अपनी फसलों के साथ साथ खेतों की मेड़ पर चंदन या सागौन के पेड़ लगा रहे हैं। जब तक फसलें तैयार होती हैं, तब तक ये पेड़ बड़े होकर उनके लिए एक फिक्स्ड डिपॉजिट का काम करते हैं। और इसके अलावा साथियों, जो सबसे बड़ी संभावना है वो है स्वास्थ्य और मानसिक शांति की। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और एंग्जाइटी एक आम बात हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चिकित्सा विज्ञान में एक जापानी तकनीक है जिसे शिनरिन योकू यानी फॉरेस्ट बेदिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि पेड़ों और प्रकृति के बीच समय बिताना। वैज्ञानिकों ने साबित किया है साथियों कि पेड़ों के बीच केवल 20 मिनट बिताने से हमारे शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कम हो जाते हैं और मानसिक शांति मिलती है। पेड़ हमारे दिमाग के लिए एक प्राकृतिक हीलर की तरह काम करते हैं दोस्तों। तो आज इस वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर मैं आप सभी से वादा चाहती हूँ कि हम इस सप्ताह में अपने हाथों से कम एक पौधा अवश्य लगाएंगे, और सिर्फ लगाएंगे ही नहीं, उसे तब तक पानी और सुरक्षा देंगे जब तक वो खुद एक बड़ा पेड़ ना बन जाए। याद रखिए दोस्तों, पृथ्वी के पास हमारी जरूरतों को पूरा करने

के लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं। अपने बच्चों के जन्मदिन पर या अपने प्रियजनों की याद में एक स्मृति पौधा जरूर लगाएं और इस प्रकृति के सुंदर चित्रों में कुछ रंग भरने में अपना योगदान भी अवश्य दें।

0: दोस्तों, जैसे वृक्षारोपण से धरती को नया जीवन मिलता है, वैसे बदलाव के बाजीगर युवाओं के नवाचारों, प्रगतिशील सोच और साहसिक प्रयासों से समाज को नई दिशा मिलती है। दोनों ही पहल भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, संतुलित और प्रगतिशील वातावरण बनाने का आधार है। हर पौधा आशा का प्रतीक है और हर युवा बदलाव का वाहक है। साथियों, आज के स्थल रिकॉर्डिंग सेगमेंट नई सुबह के लोक श्रृंखला में इसी विषय पर कई युवाओं से चर्चा की हमारी साथी अमिता चित्रांशी ने और हमसे साझा किए उनके विचार। तो आइए जानते हैं कि कैसे आज के युवा हैं बदलाव के बाजीगर।
1: श्रृंखला नई सुबह के लोक, नई सुबह उन्हीं लोगों से बन

0: व्यक्ति है जो अपने काम से दूसरों के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगाते हैं, जो समस्याओं की बात भर नहीं करते बल्कि उनके समाधान का हिस्सा बनते हैं। ऐसे ही बदलाव के बाजीगर युवा हैं हमारे साथ।
1: डिजिटल दौर में ही, इस वक्त के दौर में ही नुक्कड़ नाटक सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है और करने लायक है और उसमें क्षमता है, क्योंकि इस वक्त आप सभी लोग जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। तो सोशल मीडिया चलाते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन है और पल पल में इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। मगर नुक्कड़ नाटक जब सामने होता है और वो जो सामने का कनेक्शन होता है, आप वो मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म होता है
2: जी,
1: और वो आपकी मेमोरी में रह जाती है। तो मुझे लगता है कि इस डिजिटल दौर में नुक्कड़ नाटक का बहुत बड़ा महत्व है।
2: हमेशा हम सोचते हैं कि बदलाव कोई बड़ा व्यक्ति या बड़ा संस्था ही लाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं शुरुआत अभी कर सकती हूँ तो इंतजार क्यों करूँ। अभी वुमेन सेफ्टी के लिए डिफेंस से रिलेटेड हमने बहुत सारे सेशंस किए हैं, बच्चों को स्किल्स डेवलपमेंट के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं उससे मुझे बहुत खुद को सीखने को मिलता है कि बच्चों के अंदर कितनी अलग अलग स्किल्स हैं जिस इनहेंस करने की जरूरत है।
3: आज भी भारत में अधिकतर जो महिलाएं हैं वो बाहर जाने के लिए अक्सर या तो किसी का इंतजार करती हैं या परमिशन का वेट करती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अवसर वो गवा देती हैं, चाहे वो काम को लेकर हो, पढ़ाई को लेकर हो। एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है इंडिया में, सबसे बड़ा ट्रेनर नेटवर्क, जो कि सभी की सब महिलाएं हैं, और 25 से ज्यादा शहरों में आज 20,000 से ज्यादा महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखा चुकी है, और सीखकर चाहे उन्हें काम ही क्यों ना करना हो, इन सारी चीजों में हमारी कंपनी उनकी हेल्प करती है।
4: पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, जो हमारे शव वाहन हैं, वो पूरी तरह से जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क हैं। और कुछ मुट्ठी भर ऐसे बच्चे हैं जिनकी शिक्षा को गोद ले रखा है, ब्लड डोनेशन कैंप निरंतर लगाते हैं।
0: तो इन युवाओं के प्रयास साबित करते हैं कि बदलाव की शुरुआत एक व्यक्ति से होती है, लेकिन उसका असर पूरे समाज तक पहुंचता है। इन्हीं युवाओं की कहानी हमें बताती है कि बदलाव किसी एक बड़े कदम से नहीं बल्कि छोटे छोटे संवेदनशील प्रयासों से शुरू होता है।

0: पहचान।
1: तो आइए मिलते हैं ऐसे ही युवाओं से जो अपने काम, अपने जज्बे और अपनी सोच से सचमुच बदलाव के बाजीगर बन गए हैं। ऐसे ही एक युवा साथी हमारे साथ हैं जो नुक्कड़ नाटक की रचनात्मक कला से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हैं। आइए जानते हैं इनका परिचय।
2: बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत चतुर्वेदी है और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र रह चुका हूँ, वहाँ से डबल मास्टर्स और ग्रेजुएशन कर गया।
3: प्रशांत जी, नुक्कड़ नाटकों से जुड़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
2: अभी तक जी, मैं जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन में गया
3: जी।
2: तो वहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी नुक्कड़ नाटक कर रहे थे जो कि मेरे सीनियर्स थे, और उन लोगों ने मुझको इस सबसे पहले इस नुक्कड़ नाटक के आर्ट के बारे में बताया। एक नेशनल लेवल कंपटीशन होता है नुक्कड़ नाटक के, तो वो उसके लिए प्रिपेयर करते थे, तो वहीं से हमने उस आर्ट को सीखा। फिर हम लोग को समझ में आया कि सिर्फ ये एक पढ़ी लिखी क्राउड और जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की क्राउड तक नहीं रहना चाहिए, अगर इसका माध्यम इतना अच्छा है और इससे इतनी अच्छी सीख मिल रही है और चीजों को इतने अच्छे से, इस मुद्दों को दिखाया जा सकता है, तो इसे जमीनी स्तर से भी जोड़ा जाना चाहिए
3: जी।
2: तो हम लोगों ने फिर खुद से शुरू किया।
3: आप किन सामाजिक मुद्दों पर नुक्कड़ नाटक करते हैं?
2: शुरुआत और सबसे ज्यादा जो इस टॉपिक पे किया है वो महिलाओं से संबंधित थे। मैं भी सबसे पहले जैसे डाउरी डेथ था, घरेलू हिंसा पे बहुत ज्यादा काम किया, फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे काम किया, फिर उसके बाद चाइल्ड अब्यूज पे काम किया। ट्वेल्थ मिशन शक्ति में हम लोगों ने पूरे स्टेट पे काम किया था, उसके बाद फिर हम लोगों ने पुलिस के साथ बहुत सारे काम किए, फिर मेट्रो के साथ किया, अवेयरनेस के फिर खुद से भी करते थे, 10-90 पे हम लोगों ने खुद से करे, बहुत सारे मॉल्स में, लखनऊ के ऑलमोस्ट सारे मॉल्स में हम लोगों ने खुद से करे अवेयरनेस के, ज्यादातर महिलाओं और बच्चों के उसमें करते थे हम लोग। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि किसी तरीके से मुद्दों को बहुत बड़े लेवल तक पहुंचा सकूं, और धीमे धीमे इसकी तरफ मैं अग्रसर भी हूँ, कोशिश करता जा रहा हूँ किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ने की, लोगों तक हम अपने मुद्दे और अपनी आवाज पहुंचा सके।
1: देश की शान ऐसी ही एक और युवा साथी अनन्या शुक्ला हैं हमारे साथ। आइए जानते हैं कि वो किस तरह से सामाजिक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हैं।

0: नमस्ते, मैं अभी एक अप्लाइड साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ आपकी यूनिवर्सिटी में। मेरा जो फाउंडेशन है उसकी शुरुआत मैंने की थी, जहाँ हम बच्चों, युवाओं, महिलाओं और पर्यावरण के लिए अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से काम करते हैं। उसमें मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो, यही मेरा एक इनिशिएटिव है। फ्यूचर रेडी, उसका ये मतलब है हम बच्चों से व्यक्तित्व विकास और महिलाओं के सेफ्टी के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं। स्पेशली
1: ऐसी कौन सी घटना थी जिसने आपको इस काम के लिए प्रेरित किया?
0: मैं जब बड़ी हुई हूँ तो मैंने आसपास के औरतों की जिंदगी देखी है, काफी स्ट्रगलिंग रही है, आसपास वॉयलेंस रहा है हमेशा, तो उससे प्रभावित होके मैंने सोचा कि वुमेन्स के लिए मैं जरूर करूँ। उसके साथ साथ मैं बहुत वॉलेंटियरिंग पहले भी मैंने की है स्लम एरियाज में, जहाँ औरतें घर घर जाके काम करती हैं। वो कई बार जब घर पे लेट आती हैं तो काफी ज्यादा अनसेफ फील करती हैं। इन सब पे हम लोग भी काम करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपके मन में समाज के लिए कुछ करने की इच्छा है तो शुरुआत आज ही करिए। बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। मेरा विश्वास है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक कदम से होती है। अगर हम पहले कदम से डरेंगे तो मंजिल कभी नहीं मिल पाएगी हम लोग।
1: महिला केंद्रित ड्राइविंग स्कूल और कौशल विकास से जुड़ा स्टार्टअप चला रही हैं पावनी खंडेलवाल। आइए जानते हैं कि किस तरह से वो महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने का काम कर रही हैं। सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी।
2: नमस्कार अमिता, और बहुत बहुत धन्यवाद आत्मनिर्भर की कहानी को आपके शो पे फीचर करने के लिए। मैंने जब शुरुआत करी थी 2017 में, तो बहुत छोटी सी शुरुआत थी। आत्मनिर्भर जैसा कि शब्द है, हमारा प्रयास है कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएं, और हमारा विश्वास है कि एक महिला की जो आत्मनिर्भर बनने की जर्नी है, जो सफर है, वो शुरू होता है जब वो अपने घर से खुद से बाहर निकल पाती है। इंडिया में लेकिन हम देखते हैं कि एक जो सबसे अवेलेबल चीज है, सबसे आसानी से जो हम सबको मिल जाती है चलाने के लिए, वो है स्कूटी। पर दुख की बात यह है कि ज्यादातर महिलाएं, उनको साइकिल भी चलानी नहीं आती, और इसीलिए स्कूटी चलाना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत महिलाओं के लिए तो एक सपना होता है जैसे कि वो हवाई जहाज हो कोई। और इन महिलाओं को बहुत डर लगता है सड़कों पर जाने से, और इनको कोई सिखाने वाला नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर पुरुषों को ऐसा लगता है कि अरे स्कूटी ही तो है, स्कूटी सीखना कितनी मुश्किल बात हो सकती है। पर जो महिलाएं हैं जिसने कभी साइकिल भी नहीं चलाई, जिसने सड़कों पे अकेले कभी गई नहीं, जिसको ट्रैफिक से डर लगता है, जिसको बैलेंसिंग नहीं आती, जिसको एक स्कूटी भी बहुत भारी लगती है, उसको एक प्रोफेशनल इंटरवेंशन चाहिए होता है, एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए होती है, और वो किसी भी पुरुष के साथ आसानी से सीखने में कंफर्टेबल भी नहीं होती। तो इसीलिए आत्मनिर्भर ने महिला ट्रेनरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है, इंडिया में सबसे बड़ा ट्रेनर नेटवर्क, जो कि सभी की सब महिलाएं हैं, और 25 से ज्यादा शहरों में आज 20,000 से ज्यादा महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखा चुकी है। और स्कूटी चलाने के साथ साथ उनको लाइसेंस बनवाने में, उनको स्कूटी दिलवाने में, चाहे उनको रेंट पे लेनी हो, खरीदनी हो, और सीखकर चाहे उन्हें काम ही क्यों ना करना हो, इन सारी चीजों में हमारी कंपनी उनकी हेल्प करती है।
3: तो आपने जैसा बताया कि आपका स्टार्टअप दो पहिया वाहन चलाने का प्रशिक्षण देता है, खासकर महिलाओं और लड़कियों को, तो इसके अलावा स्टार्टअप के थ्रू रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपका स्टार्टअप और क्या कर रहा है?
2: इस तरह की जो महिलाएं हैं जिनको रोजगार की आवश्यकता है और जिनके पास बहुत ज्यादा स्किल नहीं है, उनको हम इस तरह के रोजगार दिलवाने में मदद करते हैं। पर एज अ फूड डिलीवरी, एज अ बाइक टैक्सी, जब वो ये काम करती है तो वो सुबह के कुछ घंटे काम कर सकती हैं, अपने बच्चों को देख सकती हैं, घर को देख सकती हैं, फिर कुछ घंटे काम करके वापस से अपने घर को संभाल सकती हैं। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी और इनकम अपॉर्चुनिटी जो महिलाएं देख रही हैं, उनको हम स्कूटी सिखाकर, स्कूटी दिलवाकर और अलग अलग तरह की जॉब्स प्रोवाइड कराकर उनकी रोजगार में मदद कर सकते हैं। युवाओं के लिए मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि अगर आपको भी ऐसा कोई चीज लगती है, जो आपको लगता है कि ये बदलाव आना चाहिए हमारे समाज में, तो उस बदलाव के आने का इंतजार ना करें, उस बदलाव को खुद लीड करें। उस बदलाव को लाने में कैसे प्ले कर सकते हैं वो सोचिए, और उस बदलाव को खुद लाने का प्रयास करिए।
1: तो भाई, हर युवा के पास कोई ना कोई हुनर होता है। अगर हम अपने हुनर का इस्तेमाल

0: इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए करें तो वही असली बदलाव है। और आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे समाज सेवी वर्षा वर्मा से, जिनका कहना है कि इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है जरूरत के समय किसी का हाथ थाम लेना। एम्बुलेंस सेवा, निशुल्क शव वाहन सेवा का ये सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे उनके ये प्रयास लोगों के जीवन में उम्मीद और संवेदना का संबल बन रहे हैं, सुनते हैं।
1: मेरी डियर सिस्टर थी, जो हम दोनों ट्विंस की तरह ही कहलाते थे, जब उसकी डेथ एक एक्सीडेंट में हुई और हमारी रात का 3:30 बजा हुआ था, 5:30-6 बजे तक हमारी मदद किसी ने नहीं की थी। हमारी कॉलेज गाड़ी थी और लगभग उस गाड़ी में जितने लोग थे बेहोश हो गए थे और नीतू जो मेरी सिस्टर थी उसकी डेथ हो गई थी। एक वो वाक्या और एक कोरोना के समय पे हमारी बेस्ट फ्रेंड ने जब आखिरी सांस ली तो उसके लिए गाड़ी नहीं अरेंज हो पा रही थी। शव वाहन वाले जो है छोटी छोटी दूरी के लिए बहुत मोटी रकम मांग रहे थे। तो ये दो घटनाएं ऐसी रही कि जीवन में मुझे कुछ अलग, और मुझे ये एहसास हुआ कि जिन चीजों को मैंने भुगता है हमारी कोशिश ये रहेगी कि इन परेशानियों को कोई और ना भुगते। इसलिए सेवाएं हमने जो शव वाहन वाली निःशुल्क लगवाई थी कोरोना के समय पे, तो 7 गाड़ियां लगभग थी और सिर्फ लखनऊ में काम कर रही थी। अब 3 गाड़ियां हमारी खुद की है, रेंट की कोई भी गाड़ी नहीं है और पूरे यूपी को कवर करती है, निःशुल्क कवर करती है। ब्लड डोनेशन कैंप निरंतर लगाते हैं ताकि साल में हमारा टारगेट रहता है कि लगभग 200 यूनिट ब्लड PGI और लखनऊ मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े संस्थानों में ब्लड जाए, ताकि थैलेसीमिया जैसे या एक्यूट ल्यूकेमिया जैसे पेशेंट हमारे ब्लड की वजह से दम ना तोड़ पाए। तो ये छोटी छोटी सेवाएं हैं। अस्पतालों में सेशन चलते हैं हेल्थ एंड हाइजीन के, कैंसर हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, कुछ बच्चों को हंसाने की कोशिश रहती है जो कैंसर से जूझ रहे होते हैं। तो बस ये सेवाएं हैं जिनके तहत सोचती हूँ कि मैं भी जिंदगी जी पाऊँ और इन्हीं सेवाओं के जरिए थोड़ा सा कुछ लोगों तक मदद पहुँच। और जीवन में चाहे जितना आप पैसा कमा लीजिए, समाज सेवा के लिए थोड़ा सा अपना समय और थोड़ा सा अपना पैसा जरूर लगाइए।
0: भाई जब युवा सेवा को अपना संकल्प बना लेते हैं तभी समाज में सच्चा परिवर्तन आता है। यदि हम अपने समय का थोड़ा हिस्सा समाज को दें तो वही बदलाव की शुरुआत है। हमने ऐसे युवाओं से मुलाकात की जिन्होंने ये साबित किया है कि बदलाव की शुरुआत किसी बड़े मंच या बड़े संसाधन से नहीं बल्कि एक अच्छे विचार और उसे सच करने के साहस से होती है। यही लोग हैं नई सुबह के लोग, क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए नहीं जीते बल्कि दूसरों के जीवन में भी उम्मीद की एक नई किरण जगाते हैं। यही छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े सामाजिक बदलाव की नींव रखते हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि हम सभी भी अपने हिस्से का एक छोटा सा बदलाव जरूर करेंगे, दीजिए अनुमति अमिता को। नमस्कार।

तो साथियों, हमने सुना कि कैसे अपनी आम जिंदगी में किसी समस्या को झेलते हुए, फेस करते हुए लोगों ने इतने नए आइडियाज निकाले और उस पर काम किया और सिर्फ अपनी आजीविका नहीं कमा रहे हैं बल्कि समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, उसे और बेहतर बना रहे हैं। तो आप भी और हम भी, हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं कुछ नया, जिससे छोटा ही सही लेकिन हम दूसरों के लिए कुछ बदलाव ला सके। और दोस्तों, अब मैं आपके साथ साझा करती हूँ कुछ विकास समाचार और रोजगार समाचार, जिससे हमें पता चलेगा कि देश में हमारे दिन प्रतिदिन कैसे विकास हो रहा है और फिर शायद आपकी भी मैं रोजगार पाने में कुछ मदद कर सकूं। तो दोस्तों, मेट्रो और नेशनल हाईवे विस्तार के लिए देश के प्रमुख टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को जोड़ने के लिए एक नए हाईवे कॉरिडोर पर काम तेज कर दिया गया है। कई शहरों में मेट्रो नेटवर्क के अगले फेज के विस्तार को लेकर नई बजट मंजूरियां मिली हैं और स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत चल रहे इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स और डिजिटल गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स को आम जनता के लिए लाइव किया जा रहा है, जिससे नगर पालिका की सेवाएं पेपरलेस और आसान हो सकेंगी। ग्रामीण विकास और रोजगार के लिए भी सरकार बहुत योजनाएं ला रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए खादी एवं ग्राम उद्योग और कौशल विकास मंत्रालयों के तहत नए ट्रेनिंग कैंप्स शुरू किए गए हैं।

युवाओं को उनकी स्किलिंग के आधार पर यानी उनके हुनर के आधार पर स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जोड़ा जा रहा है। कृषि बुनियादी ढांचा और मजबूत करने के लिए और एग्रोटेक और कोल्ड स्टोरेज चेन के विस्तार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नए वेयरहाउस बनाने का काम तेजी से चल रहा है ताकि किसानों की फसल खराब ना हो और उन्हें सही दाम मिल सके। वहीं रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार सोलर रूफटॉप पर लगातार जोर दे रही है। सरकार की नई सोलर योजनाओं के तहत घरेलू और व्यावसायिक स्तर पर हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाने के लिए सब्सिडी की प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया गया है। इससे बिजली का बोझ कम करने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में तेजी आई है। और साथियों, वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने की रफ्तार बढ़ाई गई है। ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में ई संजीवनी के जरिए अब बड़े डॉक्टरों की सलाह लेना और भी सुलभ हो गया है। और अब दोस्तों, कुछ रोजगार समाचार। कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। केंद्रीय सचिवालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो और विदेशी मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर आवेदन मांगे गए हैं। वहीं आप केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी CGST, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय में इंस्पेक्टर के पद पर आवेदन कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के पद पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और राष्ट्रीय जांच एजेंसी में भर्तियां निकली हैं। सभी पदों पर आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है और कुछ पदों पर अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष भी है। इच्छुक उम्मीदवार कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, देश के विभिन्न राज्यों में संचालित ग्रामीण बैंकों में भी करियर बनाने का एक बेहतरीन अवसर है। उत्तर प्रदेश में आर्यव्रत बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक जैसे संस्थानों में इसके तहत नियुक्तियां होती हैं। प्रमुख पद जो निकाले गए हैं वो है ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्तियां निकली हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 वर्ष और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से 30 वर्ष आयु सीमा नियत है। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर ऑनलाइन लिंक के माध्यम से आवेदन भरा जा सकता है। परीक्षा शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन ही करना होगा। और अब उसके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ आप आधिकारिक वेबसाइट से ही लें। दोस्तों, अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि मुझे आपसे लेना होगा इजाज़त, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेजें ताकि हम कार्यक्रम को और भी बेहतर बना सकें। आप हमें अपनी मेल्स भेज सकते हैं nayiudan@lko.gmail.com पर और पत्र लिख सकते हैं नई उड़ान द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी लखनऊ 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ। तो आज के इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त पारुल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप हमारा कार्यक्रम नई उड़ान सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ के साथ साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप और डीटीएच पर भी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए।
2: फिल्मी दुनिया का एक बेहद चमकीला स्टार
1: विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क

0: देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
3: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

0: घर आंगन में है बाहर कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
2: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
1: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर और 24 घंटे डीटीएच और आपके मोबाइल पर। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: पंचो जय हिंद। राजेश भैया।
1: हाँ राजेश भैया,
0: देखो जब बात आवत है अपने
1: स्वास्थ्य की,
0: स्वास्थ्य के, तो अपन जो सरकार है उनका ये प्रयास है कि हम पंच जो हैं कि जो समस्या आवत है, पैसा कौड़ी नहीं रहा था जब दवाई लिए जाई थे तब ये सब परेशानी आवत है, तो ये सब जो तमाम परेशानी है यह का जब देखा करत है ना, तो इसलिए तमाम तरीके का ऐसी ऐसी योजना चलावा करत है कि हम सबका जो है कनो मिना के परेशानी ना हुए।
1: बिल्कुल भैया सही कहो, परेशानी ना हो तो ये लिए अपनी देखो सरकार हमेशा तत्पर रहा थे कि कौनो न कौनो योजना से जोड़ देते कि अपने पंच होते लाभ ले सकें और अच्छे से अच्छे फायदा उठा सकें।
0: बिल्कुल, कहे से कि देखो जब हम पंच अस्पताल जाए थे तो अस्पताल के कोनो खान मान लियो गयन, तो डॉक्टर से लिखवाए लिखें दवाई, मूल जब दवाई लिए मेडिकल स्टोर पर जावा जाते हैं तब अपने जेब में जब पैसा नहीं रहा था तो सोचा जाता है कि यार ऐसा है कि महीना भर डॉक्टर साहब लिखे हैं, ऐसा करो खाली हफ्ता भर के लियो और हफ्ता भर के खाए के दवाई बंद कर दियो।
1: बिल्कुल भैया सही, क्यों
0: कहा इसे का होता है कि अपन पूरा इलाज नहीं हो पाते है, तो यही लिए अपन जो सरकार है इसलिए चिंता करत है कि अपन जो स्वास्थ्य है वो खराब ना हो पावे, जौन डॉक्टर लिखत हैं दवाई पूरी मिले, तो यही लिए जो है सस्ती दवाई के निजाम अपन सरकार कर दे है।
1: बिल्कुल भैया सही कहो, कहे से देखो अपन जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं जो तमाम मतलब देश के इधर उधर सब खुले हैं, उनसे कहा है सस्ती दवाई यानी कि 50-90% तक मतलब छूट मिल जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, तो यही वजह से जो है जब भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर जब हम पंच जाए थे तो जौन बाहर दवाई जौन बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोर है हुआ अगर वो 100 रुपये का मिलता है तो ये समझ लियो कि हुआ जो है 200 रुपये में दवाई मिल सकता।
1: बिल्कुल भैया सही कहो, कहे से जब ऐसे मिल जाए तो अपन जो का हाँ जो काम है वो हो जाते है भैया अच्छे से,
0: तो ये तो है ही देखो, लेकिन जब अपन स्वास्थ्य सही रहा था सब कुछ सही रहा था तो मन से अपने आप कविता और गीत निकले लगा।
1: बिल्कुल भैया सही कहो, कहे से जब यही निकलत है तो फिर और अच्छा रहा था, तो यही लिए देखो हम आज लोक भाषा कवि गोष्ठी लेके आए।
0: हाँ तो देखो ये लोक भाषा कवि गोष्ठी जो आप लेके आए हो इमा जो प्रतिभागी कवि गण है वो है।

0: मनोज कुमार अवस्थी, सुखदेव भैया, प्रदीप सारंग भैया और डॉक्टर संत शरण तिवारी संत भैया, और ये जो संचालन भी कार्यक्रम के कर रहे हैं। तो आओ ये कवि गोष्ठी सुना जाए और कविता का आनंद लीन जाए।
1: बिल्कुल भैया,
2: पंचों जय हिंद। आज के लोक भाषा कवि गोष्ठी माँ हम सब आयन है। हमारे साथे मनोज कुमार अवस्थी सुखदेव दादा आए हैं बरछता मानपुर सीतापुर से, प्रदीप सारंग दादा कमरावा बाराबंकी से, और हम डॉक्टर संत शरण तिवारी संत परसपुर गोंडा से आयन है। आओ कविता सुना जाए। सबसे पहले मनोज कुमार अवस्थी सुखदेव दादा से चाहबे कि वह अपन कविता हमें सबका सुनावें।
3: धन्यवाद भैया, हमारी कविता सुनी जाए। लाग आषाढ़ महीना की आवती आवती आवती आई गे बादर। हाँ। बार नमा जसी डाई लगाए हूँ वैसे करेरी के छाई गे बादर। जूड़ी बयारी बहाई सुखदायक

0: बादर हौहरा की हफनी ते बचाई कैसोहन गान तराने हैं बादर घामे ते कत्ती जरी धरती इही दुख कनी के ते जाने हैं बादर और खूबई खुशामदी कीन्ही बयारी तबई मुसुकाने औ माने हैं बादर
1: खूबई
0: खुशामदी कीन्ही बयारी तबई मुसु

0: तेहारे पधारे धरावर आवई बदे उधियाने हैं बादर काली माहिया कलंक की नाही कि साली कराम सयाने हैं बादर
1: बढ़िया है, बढ़िया।
0: काली माहिया कलंक की नाही कि साली कराम सयाने हैं बादर बूंदी परई बरसई फिरी तेज युस्वाचौ नए की पुराने हैं बादर बूंदी परई बरसई फिरी तेज युस्वाचौ नए की पुराने हैं बादर तेरा हकाती कतीनी असारह कहावती को चरितार्थ करेंगे मेड़ बंधाई कई खेतु जोताई कई ती कई लबालब पानी भरेंगे धान के पौध की गुड़ी बंधाई कई खेत के कोने मालाई धरेंगे और पानी में ठाढ़ होई धन्य किसान ई धान की पौध रोपाई करेंगे पानी में ठाढ़ होई धन्य किसान ई धान की पौध रोपाई करेंगे और आम की बाग मा आम चुवई जमुनी तरे जामुन काले परे हैं और हई अध पाक अबई फिरी पाकी हैं जोरन ते अमरूद फरे हैं और झाड़ करौंदन की लाह कई हरी डार मालाग हैं नींबू हरे हैं और ऊपर जाई कई देखे न नाही जाने न आजुई की सर्ग उतरे है और देखो भैया अषाढ़ के पहले जाठम खूब गर्मी खूब तपनता तपे और लड़िका बिटया मनई पशु पक्षी सब बेहाल हो गए कुछ पंक्तियां सुनी जाएं गर्मी ते पोती पोता होई गे बेहाल पतोहिया आइस क्रीम मांगे गर्मी ते पोती पाता होई गे बेहाल बहुरिया आइस क्रीम मांगे कि माठा दही मूंग की खिचड़ी चटनी आम पुदीना माठा दही मूंग की खिचड़ी चटनी आम पुदीना मेटुकी काजल गुड़ का शरबत नींबू पानी पीना गुजिया पाखी चींटी चींटा मच्छर और छिपकली प्रजनन काल हवई इनका हाजी रहें अगली बगली और बिरवन बिरवन के झुरमुट की घनी छाह सुखदाई प्रकृति के आशीर्वाद लागे गर्मी ते पोती पाता हुई गे बेहाल पतोहिया आइस क्रीम मांगे रसे

0: की सब्जी, कटहर की तरकारी, रसेदार घुइयां की सब्जी, कटहर की तरकारी, भरवां भिंडी, भरवां तुरई, सकपहिता की बारी, मोटी रोटी चूल्हे पर की रोज करें जेवनारी, गन्ना के रस केरी रस्यावरी, बनवावई महतारी, फूफा जाए मौसिया आवई बारी बारी, हृदय मा हर्ष हालात जागई, गर्मी ते पोती पाता हुई गे बेहाल, पतोहिया आइसक्रीम मांगई।
1: भैया हम सब सुनत रहे मनोज कुमार अवस्थी सुखदेव दादा का, बहुत बढ़िया कविता सुनाइन। और अब सुना जाए प्रदीप सारंग दादा का, जो कमरा में बाराबंकी से आए हैं।
2: ये सावन अषाढ़ भादव ये तीन चार महीना जो है बरसात के बहुत नीक लागत है, लेकिन यही माँ अगर कोयल के कुहुक न सुनाई पड़े तो कहूँ कमी रह जात है। और बगई बगियन में तो खूब सुनाई पड़त है, तो कोयल पर एक दुई कुंडलियाँ फिर वह के बाद एक गीत आपके सामने रखा चाहिए थे।
3: सुना स्वागत है भैया।
2: कारी कोयलिया मुला मीठे मीठे बोल, कारी कोयलिया मुला मीठे मीठे बोल, मोहे मनुआ जगत का कानन मिश्री घोल, कानन मिश्री घोल सबै का आदर पावे, आपन सुख दुख भूल हमेशा मीठे गावे, कहसारंग कविराय हुनर है सुख के ताली, हुनरमंद सुख दे देख मत गोरी काली, हुनरमंद सुख दे देख मत गोरी काली। दूसरा सुना जाए, बोली कोयल काग के बहुते फरक सुनाए, बोली कोयल काग के बहुते फरक सुनाए, या को सुख बहुत दिए वाको ही चुभ जाए, वाको ही चुभ जाए, बुलैयो चैन न पावे, आस पास माहौल सकल बेचैन बनावे, और कह सारंग कविराय तीर तलवारो गोली, इनहुस बड़का घाव दियत है करवी बोली, इनहुस बड़का घाव दियत है करवी बोली। एक और सुना जाए, काले कोकिल काग हैं बोली बानी भिन्न, इक कूके ही हरस्तन इक बोले मन खिन्न, इक बोले मन खिन्न महत्ता कम ना तबह्यूं, सगुन सुबह सुर काग मुड़ेरी बोले जबह्यूं, कहसा रंग कविराय जगत के ढंग निराले, गुण अवगुण अनदेख बिचारे गोरे काले, गुण अवगुण अनदेख बिचारे गोरे काले। और एक और आखिर कुंडलिया देख लीजिए, बानी ऐसी बोलिए सुन चेहरा खिली जाए, बानी ऐसी बोलिए सुन चेहरा खिल जाए, कानन मा मिश्री घुले मन का बहुत सुहाए, मन का बहुत सुहाए, तनिक भी झूठ न बोलो, कड़वी हो वे बात किंतु सहदय मा घुआलो, कह सारंग कविराय सुनो हो बड़के ज्ञानी, कौआ कोयल फर्क समझ आवे सुनी बानी, कौआ कोयल फर्क समझ आवे सुनी बानी।
3: बहुत नीक बात।
2: और अब एक गीत से आप सबका जोड़ा चाहिए थे, सुना जाए।
3: स्वागत, स्वागत। सुनाओ।
2: एक लड़की लड़का का ब्याह होते है और दोनों के विचारन में थोड़ा फर्क मिलत है, तो जिंदगी में कौन कौन दिक्कतें होती हैं सजना।

या कुलरिका या कुलरकी हमरे अंगना माँ किलकारे, देख पड़ोसी के छह लड़िका इन्हू बाट निहारे, उनके उनके सोचे का अलग संसार, जिंदगिया कैसन पार हुई है, सजना निकीति न करे न प्यार, जिंदगिया कैसन पार हुई है। जब टीका लगवावा चाहेन तनिको ध्यान न लावे, या को बात हमारे न माने अपने राग सुनावे, घर भरी समझाए कहे गए हारी, जिंदगिया

0: कोई है।
1: बूढ़े बुजुर्ग अम्मऊ बप्पा लरिकै के गुण गावे। बूढ़े बुजुर्ग अम्मऊ बप्पा लरिकै के गुण गावे। प्यार दुलार करब ना जाने करुए भूल बहावे। नाही नाही भये या को।

0: पार हुई है। समाधान की लाइन है,
1: सुंदर है भैया,
0: पढ़ी लिखी हन सबुई सुधर बै, रोज रोज समुझई बे, उन्नत वंश होई लरिकन कै, तिनका खूब पढ़ई बै, धरती धर

0: हुई
1: बहुत बढ़िया
0: है।
1: भैया, वाह।
2: भैया हम सब सुनत रहन प्रदीप सारंग दादा जो कमरावा बाराबंकी से आए हैं, आओ हमहू एक ठो गीत सुनाई।
1: स्वागत है भैया, सुनावा जाए।
2: देखो पहला पहला मौसम अभी आवा है मानसून, अदरा के बदरा आई गए हैं तो कुछ अदरा के बदरा के बात हो जाए। घेरे लकारी बदरिया हो, घेरे

पदरिया हो ढाके घूंघटा अंजोरिया, घूमी रहे अदरा के बदरा, घूमी रहे अदरा के बदरा, दूनम आखिन आजे कजरा, कारी कारी है बाकी नजरिया हो ढाके घूंघटा या जोरिया, घेरे लकारी बदरिया हो ढाके घूंघटा अंजोरिया, आवा आषाढ़ गगन घन गरजे, आवा आषाढ़ गगन घन गरजे, घरवा अकेली जिया मोर लरजे, घरवा अकेली जिया मोर लरजे, चम चम चम के बिजुरिया हो, चम चम चम के बिजुरिया हो ढाके घूंघटा या जोरिया, घेरे लकारी बदरिया हो ढाके घूंघटा या जोरिया, खेतवा मधान लगावती धनिया, खेतवा मधान लगावती धनिया, देवरा उलचत रुकी रुकी पनिया।

0: समरिया हो, ढोवत बोझ समरिया हो, ढाके घुंघटा या जोरिया, घेरे लकारी बदरिया हो, ढाके घुंघटा या जोरिया, अमवा पियर जमुनिया कारे, अमवा पियर जमुनिया कारे, छोटका दूनों हाथ पसारे, छोटका दूनों हाथ पसारे, संझवे मलागे बजरिया हो, संझवे मलागे बजरिया हो, ढाके घुंघटा या जोरिया, घेरे लकारी बदरिया हो, ढाके घुंघटा अंजोरिया। भैया आज के गांव और हमार सबके याद वो के साथ है जो सुधी है वो थोड़ा सा देखा जाए,
1: सुनावा जाए, भैया सुनावा जाए, स्वागत
0: सखी।

जहां है। बिटिया के ब्याहे के घर घर गलीचा, बिटिया के ब्याहे के घर घर गलीचा,

0: मोरा गाँव पिपरा के छाँव कहाँ है।
1: बहुत नीक, बहुत नीक।
0: बैलन के गटई माँ घंटी घुंघरू।

0: कहाँ है।
1: बहुत सुंदर
0: भैया आज के लोक भाषा कवि गोष्ठी आप सब सुनागा। ये कवि गोष्ठी माँ मनोज कुमार अवस्थी सुखदेव दादा आए बरछता मानपुर सीतापुर से, प्रदीप सारंग दादा कमरावा बाराबंकी से, और हम डॉक्टर संसन तिवारी परसपुर गोंडा से आन रहा। आपका ये लोक भाषा कवि गोष्ठी कैसन लाग अपने पाती के माध्यम से हमें सबका सूचित की जाई।
2: राजेश भैया।
3: हाँ रियाज भैया,
2: देखो कितनी बढ़िया कवि गोष्ठी रही। तो इतनी बढ़िया कवि गोष्ठी के लिए जो है
3: आज के जो
2: प्रतिभागी कवि हैं मनोज कुमार अवस्थी, सुखदेव भैया, प्रदीप सारंग भैया और डॉक्टर संत शरण तिवारी संत भैया का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बिल्कुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और अब देखो अगर बात की जाए अपने खेती पाती के, तो ये जो मौसम चल रहा है और ये बहुत ऐसा मौसम है कि हम पंचरंग ध्यान दें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने खास करके जो अपन माटी है वह पर ध्यान दिया ज़रूरी है और आगे चल के जो उन बीज के चयन करे का है वह पर ध्यान दिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
3: बिल्कुल भैया सही कहूँ, काहे से अगर हम बीज का अच्छे से ध्यान रखब तब ही अच्छा रहा था। काहे से अगर तनिको चूकिन तो समझ लो बड़ी दिक्कत हो जाता। अगर हम बीज बोए रहे हैं कब खेती पाती माँ तो एक अगर हो सके तो बीज शोधन कर ली। तो जैसे जो रहा था कि जैसे कि अपन छोटा बच्चा होते जब टीकाकरण कराए दिन जाते हैं तो कौनों बीमारी नहीं आवत है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। वही तरीके से अपने बीज का भी एक मतलब दशा होते हैं, अगर ये चीज़ें अपनाए लेते हैं तो भैया बहुत अच्छा रहा था। और कौनों बीमारी फफूंद जनित हुई या भूम जनित हुई तो इनसे हमका बचे मौका मिल सकता है।
2: बिल्कुल सही बात कहो, इसी तरीके से चाहे बात की जाए भूमि के चाहे बात की जाए बीज के, दोनों के शोधन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब हम पंच अपने भूमि के शोधन कर लिए थे तो हम जोन ऐसे जो कीटाणु रहा थी कि जोन आगे अपना फसल है वो का नुकसान पहुँचा हुआ थी वैसे मुक्ति मिल जाते हैं। वैसे साथ साथ में जब अपने बीज के हम शोधन कर लिए थे तो वहूँ में जोन आगे चलकर फफूंद वगैरह जो लगे संभावना रहते वह खत्म हो जाते हैं।
3: बिल्कुल भैया सही कहो, तो इनका हमका सब लोगों का बहुत ध्यान रखे गए। और बात रही तो और भी जो चीज़ें रहती हैं उनका भी अपना एक रहते हैं।
2: हाँ बिल्कुल, तो जो है जब बात हुआ था अपने खेती पाती के तो अपन सरकार तमाम ऐसे ऐसे तरीके की आयोजन कीन करत है कि जो है वो जो है अपने जो किसान पंच है उनका एक से एक जानकारी मिला करत है।
3: बिल्कुल,
2: तो वही मैं से देखो अपने यहाँ लखनऊ में जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है हुआ जो है 3 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक यानी आज जो है उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का आयोजन किन गवा रहा।

0: बिल्कुल भैया,
1: और ई आम महोत्सव में जो है दूर दराज से जो उन किसान भाई हैं, जो उन बागवान भाई हैं, वो आए के हिस्सा लिहिन, और मैं जो सरकार के तरफ से जो उन तमाम प्रतिनिधि रहे हैं उन्हों हिस्सा लिहिन। तो आज जो समापन हुआ है, यह का एक रेडियो रिपोर्ट अपने ओम प्रकाश भैया लेके आए हैं, तो वह का सुनवाई दीन जाए।
0: बिल्कुल भैया, तो सुना जाए।
1: तो ये जो रेडियो रिपोर्ट है उत्तर
0: पंचोत्सवा
1: प्रदेश आम
0: संकल्प।
1: महोत्सव 2026 पर आधारित है, एक संकलन है ओम प्रकाश भैया के और प्रस्तुति है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया के। तो ये रेडियो रिपोर्ट सुना जाए और जानकारी ली जाए।
0: बिल्कुल भैया।
2: पंचोत्सवा संस्कृति और समृद्धि का संगम उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026, जो कि आयोजित हुआ लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जिसकी शुरुआत 3 जुलाई से हुई थी और 5 जुलाई यानी कि आज इसका समापन हुआ। मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान कृषि विपणन कृषि व्यापार एवं कृषि निर्यात उत्तर प्रदेश जी द्वारा समापन संबोधन दिया गया।
3: उद्यान विभाग के इस महत्वपूर्ण आयोजन में, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से 3 जुलाई को प्रारंभ हुआ और आज अंतिम दिवस है। साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह संकल्प लिया गया कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। मुझे खुशी है कि चाहे वो आम का महोत्सव हो, चाहे उद्यान विभाग के द्वारा अनेक नवाचार हो, अनेक ऐसे प्रयास उद्यान विभाग के द्वारा किए गए जिसमें राज्य के किसानों की समृद्धि हो, जिससे राज्य के किसानों की आय बढ़े, ऐसा प्रयास आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने किया। आज कम से कम 30 देशों में हमारे राज्य का आम, राज्य के आमों की खुशबू, राज्य के आमों की मिठास 30 से अधिक देशों में ली जा रही है। मैंने सपना देखा है कि आम का प्रसंस्करण हो और बेहतर तरीके से आम के बहुत सारे उत्पाद बने, आम की सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, ये भी प्रयास किया। दुनिया की बाजारों में आम कैसे पहुंचे और उसका मूल्य बेहतर कैसे मिले, हमने इसका प्रयास किया। छोटा सा प्रयास, सिर्फ 2 साल पहले प्रयागराज की बाग में गया और वहां पर आम की बतिया पे एक कागज की थैली लगाने का प्रयास किया और हम और हमारे विभाग ने मिलकर के आम की बतिया में कागज की थैली लगाना शुरू किया। 2 ही साल का परिवर्तन है, आज मलिहाबाद की आधे से अधिक बागों में कागज की थैली में ही आम पैदा हो रहा है। और यहाँ पर दोनों लगे हुए देख लीजिए, जो आम की थैली में नहीं पकता है आम, बाहर पकता है उसका कलर देख लो, और आम की थैली में पका हुआ अपने आप दूर से बोलता है। और जब हम इसको अंतरराष्ट्रीय बाजार की ओर देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि जो कागज की थैली में होगा उसके ऊपर कोई कीट बैठ नहीं सकता, किसी प्रकार की पेस्टिसाइड का कोई असर नहीं होगा, किसी भी प्रकार के छिड़काव अथवा कोई भी ऐसी चीज हानिकारक उसके भीतर जा नहीं सकती है। तो इसलिए दुनिया की बाजारों में गुणवत्ता पर काम पहुंचा करके कंपटीशन में हम उत्तर प्रदेश के लोग आगे हो जा रहे हैं, इस पर भी मुझे खुशी है। हमारा उद्यान विभाग 1 एकड़ में 15 लाख रुपए का शिमला मिर्च हमारे राज्य के किसान उगाते हैं। कोई भी फसल ऐसी नहीं हो सकती, धान गेहूं करेंगे तो 1 एकड़ में 40,000 का धान, 40,000 का गेहूं हो सकता है, लेकिन 15 लाख का नहीं हो सकता। हमने ऐसे बहुत सारे काम किए। मैं आग्रह करता हूं अपने राज्य के किसानों से, आम की खेती और बढ़ाएं और अच्छा करें, लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी करें और ज्यादा मूल्य जो दे सके। औद्योगिक फसलों में सब्जियां हैं, फूल हैं, औषधीय फसलें हैं, आप इनकी खेती करेंगे, मसालों की खेती करेंगे तो कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की फसलें हम तैयार कर लेंगे। बहुत सारी औद्योगिक खेती के लिए हमारा विभाग आपको प्रोत्साहन राशि भी देता है, प्रोत्साहित करता है। सिंचाई की बहुत सारी तकनीकें विकसित की, हम ड्रिप इरिगेशन के लिए राज्य के किसानों को 90% तक छूट देते हैं। हाईटेक नर्सरियों के बारे में बताना चाहता हूं, 2017 से पहले हमारे राज्य में सिर्फ 74 लाख पौध हाईटेक नर्सरियों में तैयार कर राज्य के किसानों को देने की क्षमता थी, और आज हमने अपने राज्य में इतनी

0: हाईटेक नर्सरियों की स्थापना की कि आज हम 29 करोड़ पौधे तैयार करके राज्य के किसानों को दे पाने में सक्षम है। उन्हीं नर्सरियों में हमने कमल की पौध भी तैयार करके राज्य के किसानों को कमल की खेती कराने की ओर प्रयास किया, मखाने की खेती कराने की ओर प्रयास किया। कमल की खेती आप करेंगे, वैसे तो कमल बहुत कुछ देता है, उसके औषधीय गुण भी हैं, उसके पौष्टिक गुण भी हैं, और एक और बड़ा गुण है, कमल के ऊपर ही लक्ष्मी का वास होता है। ये सर्वाधिक बड़ा गुण है, वो समृद्धि का प्रतीक है। पहली बार औद्योगिक निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड का गठन हुआ है, जो हमारे राज्य के किसानों को, नौजवान बच्चों को ये बताता है कि आज आम का भाव आज की तारीख में खाड़ी के देशों में क्या है, यूके में क्या है, यूएस में क्या है, अफ्रीका में क्या है, ये सब हमारा बताता है। वहां तक जाने का रास्ता क्या है, खर्च क्या आएगा, कौन से विकल्प हैं, ये सारा हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड बताता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको खूब खूब बधाई देता हूँ। एक बार फिर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इस आम महोत्सव से जुड़े हैं सभी लोगों को भगवान सदैव सुख समृद्धि और वैभव से परिपूरित रखे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। भारत माता की, भारत माता की।
1: खाद्य सुरक्षा अधिकारी लखनऊ डॉक्टर सुप्रिया संजय द्वारा विशेष जानकारी किसानों को दी गई।
2: अगर आप फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, अगर आम का आपका है या किसी भी प्रकार का फूड का व्यवसाय है, तो आपको एक लाइसेंस लेना है। ये कैसे लेना है, जैसे आप छोटे स्तर पे व्यवसायी हैं, एक रुपए से लेके डेढ़ करोड़ तक आपका अगर व्यवसाय है, तो आप एक बेसिक रजिस्ट्रेशन लेंगे और उसकी फीस कितनी है, 100 रुपए होती है, और सारी प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन है। फॉर्म भरेंगे, उस पर अप्लाई करेंगे और आपका पंजीकरण हो जाएगा। और उसके लिए गवर्नमेंट ने एक साइट बनाई हुई है, foscos.gov.in। अब इसके बाद हम आते हैं राज्य लाइसेंस, जिसको स्टेट लाइसेंस आप कहते हैं, इसकी भी सीमा गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। अभी क्या है, 1.5 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक, इसकी फीस 2000 से लेके 5000 तक है। अगर आप रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, या किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, फुटकर, थोक या निर्माण, तो अलग अलग कारोबार श्रेणियों के लिए अलग अलग इसमें फीस निर्धारित की गई है। बाकी नेक्स्ट हैं जो केंद्रीय लाइसेंस है, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो जब भी आपको कभी एक्सपोर्ट करना होगा, सेंट्रल लाइसेंस इसके लिए ज़रूरी है। इसकी फीस जो है 7,500 तय की गई है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है।
3: इस उत्तर प्रदेश आम महोत्सव में हमारे साथ एक प्रतिभागी जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या नाम है और क्या उनके प्रोडक्ट की खासियत है।
4: मेरा नाम ओम प्रकाश मौर्य है, मेरा गांव ग्राम पहाड़पुर कोट छतियारामपुर ब्लॉक भरावन हरदोई। मैं यहां आम महोत्सव में आया हूं। ये आम महोत्सव, यहाँ हजारों प्रजातियाँ आई हुई है आम की, और यहाँ शहद का उत्पाद अपना लेके आया हूँ, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट जा रहा है, और यहाँ जितना भी हम प्रतियोगी आए हुए हैं उनके भी बहुत अच्छे उत्पाद हैं और बहुत अच्छी सेल हो रही है। यहाँ पे हमारे पास 6 प्रकार के शहद हैं, मल्टीफ्लावर है, जामुन है, बबूल है, तुलसी है और मल्टीफ्लावर है, ये तमाम प्रकार के शहद हैं, वो भी गुणवत्तापूर्ण। यहाँ हर व्यक्ति को आना चाहिए, देखना चाहिए, उत्पाद देखना चाहिए, चेक करना चाहिए, खाना चाहिए। जितने भी वैज्ञानिक आए हैं वो बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। हर किसान को यहाँ आना चाहिए, वैज्ञानिकों से संवाद स्थापित करना चाहिए, उनके अनुभव लेना चाहिए। राज्यपाल द्वारा हम 4 दफ़े सम्मानित हैं और कम से कम आज तक हमने 80 पुरस्कार जीते हैं। पूरे भारत में हमको गवर्नमेंट अपने खर्चे से भेजती है, विदेश भी भेजती है, वहाँ से वैज्ञानिकों से संवाद करके अच्छा सीखते हैं और वही किसानों को हम जानकारियाँ देते हैं, कैसे किसान की उन्नति हो, कैसे इनकम दुगनी हो।
3: इस आम महोत्सव में हमारे साथ एक महिला प्रतिभागी भी जुड़ चुकी हैं, आइए जानते हैं क्या उनका उत्पाद है और कहां से हैं वो।
5: मेरा नाम उमा त्रिवेदी है, मैं कानपुर से हूं। मैं जनारी शक्ति महिला सेवा समिति संगठन चलाती हूं और हमसे जुड़ी हुई कई महिलाएं ऐसी हैं जो काम करना चाहती हैं, इसलिए मैं उनको काम देती भी हूँ, दिलाती भी हूँ, तो मैं इसलिए मैंने अपने प्रोडक्ट बनाए हैं, MSME से सीखा है, कोर्स किया है, सर्टिफिकेट मिला है, तब मैं पूरे उद्यम के जितने भी नियम हैं उनके रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, फिर अपना उद्योग बढ़ा रही हूँ। मैं गुलाब रस रुआब्जा बना रही हूँ, जो नो केमिकल, नो प्रिजर्वेटिव, उसकी एक खास बात है कि नेचुरलिटी उसमें है, कोई भी हानिकारक तत्व नहीं है। मेरी घर की बनी हुई बुकनू है जिसमें मैंने 18 तरीके के मसाले डाले हैं, वो जो 18 तरीके के मसाले हैं वही हमारी बुकनू को

0: एक अलग पहचान देते हैं।
1: हमारे साथ इस उत्तर प्रदेश आम महोत्सव में एक और प्रतिभागी जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी।
2: जी, मेरा नाम नीरज सिंह है, मैं उन्नाव का निवासी हूँ, उहान का, और केवी के धौरा से हम लोग जुड़े हुए हैं और उन्हीं के द्वारा दिए गए निर्देशों पर हम लोग आम के बाग में बैगिंग का प्रयोग करते हैं, जिससे हम लोग का बाग का आम बढ़िया क्वालिटी का प्रोड्यूस होता है और उससे हमारा आम एक्सपोर्ट लायक भी बनता है जाके, और एक्सपोर्ट हो भी रहा है। और इस बार हम लोग यहाँ पे आम महोत्सव में भी लगाए हुए हैं, लास्ट 3 ईयर से लगा रहे हैं, प्रदर्शनी भी लगा रहे हैं, उसमें भी हम लोग को 1st, 2nd मिल रहा है अवार्ड, और इस बार भी हम लोग को लेवड़ा हम लोग का 1st आया हुआ है और रामकेला भी 1st पुरस्कार मिला हुआ है इस महोत्सव में। और भी किसानों को हम यही सुझाव देंगे कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बैगिंग करें। हम लोग का दुबई जा रहा है, इस बार तो USA भी गया हुआ है और सऊदी भी गया हुआ है, और हमें यहाँ पे राज्यपाल महोदय के द्वारा भी आमंत्रित किया गया था।
1: इस उत्तर प्रदेश आम महोत्सव में बहुत सारे प्रतिभागी आए हैं, आइए एक और प्रतिभागी हैं, क्या नाम है उनका और कहाँ से हैं? जी,
3: मेरा नाम कार्तिक है, हम सहारनपुर से हैं महोदय में, और 42 से 45 के बीच में हमारी वैरायटी है, उसमें रोटोल भी है और रामकेला भी है, लंगड़ा भी है, हाथी झूल भी है। हाथी झूल कहते हैं, ये तो बहुत बड़ी है, इसमें एक खासियत ये होती है कि पेड़ बड़ा रहता है 25 से 30 फुट का
1: जी,
3: और कम से कम 1.5 से 2 किलो का होता है एक फल, इसका आम का साइज। और हमारे यहाँ एक पेड़ भी है जिसपे, उस पेड़ पर 121 वैरायटी है। हाँ,
1: इस आम महोत्सव में आकर के आपको कैसा अनुभव हो रहा?
3: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए यहाँ पर, वैरायटी देखिए, यहाँ पर आएंगे एक से एक वैरायटी देखने को मिलेगी आपको, संभव ये मिलेगा कितने साल में तैयार होता है पेड़, कितने वो होता है, उसके बाद कितना अपना ग्रोथ आप कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा।
1: इसी बीच में हमारे साथ एक और प्रगतिशील किसान जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं कहाँ से हैं और क्या उनका उत्पाद है यहाँ पर उत्तर प्रदेश आम महोत्सव में।
4: नमस्कार, मैं प्रदीप दीक्षित हूँ और गौ आधारित प्राकृतिक खेती करते हैं हम पिछले 17 साल से, और जिसमें हमने मिलेट्स, मोटे अनाज सारे अपने यहाँ उगाते हैं, और जो भी हमारे खेत का खरपतवार, जिसको बाकी किसान जो नहीं जानता वो खरपतवार कहता है, हम उसको औषधियाँ कहते हैं, उसको भी हम सोलर ड्राई करके वैल्यू एडिट करके उसको बेचते हैं अपने यहाँ पे। और बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे आम महोत्सव में लगे हुए हैं, इसमें कई तरीके के फूल हैं जो चाय के रूप में इस्तेमाल होते हैं, सारे मोटे अनाज हैं, सावा, कोदो, काकुन, कुटकी, हरी कंगनी, और हम अब चिया सीड अपने यहाँ पैदा करते हैं, हल्दी पैदा करते हैं, अलसी पैदा करते हैं, आजकल लोग अवेयर हैं हेल्थ के लिए, और 6 तरीके के हम साबुन बनाते हैं अपने ही खेत के प्रोडक्ट से, और शैम्पू बनाते हैं, साबुन है। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और मोदी जी के जो श्री अन्न का योजना थी उससे प्रभावित होकर के हमने जब श्री अन्न की खेती की 4 साल पहले, तो हमारी बिल्कुल लाइफ बदल गई, और मोटे अनाज के सेवन से हमारा परिवार भी निरोगी रहा।
5: ये थी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के समापन की रेडियो रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।
6: राजेश भैया।
7: हाँ रियाज भैया,
6: देखो रेडियो रिपोर्ट जो रही उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 पर आधारित रही, एक संकलन रहा ओम प्रकाश भैया के और प्रस्तुति रही डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया के, तो इनके लिए इन्हों का दोनों पंचन का धन्यवाद, और जो उन बात की है उन्हों सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखो जब बात आवत अपनी खेती पाती के, तो एक से एक अपने जो किसान है, प्रगतिशील किसान है, वो सफलता के झंडा गाड़ रहे हैं।
7: बिल्कुल भैया, हर जगह पे कहे से चाहे अपने उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, हर जगह पर अब पूरे भारत में भी है बात की जाए, क्योंकि अपने जब पंच अच्छे से जागरूक रहते हैं तो और भी बढ़िया रहते हैं, तो जानकारी अपने पंच कार्यक्रम में खुद आवा करते हैं।
6: बिल्कुल, तो देखो जो राम प्रवेश मौर्य भैया हैं, इन्हों जो अपन जो सफलता कहानी सुना रहे हैं सब्जी उत्पादन के बारे में, तो इनसे जो बात कही कि ना डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, तो इनके सफलता कहानी सुना जाए और जानकारी ली जाए।
7: बिल्कुल भैया।
8: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, सफलता की कहानी क्रम में आज हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, सब्जी उत्पादन से जुड़े बहराइच जनपद के मेहपुरवा ब्लॉक के नैनिहा 54 नंबर गांव के राम प्रवेश मौर्य भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और सब्जी उत्पादन से जुड़ाव हुआ कब से?
9: नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, मेरी पढ़ाई सन 1989 में इंटर बायोलॉजी से मैं किया था, उसके बाद कुछ आर्थिक परिस्थिति के कारण पढ़ाई छूट गई, जिससे मैं फिर खेती में आया, बच्चों की परवरिश के लिए मैं बाहर नहीं गया, फिर किसानी ही चुना, और मैं सब्जी खेती चुना क्योंकि सब्जी में पैसे डेली आते हैं और पारंपरिक खेती से धान गेहूँ गन्ना में तो पैसे उतना आते नहीं हैं, तो इसीलिए मैं सब्जी खेती चुना जिसमें डेली हमारी

0: मंडियों में सब्जी जाती है और डेली पैसे आते हैं जिससे बच्चों को मैं पढ़ाई में सहायक बन सकता हूँ।
1: यानी लगभग 37 साल हो गया पढ़ाई से सीधे खेती की कढ़ाई में आते
0: जी
1: हुए,
0: जी
1: तो ये बताएं कि कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
0: हमारे पास डॉक्टर साहब केवल 2.5 एकड़ जमीन है जिसमें मैं धान गेहूं गन्ना खाने को लगाता हूं। 1 एकड़ में सब्जी खेती करता हूं जिससे हमारा सालों साल पैसा निकलता रहता है मंडी से।
1: यानी 1 एकड़ जो सब्जी की खेती है वो पूरे साल?
0: जी सालों साल मौसम के अनुसार मैं सब्जी खेती लगाता हूं जिसमें गोभी है, ब्रोकली है, टमाटर है, मिर्ची है, बैंगन है, लोबिया है। इसमें अभी एक नई वैरायटी लोबिया का मैं किसानों को बताऊंगा जो बहुत ही लाभप्रद है। जो एक बार लगाएंगे 8 महीने तक लगातार फल देगी।
1: कौन सी वैरायटी है?
0: डबल एक्सल नाम से आई है जो पर डे में लोबिया तोड़ता हूँ। डेढ़ डेढ़ दो दो फीट की लंबी होती है। पर डे तोड़िए, मंडी में ले जाइए, बढ़िया पैसा।
1: ये बताएं कि इस समय कौन कौन सी सब्जियां आपके 1 एकड़ खेत में हैं?
0: इस समय हमारे पास बैंगन है, मिर्च है और ये लोबिया जो नई वैरायटी में लगाया हूँ ये तो बहुत ही किसानों के लिए फायदेमंद है। लोबिया तो टूटती है, एकदम गैप देखे देखे ये लोबिया जो डेली टूटती है।
1: और रकबा कितना कितना है?
0: रकबा लगभग 1 बीघे 10 बीसवे 5 बीसवे में ऐसे में करके पूरी मतलब खेती के मॉडल बना करता हूँ कि अगर एक सब्जी सस्ता बिके 4 सब्जी हमारा महंगा बिके मंडी में बराबर रेट मिलता रहता है। इसलिए कभी किसान भाइयों को एक सब्जी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए क्योंकि मंडी का उतार चढ़ाव मिलता रहता है।
1: तो आगे क्या तैयारी है सब्जी उत्पादन में?
0: आगे तैयारी, अभी बैंगन के हमारे पास लगभग 10 प्रजाति तैयार हो रहे हैं जो भी 1 हफ्ते में लगा दिए जाएंगे। अभी एक बैंगन हमारा निकल रहा है और मंडियों में बढ़िया रेट से जा रहा है। अभी लोबिया निकल रही है हमारी, वो भी बढ़िया पैसा दे रही है। तो जो किसान एक ही खेती करता है तो उसमें नुकसान होता है, मंडी का रेट नहीं मिला तो नुकसान खा जाता है। इसीलिए उसको रकबा बांट दिया जाता है 10 बीसवे 1 बीघे 5 बीसवे और जितना एरिया उसी हिसाब से किया जाता है और उसमें बराबर किसानों को अच्छा रेट मिलता रहता है।
1: कुछ
0: इसमें
1: मचान पर भी करते
0: जी
1: हैं?
0: मचान में इसमें लोबिया लगेगी, करेला लगेगी और ये लौकी लगेगी और तरोई लगेगी, घिया तरोई लगेगी, ये सब बेल वाली सब्जियां लगेंगी। और जमीन में लगाएंगे तो भिंडी लगाएंगे आप, बैंगन लगाएंगे।
1: उन्नत प्रजातियां चुनते होंगे आप?
0: जी मेन तो यही है, उन्नत प्रजातियां। अगर किसान को उन्नत प्रजाति नहीं मिली तो फिर उत्पादन घट जाता है, फिर मंडी में रेट नहीं मिलता है। इसलिए प्रजाति का चुनना बहुत ही जरूरी है किसान भाइयों के लिए।
1: तो सब्जी उत्पादन में क्या बारीकी आप करते हैं कि और लोगों से आप अलग जाने जाते हैं?
0: पहले कि मैं सर्च करता हूँ और रेडियो के माध्यम से मैं रेडियो सुनता हूँ, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, अच्छे अच्छे सफलता कहानी जो किसान बताते हैं मैं नोट करता हूँ, एक नोटबुक बनाया हुआ हूँ और किसानों का नंबर से मैं बात करता हूँ। इससे हमको जब अनुभव मिलता रहता है, मैं किसी विज्ञान केंद्र वैज्ञानिक को संपर्क में रहता हूँ, इससे अच्छे वैरायटी को पता चलता रहता है।
1: तो पूरे साल में आप सब्जी उत्पादन करते हैं, कितनी आमदनी हो जाती है सब्जी उत्पादन 1 एकड़ में?
0: 1 एकड़ में हमारा लगभग 4 से 5 लाख रुपया हो जाता है।
1: बचत?
0: जी बचत, हमारे खर्चा चलता रहता है, बराबर बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब चलती रहती है उससे।
1: और जो 1.5 एकड़ जिसमें मिठास की
0: हाँ
1: फसल
0: धान
1: है?
0: गेहूं गन्ना है तो अपना खाने भर को लगा देते हैं, अपना काम चलता रहता है घर का, सब्जी पैसा हमारा नकद मिलता रहता है।
1: आप नर्सरी व्यवसाय से भी जुड़े हैं?
0: जी नर्सरी में नानपारा हाईटेक नर्सरी, कृषि विज्ञान केंद्र में हाईटेक नर्सरी खुली है। मैं पौधे उगा करके तैयार करके किसानों को देता हूँ जिससे किसान से लाभान्वित हो रहे हैं और इसमें ऑर्डर भी मिल रहे हैं, पौधे का ऑर्डर किसान दे रहे हैं और तैयार करके हमको देना है।
1: इस समय आपकी जो कृषि विज्ञान केंद्र की हाईटेक नर्सरी है जो आप द्वारा संचालित है, उसमें कौन कौन सी सब्जियों की पौध तैयार हो गई है?
0: अभी इस समय हमारे पास मिर्च है, बैंगन है, अभी शिमला तैयार करने जा रहे हैं, पकौड़ा मिर्चा, अचारी मिर्च, पतली मिर्च और गोभी का हमको लगभग 1 लाख पौधे तैयार करके देना है, ऑर्डर है। इसी तरह से ऑर्डर मिलते जाते हैं, कुछ अपने पास से भी बीज में डाल के तैयार करके बेचता हूँ अपने रेट से।
1: चूंकि आप सब्जियों की अगेती नर्सरी तैयार करने के माहिर हैं, तो और किसान भाई बहन जो दूर दूर के हैं, जो अपने खेत पर नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मंत्र देंगे?
0: हाँ वो अपने खेत पर ऐसा तैयार कर सकते हैं, उसके लिए आप बरसात में तेज बारिश होती है तो बीज गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, इसलिए बेड बना करके 6 इंच ऊंचा ही उसको लगाया जाता है, ऊपर से ग्रीन नेट लगाया जाता है कि बरसात के पानी से नुकसान ना हो, और घर पे भी तैयार करके लगा सकते हैं।
1: और पोर्ट्रे में भी?
0: पोट्रे में भी लगा सकते हैं, कोकोपीट है, बर्मिकोलाइट है, ह्यूमिक है, इसको मिला करके उसमें ट्रे में जमा करके लगा सकते हैं।
1: जो अब तक का आपका सब्जी उत्पादन का तजुर्बा है, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर रोज की आमदनी चाहते हैं तो जो भी

0: रकबा है उसमें कुछ न कुछ सब्जी उत्पादन, और वो भी अगेती या पीछेती जरूर करिए।
1: जी डॉक्टर साहब, इसमें तो बहुत सही टाइम चल रहा है। बैंगन लगा दीजिए, मिर्च लगा दीजिए, शिमला लगा दीजिए, पकौड़ा मिर्च लगाइए, और ये गोभी लगाइए। गोभी इसमें जो लगेगी सीधे 70-80 रुपये किलो के रेट में जाती है, वो भी बिना पत्ती तोड़े जाती है।
0: अगेती फूल गोभी,
1: अगेती फूल गोभी इसमें जो भी गोभी इसमें लगेगी वो 70-80 रुपये किलो के रेट में जाएगी। किसान 1 बीघे से लाखों रुपये कमाता है इस गोभी से। और बैंगन भी लगाएगा उसका भी बढ़िया रेट मिलेगा। मिर्चा जो लगाएगा शिमला वो 80 रुपये किलो के रेट से जाएगा। पकौड़ा मिर्चा वो भी 80 रुपये किलो के रेट से जाता है।
0: लेकिन पैदा करना भी तो कठिन है, बारीकी भी तो
1: जी
0: करनी पड़े,
1: बारीकी एक बेड पे ही लगा के मल्चिंग करके लगाया जाता है कि बरसात में मिट्टी कट जाती है।
0: और जल निकास का अच्छा व्यवहार।
1: हाँ, जल निकास तो बहुत जरूरी है। खेत को ऊंचा होना जरूरी है, जल निकास जरूरी है, क्योंकि पानी भरेगा तो पौधे मर जाएंगे।
0: कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं?
1: जी मैं तो सब्जी की ही बिक्री करके, मैं बच्चों का हमारा एक भीमराव मेडिकल PhD कर रहा है, सरकार उसको 44,000 दे रही है। तो मैं बच्चों को, 4 बच्चे हमारे, मैं चारों ग्रेजुएशन करा दिया हूँ और इस सब्जी की बदौलत मैं करा हूँ। मेरे पास कोई 1 पैसे बाहर की आमदनी नहीं है।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: मोबाइल नंबर हमारा 9651-26-41-30, 9651-26-41-30, 9651-26-41-30।
0: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफलता की कहानी के बारे में?
1: मैं रेडियो के माध्यम से मैं बहुत आगे बढ़ा, अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों से हमको जानकारी मिलती है। मैं रेडियो खेत में ही रख के मैं काम करता रहता हूँ, रेडियो सुनता रहता हूँ, और पेन डायरी भी रखे रहता हूँ कि कहीं कोई नंबर बोले मैं तो नोट कर लेता हूँ। एक मैं 10 साल का मेरा रिकॉर्ड है जो मैं पूरा वैज्ञानिकों का नंबर है, इसमें किसानों का नंबर है, और इसीलिए मैं आगे बढ़ता गया और अच्छे अच्छे सब्जियों के बारे में जानकारी। अभी किसान मुझसे जुड़ते हैं तो मैं बताता हूँ कि आप खेती करिए, सब्जी में तो उतना पैसा है कि बस अगेती पछेती का ध्यान रखना है, बीच में थोड़ा कम करिए, क्योंकि रेट तो अगेती में था या पछेती मिलता है। इसमें आप लोग सही टाइम में लगाइए, मिर्च बैंगन टमाटर शिमला मिर्च गोभी है, आप लोग पैसे कमाइए, और नौकरी से अच्छा पैसा है अपना ये सब्जी में। अगर समय से करेंगे, सही ढंग से करेंगे, तो आप लोग खुशहाल रहेंगे, बच्चों के पढ़ा लिखा के कुछ कर सकते हैं बच्चों के लिए, भविष्य के लिए।
0: राम प्रवेश मौर्य भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और जो आपकी सफलता की कहानी थी कि आप इंटर बायोलॉजी की पढ़ाई करने के बाद 89 में खेती से जुड़े, 2.5 एकड़ आपके पास खेती की जमीन है और 1 एकड़ में सब्जी उत्पादन पूरे साल करके अगेती और पिछेती आप अच्छा बाजार भाव ले रहे हैं, अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं और नई नई प्रजातियों कि बेमौसमी सब्जी की खेती करके खुशहाल हैं आज कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी सफलता की कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रियाज भैया,
3: हाँ राजेश भैया,
2: देखो कत्ती बढ़िया, कहा जाए कि नीक जानकारी रही, सफलता की कहानी क्रम में जो आज के सफल कहानी रहे, सब मतलब कहानीकार रहे, जो सब्जी उत्पादन पर विशेष जानकारी दिए, जो राम प्रवेश मौर्य भैया, और इनसे जो बात कही गई डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, तो इन दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और देखो जो अपन खेती पाती है वो मौसम पर आधारित रहा है, और हम पंच इंतजार करते रहन कि भैया कब बरसे कब बरसे, और आज देखो लखनऊ में जम के बारिश हो रही है और आसोपास में भी बरस रहा है।
2: बिल्कुल भैया, अभी आप देख ही के आए रहे हो ना।
3: हाँ, और देखो जो मौसम के पूर्वानुमान रहा, ये भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र लखनऊ से यहू बताए रहे कि भैया देखो बूंदाबांदी की संभावना है, ये है तो बूंदाबांदी का हचक के बरसे लाग।
2: बिल्कुल भैया,
3: तो देखो भैया हम पंच के इंतजार खत्म हुआ है, अब अपन जो है खेती पाती के जो अपन खरीफ के उत्पादन आगे हमका करे का है, बेरन लगावे का है, अब बड़े आराम से लाग जाइए।
2: बिल्कुल भैया, कहा हमका सतर्क रहा है, अगर कोनो मतलब लगत है कुछ तो अपना सतर्क रहो भैया, अगर बारिश हो रही ज्यादा तो एक बच के रहा है।
3: बिल्कुल बच के रहा का है, और देखो यहू ध्यान रखे कि कल के कार्यक्रम में का सुनावा जाए, तो पहले जब मालूम रहा था तो पहले से हम पंच जो है रेडियो खोल के बैठ जावा जाते।
2: बिल्कुल भैया, तो जरूर जान लें कल के कार्यक्रम में का आपने पंच सुनी है, लोकायतन कार्यक्रम में, लोकायतन में सुनी है जो एक भेंटवार्ता यानी जानकारी है डेंगू बुखार कारण और निवारण पर, जो मतलब जिनका जानकारी दें डॉक्टर सतीश कुमार भैया, और जिनसे बतकही करे हैं डॉक्टर बात कही करे हैं रियाज अहमद भैया, और जो खेती किसानी में रहिए भैया वो विषय जो है कल का, बरसात में पशुओं की बीमारियां कारण एवं निवारण, ये विषय पर जानकारी रही, और जिनसे बात कही करी हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, और जो बात मतलब जानकारी दें डॉक्टर जयकेश कुमार पांडे भैया।
3: तो ये तो रही कल के कार्यक्रम की जानकारी, अब देखो अपने पंजन

0: बता दी कि कार्यक्रम कैसे लागत है उसके बारे में अवगत जरूर करावा करें। तो इसके लिए सबसे पहले अपने पंचन का ईमेल आईडी बता दी जाए। ईमेल आईडी है farmandhome@gmail.com। तो ये पर मेल भी कर सकते हैं, बाकी जो हम पंच जो कार्यक्रम के पता बतावे करी थे चिट्ठी पाती के माध्यम से, वह भी खत लिख के भी अवगत करा सकते हैं। तो देखो अब यही साथ में घड़ी इशारा कर रही है कि अपन कार्यक्रम जो है उनके समय समाप्त हो चुका है। तो पंचन से लीन जाए आज्ञा।
1: जय।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
3: चलो,
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने?
5: खाता हुआ एक्टिव,
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
9: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में हुए शामिल, कहा डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव हर वर्ग को दिया योजनाओं का लाभ। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने NDA के सहयोगी दलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि की जारी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जिला कारागार में 5 आरोपियों से फिर हुई पूछताछ, कल मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा फैसला। और प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग को बिना भेदभाव के पहुंचाया गया है, और डबल इंजन सरकार विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य निरंतर कर रही है।
10: आज जो विकास दिखाई दे रहा है, आज जो सुरक्षा का मॉडल है, आज जो सुशासन का मॉडल है, और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार समाज के प्रत्येक तबके के लिए, क्या वो युवा हो, क्या वह आधी आबादी बहन और बेटियों के स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, क्या वह अन्नदाता किसान हो या गरीबों तक शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य बिना रुके हुए, बिना डिगे हुए, बिना झुके हुए, बिना थके हुए निरंतर पहुंचाने का कार्य कर रही है।
9: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये खूबी है कि यहाँ जो कार्यकर्ता बूथ पर काम करता है, जो शक्ति केंद्र में काम करता है, वो पार्टी के शीर्ष स्थान पर पहुंच सकता है। श्री नवीन ने कहा कि विगत समय में जिन विषयों को लेकर पूरी दुनिया में अस्थिरता रही

0: फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से जनता की चिंता करता रहा।
1: पिछले समय में जिन विषयों को लेकर पूरे विश्व में विक अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से हमारे लोगों की चिंता करता रहा। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भी हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दिया। हमने ये चिंता की कि विश्व में कोई भी देश किसी भी प्रकार से काम करे, भारत की राजनीतिक और डिप्लोमेटिक राजनीति हमेशा सबको लेकर साथ चलने की रही।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व अध्यक्षों और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। उन्होंने दावा किया कि 2027 में प्रचंड बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। मीडिया से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सेवा और विकास के एजेंडे पर जोर दिया। सहयोगी दलों की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अपना दल एसके उपाध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ गठबंधन सहयोगियों के बीच समन्वय को लेकर खास तौर पर बात की गई।
2: विशेष रूप से जो समन्वय का कार्य कैसे, उस पर चर्चा हुई है। और मैं इतना जरूर कहूंगा आपको कि एनडीए के इस जीत में अपना दल ने हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और आगे भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।
0: केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण BBGRAMJI अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता जताई है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने कहा कि जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो, ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी गाँवों को समृद्ध और विकसित बनाना है।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गाँव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच तेज हो गई है। मामले के विवेचक ने आज जिला कारागार में 8 आरोपियों में से 5 से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। पेश है एक रिपोर्ट।
4: राम मंदिर दान घोटाला मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। मामले में सीओ अयोध्या और विवेचक आशुतोष तिवारी जिला कारागार पहुंचे, जहां उन्होंने 5 आरोपियों लोकेश मिश्रा, रामशंकर यादव टिन्नू, मनीष यादव, करुणेश पांडे और अनुकल्प मिश्रा से विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल होने वाली अहम बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बैठक में दान घोटाला प्रकरण के साथ चंपत राय और अनिल मिश्रा के त्याग पत्र पर विचार किया जाएगा। ट्रस्ट के सदस्य राम मंदिर के व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन कर आगे की रणनीति तय करेंगे। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: गन्ना किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से कल से 11 जुलाई तक प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा विशेष सुरक्षा जागरूकता और नामांकन महाअभियान संचालित किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
5: प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियां इस अभियान की मुख्य नायक के रूप में कार्य करेंगी। समितियां अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रचार प्रसार, जागरूकता, नामांकन तथा लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। समितियां केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाली प्रभावी संस्थागत व्यवस्था के रूप में स्थापित होंगी। अभियान के माध्यम से किसानों और उनके परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ते हुए आर्थिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और भविष्य की सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के दौरान सभी समिति परिसरों में बैंकों, इफ्को, चीनी मिलों और अन्य सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से विशेष सहायता और नामांकन काउंटर स्थापित किए जाएंगे। ये अभियान विकसित भारत

0: विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को गति देने के साथ साथ किसानों के समग्र कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
1: उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में समापन हो गया। इस अवसर पर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और यूपी के आमों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश का आम वर्तमान में 30 से अधिक देशों में निर्यात किया जा रहा है और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने से निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा। श्री सिंह ने समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया और महोत्सव में 1501 प्रतिभागियों ने 3032 आम के नमूने प्रदर्शित किए। विभिन्न श्रेणियों में 147 पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। प्रदेश में मॉनसून आने के बाद से बारिश का सिलसिला जारी है। आज राजधानी लखनऊ समेत गाजियाबाद, हापुड़, जालौन, प्रयागराज, बलिया और जौनपुर सहित 10 शहरों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगामी 8 से 10 जुलाई के बीच गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव हर वर्ग को दिया योजनाओं का लाभ। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के सहयोगी दलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि की जारी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जिला कारागार में 5 आरोपियों से फिर हुई पूछताछ। कल मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा फैसला। और प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
3: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सुगंध, क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
2: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
5: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। थोड़ी देर में आप सुनेंगे ICC वोमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले फाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने

0: आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ. जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोह में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
3: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत

0: बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
2: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार

मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 2026 from Tanakpur in Champawat district for the next leg of the pilgrimage. The first batch comprises 49 pilgrims. On the occasion, the Chief Minister said the Kailash Mansarovar Yatra is not just a religious journey, but a symbol of spiritual awareness, cultural unity and national harmony. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Southwest monsoon intensified across India. Red alert issued for Mumbai. Warning of heavy rain in several states. Union Minister Jyotiraditya Sindhya and MP Chief Minister Dr. Mohan Yadav lay foundation stone of 2,500 crore rupee defence manufacturing plant in Shivpuri. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar begins his six-day visit to West Asia, meets Qatari Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani in Doha. OPEC Plus agrees to increase oil production by 188,000 barrels per day from next month to support market stability. In T20 Cricket World Cup Summit clash underway between hosts England and Australia at the Lords. And in FIFA World Cup, Brazil to take on Norway in the round of 16 at New Jersey tonight. And that is all in the news at 9. Good night.
1: Adab, ye Akashvani hai. खबरों के साथ मैं असलम बेग। पूरे भारत में जनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश से खबरदार किया गया है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की तैयारी करने वाले प्लांट का संग बुनियाद रखा है, जिसकी लागत 2500 करोड़ रुपए है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना 6 रोजा दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने दोहा में कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने मार्केट इस्तेहकाम में मदद देने के लिए अगले महीने से तेल की पैदावार में यौमिया 188,000 बैरल्स इजाफे से इत्तेफाक किया है। फीफा आलमी कप में आज रात न्यू जर्सी में क्वार्टर फाइनल में ब्राज़ील का मुकाबला नॉर्वे से होगा और T20 क्रिकेट आलमी कप में लॉर्ड्स में मेज़बान इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में जनूब मगरबी मानसून में तेज़ी आ गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर बारिश, गरज चमक के साथ छींटे, बिजली चमकने और तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 4 दिन में मानसून के गुजरात के कुछ मजीद इलाकों, हरियाणा, पंजाब के बकिया इलाकों और राजस्थान के कुछ मजीद इलाकों में आगे बढ़ने के इम्कान हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड में दिन के दौरान शदीद से ज़्यादा शदीद बारिश की पेशगोई है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में अगले 2 से 3 दिन के दौरान अलग अलग जगहों पर बारिश का इम्कान है। महाराष्ट्र में आज मानसून की शदीद बारिश से बहुत से इलाके मुतासिर हुए हैं। बारिश की वजह से कुछ हादसात पेश आए, जहाँ बचाव कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रायगढ़ जिले में पुलिस ने 10 से 12 सयाहों को खपोली के नज़दीक अदूषी आबशार से बचाया, क्योंकि यहां पानी की सतह में अचानक इजाफा हो गया था। हुक्काम ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो मानसून के दौरान दरियाओं, आबशारों और पानी के दीगर जखायर से दूर रहें। मुंबई में आज दोपहर मूसलाधार बारिश के दौरान कुरला में एक दुकान पर एक दरख्त गिर जाने से एक 63 साल शख्स हलाक हो गया। BMC ने बताया कि शहर में दरख्त गिरने के 64 और दीवार और जुज़वी तौर पर मकान गिरने के 8 हादसात की खबर मिली है। मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से परवाज़ों के आने जाने में भी काफ़ी रुकावट आई है। भारत के महकमे मौसमियात ने मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी समेत कोंकण ज़िलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में दांग, नवसारी, वलसाड़, भावनगर, अमरेली, गीर सोमनाथ और दमन व दीव और दादर व नगर हवेली में कल इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई है। IMD अहमदाबाद में साइंसदान प्रदीप शर्मा ने हमारे नामानिगार को बताया कि इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और माही गीरों को मशवरा दिया गया है कि वो अगले 5 दिन समंदर में न जाएं। इसी दौरान दिल्ली NCR के बहुत से इलाकों में आज दोपहर औसत दर्जे की बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम में यकसर तब्दीली आई और लोगों को नमी वाले मौसम से कुछ राहत मिली। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस माह की 20 तारीख से शुरू होगा, जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि

जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास को 20 जुलाई से शुरू करने के लिए हुकूमत की तजवीज को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट का संग बुनियाद रखा। इस प्लांट की तामीर तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ अडानी ग्रुप करेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी की तारीख में आज एक नया बाब रकम किया जा रहा है। उन्होंने इसे एक तारीखी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से ये ज़िला सनती तरक्की, दिफाई साजो सामान की तैयारी और एक खुद कफील भारत के तसव्वुर से वाबस्ता हो जाएगा। जनाब सिंधिया ने यह भी कहा कि शिवपुरी के मेहनती नौजवानों के जरिए बनाए गए हथियार और मिज़ाइल भारतीय फौज को मुस्तहकम करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना दौरा शुरू कर दिया है। वो इस दौरे में कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान जाएंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान

0: भारतीय नौजवानों के जरिए बनाए गए हथियार और मिसाइल भारतीय फौज को मुस्तहकम करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना दौरा शुरू कर दिया है। वो इस दौरे में कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान जाएंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जस्सीम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तआवुन के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया, जिसमें बिलखसूस तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी और अवाम का अवाम से राबता शामिल है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने कलीदी शराकत दारी को मजीद बढ़ाने की गरज से नए मौकों की जस्तजू की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय बिरादरी के तहफ़ और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और मगरबी एशिया तनाज़े और उसके असरात के ताल्लुक से अपने जायजों से वाकिफ कराने के लिए उनकी तारीफ की। डॉक्टर जयशंकर इस माह की 13 तारीख को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे, जहां वो अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की 2028-29 की मुद्दत के लिए भारत की सरकारी मुहिम का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इसके बाद तीसरी भारत यूरोपीय यूनियन तिजारत और टेक्नोलॉजी कौंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेंगे और इस माह की 14 और 15 तारीख को ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के अपने हमसबों से बातचीत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। पेट्रोलियम बरामद करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक प्लस ने तेल की पैदावार में इस साल अगस्त से 188,000 बैरल रोजाना का इजाफा करने से इत्तेफाक किया है। ये फैसला तेल मार्केट की आलमी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वर्चुअल वसीले से मुनक़दा एक मीटिंग के बाद किया गया। आज इस मीटिंग के बाद जारी किए गए बयान में 7 ओपेक प्लस रुकन मुल्कों ने, जिसमें सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं, कहा है कि इस फैसले का मकसद मार्केट के इस्तेहकाम में मदद करना है। उन्होंने एक मोहतात और लचकदार तरीक़ेकार के तहत अपने अज़्म को दोहराया, जिसमें मार्केट के हालात पर इनहिसार करते हुए तेल की पैदावार में इजाफे, इसे रोक देने या इसे कम कर देने के मुतबादिल भी शामिल हैं। तेल की पैदावार वाले इस ग्रुप ने कहा कि वो आलमी तेल मार्केट पर करीबी नज़र रखता रहेगा। ग्रुप ने पैदावार के उन निशानों को भी पूरा करने की यकीन दहानी कराई जिन पर रजामंदी की गई है। ज़िराअत और देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी ग्रामीण के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की। जनाब चौहान ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ इस स्कीम पर अमलावरी का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि रियासतों के पास खातिरखाह फंड्स मौजूद हों, ताकि उजरतें 15 दिन के अंदर अंदर अदा की जा सके। जनाब चौहान ने यह भी कहा कि इस एक्ट के तहत 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए के अगले 5 बरस में सरमायाकारी की जाएगी, ताकि विकसित भारत के तस्वुर को तेजी के साथ बढ़ाया जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि VBG रामजी एक्ट ने कामयाबी के साथ महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम की कायापलट कर दी है।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर अदायगी के बाद पेश किए जाने वाले इश्तहारों में बच्चों के जिंसी एतबार से इस्तेहसाल और नाजेबा सलूक से मुतालिक मटीरियल CSEAM पेश किए जाने के मामले में मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है। हुकूमत ने इंस्टाग्राम को हुक्म दिया है कि वो इस तरह के मटीरियल तक रसाई की सहूलत बहम पहुँचाने वाले और इस मवाद को फ़रोग देने वाले तमाम इश्तहारात को रोक दे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाआती टेक्नोलॉजी की वजारत ने इस सिलसिले में मेटा से 7 दिन के अंदर तफसीली वजाहत तलब की है। हुकूमत इस बात का जायजा ले रही है कि प्लेटफॉर्म ने भारत की सालिसी के तहफुजाती रहनुमा खतूत पर अमल किया है या नहीं। उरिया फिल्में और बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से मुतालिक वीडियोज़ की तशहीर डिजिटल कवानीन के तहत भारत में एक मुजरमाना खिलाफ वर्जी है। इससे पहले वजारत ने इन रिपोर्टों की बिना पर कि इंस्टाग्राम कुछ ऐसे काबिल एतराज़ वीडियो दिखाता है जिससे बच्चों के साथ जिंसी इस्तेहसाल की तशहीर होती है, अपने तौर पर कार्रवाई करते हुए अफसरान को हिदायत

जारी की थी कि वो इस सिलसिले में मेटा से जवाब तलब करे। हुकूमत ने आबनाए हुरमुस के रास्ते एलएनजी लाने ले जाने के अमल की बहाली के बाद कुदरती गैस सप्लाई पर आयद हंगामी बंदिशें खत्म कर दी हैं। ये बहाली मगरबी एशिया तनाज़े में जंगबंदी के बाद हुई है। इस सिलसिले में हंगामी अहकाम लाजमी अशिया के कानून के तहत इस साल मार्च में जारी किए गए थे, जब आबनाए हुरमुस के रास्ते एलएनजी लाने ले जाने वाले जहाज़ों की आमदोरफ्त में रुकावट आ गई थी। भारतीय बहरिया का तरबियती जहाज INS सुदर्शनी न्यूयॉर्क की बंदरगाह पर लंगरअंदाज हो गया। वो अमेरिका के बैन अलाक्वामी नेवल रिव्यू 2250 और सेल 14th 250 तकरीबात में भारत की नुमाइंदगी करेगा। हटसन दरिया में कल कश्तियों की परेड के दौरान मशहूर ज़माना 3 मस्तूल वाली कश्ती ने बड़े फ़खरी अंदाज में भारतीय तिरंगा लहराया, जो भारत की फरामा समंदरी सरहद की सकाफत और सदियों पुराने समंदरों के सफ़र की रिवायत का जश्न था। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जत्था यात्रा के अगले मरहले के लिए चंपावत ज़िले के टनकपुर इलाके से रवाना होगा। पहला जत्था 49 यात्रियों पर मुश्तमिल है, जिनमें 1 डॉक्टर, 34 मर्द और 15 खवातीन शामिल हैं। दुनिया भर में मारूफ पांडों की दास्तान बयान करने वाली पद्म विभूषण एजाज याफ्ता डॉक्टर तीजन बाई की आज शाम दुर्ग जिले के उनके आबाई गांव गनियारी में सरकारी तौर पर आखिरी रसूम अदा कर दी गई। उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक सकाफत को आलमगीर मकबूलियत अदा की। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों, इंतजामिया के अहलकारों, फनकारों, अदीबों और हजारों सोगवारों ने आर्ट की इस शोहरा आफाक शख्सियत को नम आंखों से खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान के जेरे कब्जा कश्मीर में कशीदगी के उस वक्त बढ़ गई जब पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से मुबैना तौर पर मुजाहिरीन पर गोली चलाए जाने के वाक़े में एक शख्स हलाक और दीगर मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ये वाक़या बुनियादी हुकूक, माशी राहत और सियासी आज़ादी पर जारी एहतजाज मुजाहरों के दौरान पेश आया। मीडिया की खबरों के मुताबिक इस्लामाबाद के खिलाफ मुजाहरों के बाद खत्ते में 600 से ज़्यादा सिविल हकूक़ के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इंग्लैंड में मुकीम कश्मीरी बाशिंदों ने मुजाहरीन के साथ यकजहती का इजहार करते हुए एहतजाज किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कराची शहर में अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टरों के एहतजाज ने भी शिद्दत इख्तियार कर ली है, जिसमें जूनियर डॉक्टर्स बकाया वजीफों की अदायगी, बेहतर सिक्योरिटी और अस्पताल में अच्छी सहूलतों का मुतालबा कर रहे हैं। डॉक्टरों ने मुतनब्बे किया है कि अगर उनके मुतालबात न माने गए तो वो खिदमात मुअत्तल कर देंगे। ईरान के सियासी, मिलिट्री और मजहबी कायदीन ने आज तेहरान में साबिक अजीम रहनुमा मरहूम आयतुल्लाह खामिना ई के की नमाज जनाजा में शिरकत की। सरकारी टेलीविज़न की खबरों के मुताबिक अजीम रहनुमा के तीनों बेटों मसूद, मेसम और मुस्तफ़ा ने तेहरान के मुसल्ले आज़म में जनाजे की क़यादत की। इस मौके पर सदर मसूद पेजिशकियाँ, पार्लियामानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ और आला कमांडर भी मौजूद थे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के उनके मुल्क के तारीखी दौरे के 100 साल पूरे होने के मौके पर 2026 और 27 के दौरान 15 महीने तक जारी रहने वाले प्रोग्राम के जरिए इसकी याद मनाएगा। आकाशवाणी के खबरों के शोबे में खसूसी बातचीत करते हुए इंडोनेशिया के लिए भारत के सफ़ीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि यादगारी तकरीबात का इफ्तिताह कल से शुरू होने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया के दौरे में होगा। फीफा आलमी कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात न्यू जर्सी में ब्राज़ील का मुकाबला नॉर्वे से होगा, जो भारतीय वक्त के मुताबिक 1:30 पर खेला जाएगा। दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल में मेक्सिको सिटी में कल सुबह 5:30 पर इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। आज सुबह फिलाडेल्फिया में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल के एक मुकाबले में फ्रांस ने पैराग्वे पर 0-1 से जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फ्रांस के कप्तान ने वार की तरफ से मिलने वाली स्पॉट किक पेनल्टी पर मैच के 70वें मिनट में वाहिद गोल किया। ICC खवातीन के T20 आलमी कप फाइनल में अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 ओवर्स में 4 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। पूरे भारत में जुनूब मगरबी मानसून में तेज़ी आ गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश से खबरदार किया गया है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की तैयारी करने वाले प्लांट का संग बुनियाद

0: का है जिसकी लागत 2500 करोड़ रुपए है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना 6 रोज़ा दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने दोहा में कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने मार्केट इस्तेकाम में मदद देने के लिए अगले महीने से तेल की पैदावार में यौमिया 188,000 बैरल इजाफे से इत्तेफाक किया है। खबरें ख़त्म हुई।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। आइए अब आईसीसी वोमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जा रहे फाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनवाने के लिए आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

0: तटीय राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गईं। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 12:28 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। अगली सभा के कार्यक्रमों के साथ प्रातः 5:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।